मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषध निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं।

0: निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। भोर के इस पावन समय में, नए दिन के नए उजाले में, हर तरफ शांत वातावरण है। ऐसे में ईश्वर का स्मरण मन को एक ऐसी शांति देता है जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई मोह माया नहीं दे सकती। आइए इसी आस्था और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं अपनी आज की ये भक्तिमय यात्रा, जहां हर स्वर प्रभु के चरणों में अर्पित एक छोटी सी प्रार्थना है। साथियों, प्रार्थना का सबसे सुंदर भाव है प्रतीक्षा, उस ईश्वर के दर्शन की प्रतीक्षा जिसका कोई रूप नहीं, फिर भी वो हर क्षण हमारे साथ रहता है। मन जब प्रभु के दर्शन को तरसता है तो ये आंखें भी प्रार्थना कर लेती हैं कि ईश्वर के एक बार दर्शन हो जाए। आइए इसी विरह और भक्ति से भीगे भावों में सुनते हैं ये भक्तिमय भजन।

ईश्वर से नाता बनाने के लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। ये तो आत्मा और परमात्मा के बीच अपनत्व का सुंदर सा बंधन है। भक्त अपने आराध्य से कभी अधिकार से, कभी शिकायत से, तो कभी प्रेम से अपनी बात कहता है। बस उसकी यही प्रार्थना रहती है कि ये संसार चाहे साथ छोड़े, लेकिन प्रभु का अपनापन हमेशा हमेशा बना रहे।

उस परमात्मा के दरबार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, उसके दरबार में तो बस एक बंदा है और उसके सामने उसका मालिक। हम उसके दरबार में अपने दोषों के साथ आते हैं, अपने दुखों के साथ आते हैं और ये भरोसा रखते हैं कि उसकी मेहर हमारे हर दोष को दूर करेगी और हमारे दुखों को सुखों में बदल देगी। इसी समर्पण और विश्वास से भरा है ये शब्द।

जब जब उसके बंदों पर उसकी रहमत की बारिश बरसती है तो दिलों की वीरानियां भी महक उठती हैं। उसकी ज़ात पर लाखों सलाम, जिनके आने से इंसानियत को मोहब्बत, सब्र और रहमत का पैगाम मिला। उसकी दर पर झुका हुआ हर सर उम्मीद से भरा होता है कि हम पर भी उसकी रहमत की नज़र हो जाए।

हर शुभ कार्य से पहले लिया जाने वाला नाम, हर विघ्न को हर लेने वाली पावन शक्ति, जिनके स्मरण मात्र से ही मन में विश्वास और जीवन में मंगल की कामना जागती है। गणपति बप्पा का नाम लेते ही भक्ति में अजब उत्साह घुल जाता है और वातावरण मंगलमय हो उठता है। आइए इसी मंगल भावना के साथ करते हैं गणपति गणेश की स्तुति।

आपके हृदय में भक्ति का दीप यूं ही जलता रहे, हर पल प्रभु का साथ बना रहे और ईश्वर आपकी राह को सुख के उजालों से भरता रहे। इसी मंगल कामना के साथ वंदना कार्यक्रम से लेते हैं अब विदा। अभी आप सुन रहे थे भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में स्वर दिया है ए हरिहरन ने।

भरत के साथ अयोध्या का समस्त समाज अवधपुरी के मार्ग पर उदास लौट रहा है। सभी श्री राम के विरह में विह्वल हैं। ऐसी मनोदशा में स्नान भोजन की सुधि किसे होगी। यमुना गंगा तथा गोमती को पार कर चौथे दिन लोग अयोध्या पहुंचे। मंत्री गुरुवर वशिष्ठ की देखरेख में भरत को राज्य सौंप सहेज कर मिथिलापति चार दिनों बाद तिरहुत लौट गए। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके गुरुजन तथा माताओं की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर धर्म की धुरी धारण की। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहां निवास करने लगे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, अब सुनिएगा आज का चिंतन।
1: अहिंसा सत्य का प्राण है, स्वर्ग का द्वार है, जगत की माता है, आनंद का अजरस स्रोत है, उत्तम गति है, शाश्वत श्री है और है मानव मात्र के लिए परम धर्म। शतपथ ब्राह्मण के वचन तथा अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य परिग्रह, मानस का उद्घोष, परम धर्म श्रुति, विदित अहिंसा, योग दर्शन की उक्ति, सर्वत्र सर्वदा सर्वभूतानाम नाभिद्रोह, अहिंसा, पुराणों का सार, पापाय पर शीणनम, वैदिक युग की अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के महत्व को व्यक्त करते हैं। प्राचीन ग्रंथों और महर्षियों के उद्घोष, सर्व कल्याणेषु भूतेषु आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु कल्याणेषु वसुधैव कुटुंबकम, तमसो मां ज्योतिर्गमा, सभी अहिंसा के प्रेरक हैं। अहिंसा क्या है? तीर्थकर महावीर ने कहा है कि जब आत्मा रागी, द्वेषी या मूढ़ हो जाती है तो हिंसा करती है। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श,

0: और भाव की तृष्णा के पीछे चलने वाला अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ के कारण विभिन्न प्रकार के नश्वर तथा स्थावर जीवों को हिंसा करता है। उन्होंने कहा है, क्योंकि हिंसा पाप है और दया का संबंध धर्म से है, अतः देव या गुरु के निमित्त हिंसा करना उचित नहीं है। महावीर ने 18 धर्म स्थानों में प्रथम स्थान अहिंसा को प्रदत्त किया है। इसका उन्होंने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। उनके मतानुसार सब जीवों के प्रति संयम रखना ही अहिंसा है। शत्रु अथवा मित्र सभी प्राणियों में समभाव की दृष्टि रखना ही अहिंसा है। अहिंसा त्रस अथवा स्थावर सभी प्राणियों को कुशल क्षेम मंगल करने वाली है। आत्मा ही हिंसा है और आत्मा ही अहिंसा है। महावीर ने बताया कि हिंसा की जड़ विचारों की उत्पत्ति है। वैचारिक असमन्वय से मानसिक उत्तेजना बढ़ती है और वो फिर वाचिक और कायिक हिंसा के रूप में अभिव्यक्त होती है। शरीर जड़ है, वाणी भी जड़ है। जड़ में हिंसा अहिंसा के भाव नहीं होते हैं। इनकी उद्भव भूमि मानसिक चेतना होती है। दूसरों के प्रति ही नहीं किंतु उनके विचारों के प्रति भी अन्याय मत करो। अपने को समझने के साथ साथ दूसरों को भी समझने की चेष्टा करो। इसे महावीर ने बौद्धिक अहिंसा बताया है। अहिंसा के विषय में संत ज्ञानेश्वर ने विस्तृत सुस्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है, संसार को सुखी करने के एकमात्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी गया प्रतीक शारीरिक वाचिक मानसिक कार्य ही अहिंसा कहलाता है।
1: अभी आपने चिंतन कार्यक्रम सुना। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिएगा काव्य धारा कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चित्रा त्यागी का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।

प्रिय। जो कुछ सीखा तुमने यहां से, जो कुछ सीखा तुमने यहां से, जीवन में अपनाना तुम सतपथ पर।

सतपथ पर चल करके बच्चों जीवन सफल बनाना तुम, जीवन सफल बनाना तुम। सतत परिश्रम और लगन हो, अटल इरादे दृढ़ विश्वास, मन की शक्ति चा

मन की शक्ति चारित्र्य और आत्म साधना पल पल साथ, इच्छित परिणामों का संबल मिथ अभिमान न लाना तुम, सतपथ पर चल करके बच्चों जीवन सफल बनाना तुम, जीवन सफल बनाना तुम। मन को लक्ष्य भेद तक सीमित, तन को अभ्यासी रखना, कितना भी आगे बढ़ जाना मन को सन्यासी रखना। मन को लक्ष्य भेद तक सीमित, तन को अभ्यासी रखना, कितना भी आगे बढ़ जाना मन को सन्यासी रखना। मन पटल पर नई सोच और नूतन स्वप्न सजाना तुम, सतपथ पर चल करके बच्चों जीवन सफल बनाना तुम, जीवन सफल बनाना तुम। जीवन में

विजित होएगा स्वप्न तुम्हारा, फूलों सा मुस्काना तुम, सतपथ पर चल करके बच्चों जीवन

बोस भगत और APJ से परमहंस बन जाओ तुम, यही हमारा लक्ष्य ध्येय है, अटल ध्वजा लहराओ तुम। बोस भगत और APJ से परमहंस बन जाओ तुम, नींव रखी जिन गुरुओं ने उनको सम्मान दिलाना तुम, गुरुओं के आशीर्वचनों से

0: तुम प्रस्तुत है मेरी ये कविता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सार्थक करती हुई। मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बेटी हूँ, सारे दुख दर्द समेट लेने की सामर्थ्य है मुझ में, किंतु मुझे जन्म देने से डरती है मेरी अपनी माँ, भयभीत होती है समाज की परंपराओं से। मैं चांद छूने में सक्षम हूँ और सागर की गहराई तक पहुंच सकते हैं मेरे हाथ। मैं सपनों के पंख लगाकर उड़ती हूँ अंतरिक्ष के आर पार। माँ के हृदय से निकली सिसकियों की आहट और पिता की नम आंखों के कोर, बिना देखे पहचान लेने का हुनर है मुझ में। सहन शक्ति और सहजता का पर्याय हूं मैं। उड़ेल लेती हूँ स्वयं में घर परिवार की पीड़ा और स्वतः ही बिखेर लेती हूँ होठों पर स्मित सी मुस्कान। मैं साहस हूँ, शक्ति हूँ, मर्यादा और भक्ति हूँ, सरलता हूँ, सफलता हूँ, माझी और कश्ती हूँ, कर्मठ हूँ, स्नेहा हूँ, सक्षम और शिक्षित हूँ, किंतु हाय, फिर भी समाज से उपेक्षित हूँ। मेरी मर्मांतक चीख तुम्हारे कठोर हृदय के द्वार खोल सके तो बन जाने देना आप सभी मुझे अपने घर आंगन की सोन चिरैया। मेरी मर्मांतक चीख तुम्हारे कठोर हृदय के द्वार खोल सके तो बन जाने देना आप सभी मुझे अपने घर आंगन की सोन चिरैया, अपने घर आंगन की सोन चिरैया।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य धारा कार्यक्रम में डॉक्टर चित्रा त्यागी का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में।
2: संप्रति वार्ता श्रोयंताम प्रवाचिका ऋचा झा।

0: सन्देहे च पूर्व पूर्ण प्रभावी रूपेण कार्यान्वयनं प्रगतिशीलं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृता। देशे हि बलं प्रदत्तं यत् विकसित देशेभ्यः वित्तीय सहायतायाः उपलब्धतया सह अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं सुदृढीकर्तुं विकासशील देशानां पर्यावरण सम्बद्धानां जलवायु सम्बन्धानां च आह्वानानां प्रभावी रूपेण समाधानम् आवश्यकमस्ति। भारतम् अस्मिन् वर्षे सहनशीलतायै नवोन्मेषायै सहयोगायै सतत विकासाय च निर्माणम् इति विषय वस्तुना ब्रिक्स संघस्य अध्यक्षतां करोति। ब्रिक्स देशानां मन्त्रिभिः सतत विकासस्य साधनरूपां चक्रीयार्थ व्यवस्थां प्रवर्धयितुं भारतस्य नेतृत्वस्य अपि प्रशंसा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायं तमिलनाडु राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायै चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। असौ श्वः चेन्नई नगरस्य समीपे कोवलम् इत्यत्र आयोज्यमाने दक्षिण भारतस्य मुख्यमन्त्रिणां सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलने तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी चेत्येतेषां प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रिय परीक्षणाभिकरणेन स्वस्य परीक्षादलस्य व्यापकं पुनर्निर्माणं कृत्वा 600 पुरातनान् विशेषज्ञान् निष्कास्य तेषां स्थाने नूतनाः विशारदाः संगृहीताः। शिक्षामन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जाले पटले संसूचितं यत् परीक्षापत्राणां सूक्ष्मपरीक्षणं सुदृढं विधातुं एनटीए संस्थया चतुःस्तरीय प्रश्नपत्र परीक्षण प्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्तमन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघैः प्रवर्तमान वित्तवर्षस्य ऋण प्रदान क्षेत्रे तीव्रवृद्धि अंकिता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारते तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु, पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखण्ड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की भर्ती के लिए ली गई परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। झारखंड सरकार की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने

0: भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा परिषदों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किए जाने के बाद जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया है जब होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका और ईरान के द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयान जारी किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज की जानकारी का विषय है स्वास्थ्य वर्धक सोयाबीन।
2: भोजन स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का आधार है। हम स्वस्थ रहने के लिए कब क्या खाएं, जिससे भोजन से न केवल उदर पूर्ति ही हो बल्कि दवा की तरह प्रभाव डालता हुआ वो हमें स्वस्थ भी रखे। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे गुणों से भरपूर सोयाबीन की। सोयाबीन एक ऐसा पुष्टिकारक अन्न है जिसमें प्रोटीन, वसा, श्वेत सार, खनिज, लवण, लौह, विटामिन बी आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। इसमें मिलने वाला प्रोटीन किसी भी आमिष निरामिष पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन से उन्नत किस्म का होता है। ये प्रोटीन उच्च कोटि का होने के साथ ही 35-40% तक पाया जाता है। ये बच्चों, वृद्धों तथा सभी के लिए हितकर है। इसके सेवन से कब्ज तथा गैस के रोग नहीं होते तथा बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है। सोयाबीन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है। परीक्षणों एवं प्रयोगों से पता चला है कि सोयाबीन अनेक रोगों की रोकथाम में किसी रामबाण औषधि की तरह काम करती है। सोयाबीन के आधे कप में 14 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है जो उच्च श्रेणी का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन गुर्दे की बीमारी को बढ़ने नहीं देता, इसलिए गुर्दा रोगी डॉक्टर की सलाह से सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं। खाने में सोयाबीन का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु इसका इस्तेमाल सरसों के तेल के साथ ही करना चाहिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना आदि में फायदा होता है। सोयाबीन के प्रयोग से प्रोस्टेट ग्रंथि का रोग, स्तन कैंसर और चेहरे पर असमय होने वाली झुर्रियों से भी बचाव संभव है। मधुमेह के मरीजों के लिए सोयाबीन लाभप्रद है। ये शुगर को नियंत्रित रखने में सहायक सिद्ध हुई है। सोयाबीन के

0: मिला दें तथा दूध को आधे घंटे तक उबालें। गुणकारी और पौष्टिक दूध तैयार हो गया। अब इस दूध में जामुन डालकर दही भी जमाया जा सकता है। भिगोए हुए सोयाबीन में अनुपात से नमक, मिर्च इत्यादि मिलाकर पीस लें। स्वादिष्ट चटनी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन का तेल निकालने के बाद इसका जो छिलका बचता है उससे निर्मित बड़ी पौष्टिक होती है। दाल, सब्जी आदि में डालकर आप इसे उपयोग में ला सकते हैं। सोयाबीन के सेवन से आप विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। सोयाबीन का तेल सिर में लगाने से बाल काले होते हैं। इसके तेल में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सोयाबीन कितने लाभदायक गुणों से भरपूर है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज की जानकारी का विषय था स्वास्थ्य वर्धक सोयाबीन। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह 7:31 पर हमारे दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में जानकारी के विषय रहेंगे विश्व मानवीय दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। उसके साथ ही प्रातः 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे ब्रह्मदेव आर्य के स्वर में कुछ रागनियां। सुबह के 7:10 होने को है, आप सुनिएगा कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज हमारे किसान भाई गन्ने की फसल की निगरानी के बारे में जानकारी लेंगे।
2: किसान खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। किसान भाइयों, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका विषय है गन्ने की फसल की निगरानी। देखिए, ये अगस्त का महीना चल रहा है और इस समय मौसम सामान्यतः गर्म और नम रहता है। वर्षा के कारण खेत में नमी अधिक हो सकती है और ऐसी परिस्थितियां गन्ने में कीट और रोगों के प्रकोप के लिए अनुकूल हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार खेत में अलग अलग स्थानों से पौधों को ध्यान से देखना चाहिए। केवल खेत की मेड़ से फसल देखने के बजाय अंदर जाकर पौधों की पत्तियों, तनों और ऊपर की बढ़वार की हमें जांच करनी चाहिए। कहीं पौधे मुरझाए हुए, पीले या असामान्य रूप से कमजोर तो नहीं है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। इस समय लगातार बारिश होने पर खेत में पानी जमा हो सकता है। गन्ना पानी की कमी सहन तो कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक जल भराव से जड़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है और रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए खेत की नालियां साफ रखें और अतिरिक्त पानी को शीघ्र अपने खेत से बाहर निकाल दें। खासकर भारी मिट्टी वाले खेतों में जल निकास पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसान भाइयों, कीटों की निगरानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। गन्ने में तनाछेदक और शीर्ष छेदक जैसे कीटों पर हमें नजर रखने की जरूरत है। शीर्ष भाग की पत्तियां सूखने या बीज की पत्ती के आसानी से खींचकर निकल आने जैसे लक्षण अगर दिखाई दें तो पौधे की हमें जांच करने की जरूरत है। उसको देख लें। प्रभावित पौधों या तनों को खेत में छोड़ने के बजाय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार निकाल कर नष्ट कर दें। किसान भाइयों, पत्तियों का असामान्य पीला पड़ना, धब्बे, लालिमा या सूखने के लक्षण दिखाई दें तो उसे सामान्य पोषक तत्वों की कमी मानकर अनदेखा ना करें। गन्ने में लाल सड़न, स्मट, मोजेक और अन्य रोगों की पहचान समय रहते करना बहुत जरूरी है। रोगग्रस्त पौधे दिखाई देने पर उन्हें स्वस्थ पौधों से अलग कर दें और स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र या गन्ना विशेषज्ञ से उचित सलाह लेकर ही खेतों में काम करें। खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। खरपतवार गन्ने के साथ पानी, पोषक तत्व और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और कई बार कीटों को छिपने का स्थान भी देते हैं। इसलिए खेत को खरपतवार मुक्त रखने के लिए समय पर निराई गुड़ाई करनी बहुत जरूरी है। जहां उपयुक्त हो, फसल अवशेषों की मल्चिंग से नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण में मदद मिल सकती है। किसान भाइयों, यदि पौधों की बढ़वार असमान है, ठीक नहीं है या पत्तियों

0: तरंग सामान्य नहीं है तो बिना जांच के अतिरिक्त उर्वरक बिल्कुल न डालें। मिट्टी की जांच और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। याद रखें, संतुलित पोषण से पौधे मजबूत होते हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। एक और जरूरी बात, फसल को गिरने से भी बचाएं। जहां गन्ना काफी बढ़ चुका है और पौधों के गिरने की आशंका है, वहां स्थानीय अनुशंसा के अनुसार सहारा देने और पत्तियों को बांधने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे खेत में आवागमन और आगे की देखभाल भी आसान हो जाती है। किसान भाइयों, ये 5 सूत्र जो हम आपको बता रहे हैं वो याद रखें। पहला, सप्ताह में एक बार खेत का व्यवस्थित निरीक्षण करें। दूसरा, बारिश के बाद खेत में पानी जमा ना होने दें। तीसरा, छेदक कीट और रोग के लक्षणों को शुरुआती अवस्था में ही पहचानें। चौथा, प्रभावित पौधों को अलग कर विशेषज्ञ की सलाह लें। और पांचवा, किसी भी कीटनाशक या रोगनाशी का प्रयोग केवल अनुशंसित मात्रा और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करें। तो देखिए किसान भाइयों, यदि आप इस तरीके से अपने गन्ने की फसल की निगरानी करेंगे, उसकी सही तरीके से देखभाल करके उसमें आप जरूरी पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे, तो हम अपने गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी इस बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज की जानकारी का विषय था गन्ने की फसल की निगरानी। सवेरे के 7:15 हो रहे हैं, आइए अब डाल लेते हैं एक नजर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों पर।

आकाशवाणी लखनऊ से अनुप्रसारित कानून की बात कार्यक्रम का प्रसारण रहे समय रहेगा संध्या 7:32 पर। हमारी इसी सभा में प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा प्रयागराज और मैनपुरी जिले की हलचल। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार जोगिंदर कौर के स्वर में कुछ शब्द सुनिएगा शाम 7:45 पर। शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम में वार्ताकार मनीषा वर्मा की मानवता के बिना विज्ञान अराजकता मात्र है विषय पर आप सुनेंगे पूर्व प्रसारित वार्ता।

संध्या 5:15 पर युवा साथियों के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में आज की सौगातें होंगी। बूझो तो जाने, कुछ खास है आज यूथ कनेक्ट, लव स्टोरी और पोस्टर्स, साथ ही आनंद लीजिए का फिल्म संगीत का। कृषि जगत कार्यक्रम में नगीना के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजनीश से जितेंद्र कुमार की मवेशी में लंपी रोग के कारण, लक्षण और निवारण पर भेंटवार्ता सुनिएगा। साथ ही चर्चा की जाएगी धान की फसल में जल प्रबंधन विषय पर। कार्यक्रम का समय वही संध्या 6:05 पर। घर संसार कार्यक्रम में सुनिएगा तनप्रीत कौर द्वारा लिखित विशेष लघु नाटिका राखी का असली मतलब। निर्देशन है अंकित सैनी का और प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। समय याद रहे 1:15 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। सुबह के 7:18 होने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता की सोच है तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। ड्यूटी भत्ता को 600 रुपए प्रतिदिन करने की हुई घोषणा। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की हुई घोषणा। वाराणसी के छोटेलाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल शिवराण को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश का जारी किया अलर्ट। प्रदेश की गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में दर्ज की जा रही बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में PRD जवानों को सपरिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की। श्री योगी ने प्रांतीय रक्षक दल के सम्मेलन में जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 600 रुपए करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला PRD बैरक का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में और विपरीत परिस्थिति में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने वाले प्रांतीय रक्षक दल के सभी स्वयंसेवकों का सेवा भाव और अनुशासन प्रदेश की प्रगति तथा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है।
5: अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरिक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाईराइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में संपन्न हुआ है।
4: PRD जवानों के सम्मेलन में राज्य मंत्री राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि PRD जवान के सैनिक शांति, सुरक्षा और जनसेवा के मजबूत आधार हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यूपी जापान निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाग लेंगे। 5 दिवसीय इस निवेश सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को बढ़ाना और ठोस निवेश प्रौद्योगिकी

0: हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
1: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है। श्री तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि उनकी शैली सबको साथ लेकर चलने की है और वे संगठन को मजबूत करने और पार्टी की योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव, एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह और शूटिंग कोच नेहा नंद कुमार चौहान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं। वो पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। उधर महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल, बागपत के निशानेबाज अखिल शिवराण और मेरठ की एथलीट प्रियंका गोस्वामी का नाम भी शामिल है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसायाह अरुमैना यागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल पीलीभीत के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित ये देश का 109वां पीएम दिव्याशा वयोश्री केंद्र होगा, जिसमें दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में 18 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। गृह विभाग ने श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पहले गठित विशेष जांच दल SIT की फाइनल रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। SIT ने ये रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर पहली SIT का गठन गत 13 जून को राज्य सरकार ने किया था। प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में जुलाई से 5% की वृद्धि की है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के मानदेय में ये बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का प्रावधान है। इसके तहत जनवरी में 5% और जुलाई में 5% की बढ़ोतरी की जाती है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिन से बादल छाए हुए हैं और

0: रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। उधर वर्षा होते रहने और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। अमरोहा और संभल में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उधर वाराणसी में गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। वहां के ACP अतुल अंजान ने बताया कि
1: गंगा का जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 4 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रिकॉशनरी नावों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। भविष्य में जैसे ही जल स्तर सामान्य होगा और जो बहाव है उसकी गति सामान्य होगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे।
0: मिर्जापुर में भारी वर्षा के कारण हुए जलजमाव से 7 गांव के प्रभावित होने की खबर है। वहां के जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत शिविर में पहुंचाने और आवश्यक राहत तथा बचाव सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। ड्यूटी भत्ता को 600 रुपए प्रतिदिन करने की हुई घोषणा। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की हुई घोषणा। वाराणसी के छोटे लाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल शेराड़ को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बारिश का जारी किया अलर्ट। प्रदेश की गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में दर्ज की जा रही बढ़ोतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी, मनोरंजन और रोचकताओं का संगम कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

नमस्कार श्रोताओं, देखिए ना, फिर से एक सुबह बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रही है और हर दिन की तरह हम भी आ गए हैं अपने साथ लेकर आपका अपना कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, जहां मैं आज आपके साथ हूं आपकी रेडियो साथी फरीना। श्रोताओं, आज 19 अगस्त है और आज की ये तारीख अपने साथ दो महत्वपूर्ण अवसर भी लेकर आई है, वो है विश्व मानवीय दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। एक हमें याद दिलाता है कि मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़े होना सच्ची इंसानियत है, तो दूसरा हमें बताता है कि गुजरते हुए पलों को किस तरह एक तस्वीर में हमेशा हमेशा के लिए सहेजा जा सकता है। तो सबसे पहले बात उस जज्बे की

सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचने की खूबसूरत प्रेरणा देता है। हर साल 19 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व मानवीय दिवस मनाया जाता है और ये दिन समर्पित है मानवता के उन सिपाहियों को जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और दूसरे संकटों के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना जरूरतमंदों को हर मदद पहुंचाने का काम करते हैं। इस दिवस को मनाने का संबंध वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए उस हमले से भी है जो बगदाद में हुआ था और इसमें कई मानवीय कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी थी। उनकी स्मृति और मानवीय सेवा के प्रति सम्मान के रूप में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। आज का ये दिन हमें यही संदेश देता है कि निस्वार्थ सेवा भाव से, प्यार से और मेलजोल से हम इस दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। और मानवता का तो सबसे सुंदर अर्थ भी यही है कि दर्द किसी का हो पर महसूस हो अपना। इंसान वही है जो बने किसी के दर्द में अपना। और श्रोताओं, इंसानियत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होगी कि इंसान औरों के लिए जिए।

गीत के बाद अब बात उस कला की जो चाहते हुए लम्हों को हमेशा हमेशा के लिए थाम लेती है, फोटोग्राफी यानी तस्वीर लेना। श्रोताओं, एक तस्वीर में न जाने कितनी भावनाएं होती हैं। एक गुजरी कहानी होती है, किसी संस्कृति उत्सव की झलक होती है और कभी कभी पूरा इतिहास एक तस्वीर में छिपा होता है। इसलिए तो कहते हैं कि एक तस्वीर हजार शब्दों को बयां करती है। और आज 19 अगस्त 1839 के दिन की तस्वीर को याद करें तो इस दिन पहली बार डॉगरोटाइप तकनीक को सार्वजनिक किया गया, जिसने आधुनिक फोटोग्राफी की नींव रखी। तब से लेकर आज तक के डिजिटल दौर तक फोटोग्राफी ने एक लंबा सफर तय किया है। ये कला एक पल को तस्वीर में कैद नहीं करती, बल्कि एक मुस्कुराते चेहरे, बारिश की बूंदों, बचपन की यादों और ना जाने जिंदगी के कितने हसीन लम्हों को अपने में कैद कर लेती है। और एक कैमरा हमेशा हमेशा के लिए पलों को यादगार बना देता है, ताकि वक्त बीतने के बाद, बरसों बाद जब भी हम इनको देखें तो फिर से उन यादों को महसूस कर सके। और साथियों, आज कितना आसान है ना, पहले के समय में एक तस्वीर के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता था उसको बनवाने में भी, और आज हम मोबाइल से फौरन कोई भी तस्वीर ले लेते हैं। तो आज जब आप अपने आसपास देखें तो गौर कीजिएगा, हो सकता है कोई हसीन सा पल आपके मोबाइल के कैमरे की नज़र में समाकर हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार कहानी बन जाए। तो चलिए अब चलते हैं आज से जुड़ी 19 तारीख की तस्वीर में कैद घटनाओं के बारे में जानने के लिए अपने अगले सेगमेंट यानी तिथि विशेष की तरफ।

श्रोताओं, तिथि विशेष जिसमें हम बात करते हैं हर तारीख से जुड़ी विशेष घटनाओं और उस तारीख से जुड़ी उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया और दुनिया को अपने कार्यों से रोशन किया, और साथ ही याद करते हैं

आंखों से जो आधी के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो सबसे पहले बात आज से जुड़ी घटनाओं के बारे में। 19 अगस्त की तारीख अंतरिक्ष की उस रोमांचक यात्रा से जुड़ी है जब साल 1960 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 5 अंतरिक्षयान से दो नन्हे जीव बेलका और स्ट्रेलका नाम के दो कुत्तों को स्पेस में भेजा था। दोनों पृथ्वी की कक्षा में घूमकर सुरक्षित इस धरती पर लौटे थे। इस मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण राहें खोली और यह मिशन आगे चलकर अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। प्राचीन मंदिरों की नगरी के रूप में अपनी अद्भुत पहचान रखने वाला भुवनेश्वर शहर उड़ीसा राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। 19 अगस्त 1949 में ही कटक के स्थान पर भुवनेश्वर को उड़ीसा की राजधानी बनाया गया था। साल 1757 में इसी तिथि को कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का 1 रुपए का सिक्का पहली बार टकसाल में ढाला गया था। ये घटना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जाती है। अब बात करते हैं आज के दिन जन्मी मशहूर हस्तियों के बारे में। 19 अगस्त 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में जन्मे हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, आलोचक और निबंधकार रहे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, आनंद मठ और कुटुक जैसी रचनाओं के इस महान लेखक की लेखनी में हमारा भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिलती है। संयोग से इसी तिथि और इसी साल में जन्म हुआ था महान स्वतंत्रता सेनानी राजनेता सरदार स्वर्ण सिंह का। आपने विदेश, रक्षा, कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला था। देश की सेवा और विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सरदार स्वर्ण सिंह का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। संगीतकार खयाम का नाम भारतीय सिनेमा में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। सुरीली धुन के फनकार खयाम ने कभी कभी उमराव जान, त्रिशूल, खानदान जैसी फिल्मों के गीतों को अपने सुरों में पिरोया था। आज ही की तिथि 19 अगस्त 2019 को सुरों की अनमोल सौगातें देने वाले इस महान फनकार की सांसें हमेशा हमेशा के लिए ठहर गई थी। आज ही की तिथि को पुण्यतिथि है गीतकार और शायर जानिसार अख्तर की। साल 1976 में हमसे विदा हुए जानिसार अख्तर ने अपने अल्फाजों से गीतों में मोहब्बत, संवेदना, प्यार, दर्द और शायरी को बड़ी ही खूबसूरत रवानी दी। CID, नूरी, प्रेम पर्वत, रजिया सुल्तान फिल्मों के बुने उनके गीतों के हर शब्द में ऐसी मिठास थी जो गीत पूरा होने के बाद भी दिलों में ठहर जाती है। तो अब हम भी थोड़ा ठहर जाते हैं और सुनवाते हैं आपको संगीतकार खयाम और गीतकार जानिसार अख्तर के पुण्यतिथि पर उन दोनों की ही खूबसूरत रचना, जिसकी धुन है खयाम की और जानिसार अख्तर के कलम से लिखा ये गीत उनकी जिंदगी का आखिरी गीत है। तो आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत और मधुर गीत का।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव यानी आज की ताजा खबरों की तरफ।
5: ताज़ा खबर।
4: जी हां श्रोताओं, आप जान लेते हैं और डालते हैं नजर आज के अखबारों पर। अमर उजाला लिखता है, यूपीएससी के 8 सवाल गलत, कैट ने मांगा जवाब। कैट ने यूपीएससी को लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में पूछे 8 प्रश्नों के गलत होने से जुड़ी याचिका पर नोटिस जारी किया है। अगर याचिकाकर्ताओं के दावे सही पाए गए तो नेगेटिव मार्किंग समेत करीब 16 अंक प्रभावित होंगे और मेरिट सूची बदल सकती है। आगे अमर उजाला लिखता है, 2 दर्जन मंत्री इधर उधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अपनी टीम में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। 2 दर्जन से अधिक मंत्रियों के विभाग बदले जाने का

उम्मीद है किसी का बोझ बढ़ेगा, किसी की जिम्मेदारी बढ़ेगी और कुछ चेहरों की सरकार से संगठन में वापसी हो सकती है। अब नजर दैनिक जागरण पर। पीआरडी जवानों को सहपरिवार 5 लाख तक मुफ्त इलाज, भत्ता भी बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रांतीय रक्षक दल के 31,757 जवानों को सहपरिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज से आच्छादित करते हुए दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया है। किनमोड़ा से ब्लड कैंसर के प्रभावी उपचार की उम्मीद। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला औषधीय पेड़ किनमोड़ा ने रक्त कैंसर के उपचार की उम्मीदें जगाई हैं। आगे दैनिक जागरण लिखता है कि भारत में 100 करोड़ लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र आयोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सेव अमेरिका एक्ट के पक्ष में भारत के मतदाता पहचान पत्र का उदाहरण दिए जाने के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि देश में लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को खास मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। अब नजर हिंदुस्तान पर। गर्व, मेरठ मंडल के 3 खिलाड़ियों समेत 17 को अर्जुन अवार्ड। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को वर्ष 2025 के लिए खेल पुरस्कारों की घोषणा की। कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। आगे हिंदुस्तान लिखता है, अंतरिक्ष में दिखेगी चांद तारों की टिकड़ी। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों और आसमान का दीदार करने वालों के लिए 22 अगस्त की रात बेहद खास होने वाली है। इस रात आसमान में बढ़ता हुआ चंद्रमा, लैगून नेबुला और टॉलेमी क्लस्टर मिलकर एक शानदार त्रिकोणीय खगोलीय संयोजन बनाएंगे। और ये अंतिम खबर भी हिंदुस्तान से। पंत टेस्ट में 100 छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले भारतीय, जबकि कुल चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के लाहिरू कुमारा की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से पुल शॉट लगाकर ये उपलब्धि हासिल की है। और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव पर सुनते हैं एक ऐसा गीत जो अपने शीर्षक से ही जैसे एक प्यारी सी सीख देता है कि दिल में मिठास रखिए, अच्छी बातें सुनिए और हर पल मुस्कुराकर जिए और जीने दीजिए।

श्रोताओं, इस गीत के प्यारे से संदेश को अपने साथ रखिए, जिंदगी में वही सुनिए जो आप अपने लिए भी सुनना चाहते हैं। दिलों में मिठास घोलिए और रिश्तों में अपनापन बढ़ाइए। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और नए नगमों के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार प्रभात।
1: वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स ने पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2000

0: 14 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
1: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। ACB के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाशी और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार

0: लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केवंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने

0: पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: education age. And finally, vocational education third language must for class 9 from the current academic session, writes the Times of India about Delhi government's revised class 9 examination and promotion policy. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protests. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satender Jain and five others in the Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सतेंद्र जैन और पांच दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को फरोग देने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे मुल्क में घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार, महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मजकूरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तौसी की खातिर ये स्कीम बनाई गई है ताकि मजीद कुनबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मजकूरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस, LPG सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाली रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादिल है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी NTA ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तालीम की वजारत ने कहा है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच को मुस्तहकम बनाने की खातिर NTA सवाल नामों को चेक करने का 4-सतही निजाम नाफिज करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी अगले 2-3 हफ्तों के दौरान 20-25 अहदेदारों को भी शामिल करेगी। इसके साथ साथ इम्तिहान कराने वाली एजेंसी NTA के दफातर नए मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे जहां CISF की टीमों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इम्तिहानात को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सिक्योरिटी और मुतालिका बुनियादी ढांचे की तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब कराने की वजीर तालीम प्रहलाद जोशी की हिदायत के तनाजुर में NTA ने यह फैसला किया है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में कल रात उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि मनसूख किए गए इम्तिहानात में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC, JSSC और एक एजेंसी TDPL समेत दीगर एजेंसियों के जरिए कराए गए इम्तिहान शामिल हैं। जो इम्तिहान मनसूख किए गए हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर

0: असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर्स, सिविल जज और फॉरेस्ट रेंज अफसरों की भर्ती के इम्तहान शामिल हैं। इसके अलावा महकमे जंगलात के असिस्टेंट कंजर्वेटर्स और दीगर इंतजामी नीज तकनीकी ओहदों पर भर्ती के इम्तहान भी मनसूख किए गए हैं। सरकार ने 6 इम्तहान मुलतवी करने और 17 इम्तहानात की CID तहकीकात का भी हुक्म दिया है। JPSC और JSSC इम्तहानात में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक केसों के लिए हाई कोर्ट से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की जाएगी। इन दोनों कमीशनों में दाखिली विजिलेंस शोबे भी बनाए जाएंगे, जबकि आला IAS अफसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी इम्तहानात के निजाम में इस्लाहात की सिफारिश करेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली जल बोर्ड के साबिक CEO उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड के पानी को साफ करने के प्लांट्स को जदीद तर्ज पर ढालने और उन्हें बेहतर बनाने से मुतालिक टेंडर के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों और मुजरिमाना साजिश के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विजिलेंस डायरेक्टोरेट की शिकायत पर इन अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। छानबीन के दौरान ये मालूम हुआ कि टेंडर के अमल में एक मखसूस टेक्नोलॉजी फर्म को फायदा पहुंचाने के मकसद से शरायत रखी गई थी, जिससे टेंडर का अमल महदूद होकर रह गया और एक मखसूस प्राइवेट कंपनी को नामुनासिब फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा छानबीन से ये भी इंकशाफ हुआ कि टेंडर के अमल में हेराफेरी करने के लिए कुछ अफराद मुबैना तौर पर कुछ सरकारी अहलकारों और बिचौलियों के साथ राब्ता कायम किए हुए थे। बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने कहा है कि इससे कुछ अफराद और सरकारी अहलकारों के दरमियान मुबैना साजबाज का पता चलता है। रकम के लेन देन और इस जुर्म से हासिल होने वाली मुबैना रकम की पूरी जांच की जा रही है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मगरबी बंगाल में कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 6 जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक आग लगने का यह वाकया रात देर गए 2 बजे के आसपास पेश आया। मालूम हुआ है कि 5 मंजिला इमारत की 3री मंजिल से घना धुआं उठता हुआ देखा गया। इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि मस्कूरा होटल में आग बुझाने से मुतालिक कोई निजाम नहीं था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी और इलाकाई और बैनुल अक्वामी सलामती को खतरे के ताल्लुक से तशवीश का हवाला देते हुए अगले हुक्म तक ईरान के साथ तमाम तरह की तिजारत, कमर्शियल सरगर्मियां और माली लेन देन मुअत्तल कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने वजारत खारजा में कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हामिली ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बैनुल अक्वामी कानून और आलमी मेयारात के मुताबिक खित्ते के इस्तेहकाम की हिफाजत करना और बैनुल अक्वामी मालियाती निजाम की सालमियत को बरकरार रखना है। इस ऐलान से कबल UAE ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने ईरान की तरफ से खलीज की तरफ दागे गए 2 बैलिस्टिक मिजाइल का पता लगाया था। बाद में वजारत दिफा ने बताया कि ये दोनों मिजाइल बहरी जहाजरानी को निशाना बनाने के मकसद से दागे गए थे जो समंदर में जा गिरे। UAE ने कहा है कि वो अमन और इस्तेहकाम के जरिए के तौर पर मुजाकिरात, बाहमी तआवुन और इलाकाई हमाहंगी के तई अहद बस्ता है। ईरान की तरफ से UAE के इल्जाम के सिलसिले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम ईरान ने इंतबाह दिया है कि आबनाए हुरमुज तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक अमरीका के साथ कोई अमन मुआहदा न हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुजाकिरात कारों की टीम से कहा है कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात को तब तक के लिए रोक दें जब तक के ईरान किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इंतजामिया ने ईरान के साथ सिफारती राबते के सिलसिले में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है कि जब आबनाए हुरमुज की सूरतहाल और अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सिलसिले में इन दोनों ममालिक की तरफ से मुतनाज़ बयानात सामने आ रहे हैं। इस दौरान ईरान ने कहा है कि वो आबनाए हुरमुज को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमरीका 14 निकाती मुफाहमत नामे के तहत वादों को पूरा नहीं करता, जिसमें नाकाबंदी खत्म करना, ईरान के मुंजमद असासों को जारी करना और उसके तेल पर आयद पाबंदियों में नरमी लाना शामिल है। بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی

0: जारी करने से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जुमरात को तमिलनाडु में होगी, इस खबर को भी अखबारात ने अहमियत दी है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में 49 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिद अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह की 8:45 हुए हैं। पेश है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। साथियों, पुराने गीत जैसे बीते हुए वक्त की वो खूबसूरत तस्वीरें हैं जिन्हें देखते ही और सुनते ही यादों के कई रंग सामने उतर आते हैं। इन्हीं सुनहरी यादों और सदाबहार नगमों के साथ गोल्डन हिट्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज के इस गोल्डन हिट्स के सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो अपने बोलों में ही एक खूबसूरत सफर का एहसास समेटे हुए है।

समझौता कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना। इस फिल्म से आवाजें थी मोहम्मद रफी और मुकेश की। इंदीवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सच्चाई से। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है। गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने। श्रोताओं, प्यार जो जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत है, ये ऐसी नेमत है जो हर किसी को नहीं मिलती। कभी कभी किसी को जिंदगी भर साथ रह के भी वो प्यार नहीं मिल पाता जो किसी को दो चार दिन में ही मिल जाता है। ऐसे ही एहसासों को बयां कर रहा है हमारे कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आशा भोसले के स्वर में आपने सुना फिल्म समाधि का ये गीत।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: इंसान को हर पल चंदन का एहसास।
1: इस समय आप आनंद ले रहे हैं गोल्डन हिट्स कार्यक्रम का और केंद्र है आपका अपना आकाशवाणी नजीबाबाद। और हमें पता है हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा कार्यक्रम के अगले गीत का, और ये आपकी मोहब्बत और प्यार ही तो है जो हर कार्यक्रम हम आपके लिए सजा कर लाते हैं। और इस प्यार और मोहब्बत में इंतज़ार तो बहुत खूबसूरत लगता है जब सामने न कोई हो और उसका ख्याल हर पल हमारे ख्यालों में हो। दिल की बेचैनी भी तभी तो एक मीठा सा एहसास बन जाती है जब किसी की कमी हर पल उसकी याद दिलाती है।

हीर रांझा फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। धुन थी मदन मोहन की और शब्द रूप दिया था कैफी आसमी ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं इंदीवर के लिखे गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत में फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत, जिसको आवाज दी है किशोर कुमार ने। श्रोताओं, चेहरे तो अक्सर दिल की सच्चाई छुपा लेते हैं, मगर हमारी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। कभी चेहरा हंसता है और दिल में दर्द छुपा होता है, क्योंकि हर खूबसूरत चेहरा सच्चा हो ये जरूरी तो नहीं है।

श्रोताओ, कुछ मुलाकातें याद बनकर दिल में रह जाती हैं, कुछ गीत खामोशी से भी बहुत कुछ कह जाते हैं। अब इस सुरीली महफिल से विदा लेने का वक्त आ गया है, तो चलते चलते सुनते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: आनंद बख्शी की गीत रचना, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत रचना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आन मिलो सजना के इस गीत के साथ ही आज का गोल्डन हिट्स कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने को है। कुछ ही देर में सुनिएगा जिले की हलचल।
1: प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्रा का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रयागराज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भव्य तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं पूरे जनपद में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 14 अगस्त को शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें नमन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने संस्कृत विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि देश की एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना का संकल्प लेकर कार्य करने से भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने कहा
3: वह विभाजन की जो विभीषिका थी उसका स्मरण वर्तमान पीढ़ी को रहे, आने वाली पीढ़ियों को रहे। अपने अमर शहीदों को स्मरण रखते हुए और देश की एकता के लिए अपने को समर्पित कर।
2: प्रयागराज के फाफामऊ में प्रतियोगी परीक्षा और संस्थागत शिक्षण में छात्रों की होने वाली समस्याओं को लेकर आयोजित छात्रों की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के सुझाव सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें पूरी गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामलों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा कानून अब बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं से किए गए वादों के अनुरूप परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। श्री मौर्य ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े छात्र अपनी समस्याओं एवं सुझाव लिखित रूप से अथवा ईमेल के माध्यम से भी उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार प्रत्येक सुझाव का अध्ययन कर उसके समाधान का प्रयास करेगी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से प्रयागराज में उप निदेशक जागृति पांडे के निर्देशन में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में लगाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर नशा मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर विभिन्न नशा मुक्त गतिविधियों का आयोजन करने की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता एवं प्रतिभा के माध्यम से नशा मुक्त भारत का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। विजयी प्रतियोगिताओं को पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड प्रयागराज द्वारा खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भगवतपुर ब्लॉक सदर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महापौर उमेश गणेश चंद्र केसरवानी ने खादी के महत्व के बारे में मौजूद लोगों को संबोधित किया। प्रयागराज में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम एवं किशोरियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने HPV जागरूकता एवं टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि 14-15 वर्ष की आयु वर्ग की सभी बालिकाओं एवं HPV टीकाकरण समय से अवश्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि HPV टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिव्यांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय प्रयागराज एवं उत्तर

0: देश कौशल विकास मिशन प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय दिव्यांगजन रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से 46 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। रोजगार मेले में कुल 89 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
2: मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 682 करोड़ रुपए की लागत वाली 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर संकट का माहौल था, जबकि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य की छवि से निकलकर राजस्व प्लस राज बनने और डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने मैनपुरी और इटावा के विकास को देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए। जिले में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी भी सक्रिय हैं। उन्होंने 24 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन बहुउद्देशी हॉल, प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र तथा 38 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था CNDS के अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह परिसर भविष्य में जिले की सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। परिसर में पार्किंग, लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्र, विद्युत जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। भोगांव में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर प्रशासन ने शक्ति दिखाई है। जिलाधिकारी ने पैमाइश से जुड़े विवादों में नियमानुसार धारा 24 के तहत कार्रवाई करने और दोनों पक्षों की सहमति होने पर तत्काल पैमाइश कराने के निर्देश दिए हैं। पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के साथ चक मार्गों, तालाबों, पश्चर और अन्य सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त कराने को कहा है। मिशन समाधान के तहत खाली कराई गई ग्राम सभा की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखने तथा दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। पेंशन, कन्या सुमंगला योजना तथा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने में अब आम जनता की राय को भी महत्व दिया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले चरण का रोड मैप तैयार करने के लिए पोर्टल पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार ने मंडली उप निदेशकों और जिला पंचायत राज अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को सुझाव देने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पहला चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और फिकल स्लज मैनेजमेंट जैसे कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। अब अगले चरण की योजना में जनता की जरूरतों और अनुभवों को शामिल करने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। इससे ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनोपयोगी बनाने में की दिशा में नई पहल की उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में मैनपुरी के लिए गौरव की खबर है। सुदित ग्लोबल एकेडमी के कक्षा 12 के छात्र पीयूष का भारत सरकार की प्रेरणा परियोजना के लिए चयन हुआ है। प्रत्येक जिले से एक छात्र और एक छात्रा के चयन की व्यवस्था के तहत चयनित पीयूष गुजरात के बड़नगर का भ्रमण करेंगे। वे उस विद्यालय का भी भ्रमण करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा प्राप्त की थी। यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्ञान परंपरा, जीवन मूल्यों, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों को समझने का अवसर मिलेगा। पीयूष के चयन पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जिले के प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर राममोहन कहते हैं,
3: प्रेरणा परियोजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन मूल्यों, नेतृत्व नवाचार तथा राष्ट्र निर्माण की भावना से परिचित कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर वडनगर की यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव सिद्ध होगी।
2: युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सिविल सेवा, PCS और SSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य एवं अनुभवी अतिथि व्याख्याताओं का चयन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के अनुसार प्रत्येक 90 मिनट के व्याख्यान के लिए 2000 रुपए मानदेय दिया जाएगा और अधिकतम 30 व्याख्यान प्रतिमाह अनुमन्य होंगे। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 18 अगस्त को पूर्वान्ह 11

0: तक आवेदन जमा कर उसी दिन विकास भवन के अंबेडकर सभागार में आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है धरती गाती है कार्यक्रम। साथियों, माटी की भी अपनी एक भाषा होती है। कहीं ये भाषा ढोलक की थाप में सुनाई देती है, कहीं लोक दिनों में, और कहीं किसी बुजुर्ग की कही हुई उस बात में जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लोकगीत हमारी मिट्टी के वही बोल हैं जिनमें जीवन का अनुभव भी होता है, हंसी भी, सीख भी, और रिश्तों की मिठास भी। इसी मिठास के साथ लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को हमने सजाया है ब्रह्मदेव आर्य की गाई कुछ रागनियों से।
3: अव्यासा तृष्णा मोह माया के और

जीवन की राहों में इंसान बहुत कुछ पाता है, बहुत कुछ चाहता है, मगर हमारी लोक संस्कृति हमेशा उसे हमें याद दिलाती रहती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की असली पूंजी है। इसी लोक बुद्धि और सहज जीवन दर्शन को आगे बढ़ाती हैं हमारे कार्यक्रम की ये अगली दो रागनियाँ।

0: साथियों, माटी की खुशबू लिए ये लोग धुने शायद यहीं थम जाएं, लेकिन इनके बोल हमारे मन में देर तक गूंजते रहते हैं। इन्हीं सुरों में हमारी संस्कृति है, हमारी स्मृतियाँ और हमारी मिट्टी की पहचान।
1: नारी को देवी मान, उसे घर घर में पूजा।

रिश्तों में छिपे भाव हों या किसी अपने का इंतजार हो, लोक रागनियाँ छोटी सी बात में मन की बड़ी बड़ी बात कह जाती हैं। यही तो लोक संगीत की खूबसूरती है, जो सीधे दिल से

0: इसी रागनी के साथ आज का धरती गाती है कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे धरती गाती है कार्यक्रम, जिसमें आज हमने आपको सुनवाई ब्रह्मदेव आर्य के स्वर में कुछ रागनियां। इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं। पेश है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को फरीना और फरीना के साथ आपकी जो हम सफर बनी है
1: रिमझिम बलूनी की ओर से प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
0: तो स्वागत के साथ ही जल्दी से रिमझिम हम अपने श्रोताओं को जो हमारे कार्यक्रम में जुड़ने का जरिया है वो बता दें।
1: जी बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम व्हाट्सएप मैसेज के लिए नंबर बता देते हैं। और बहुत सारे श्रोता हमारे जो पुराने श्रोता हैं वो मैसेजेस भेजने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और जो जुड़ना चाहते हैं उन्हें हम नंबर बता देते हैं। नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से 9457078288। तो फरीना नंबर मैंने बता दिया है। और अब जो श्रोता हमारे पत्रों के माध्यम से अपनी फरमाइश के गीत हम तक भेजना चाहते हैं उन्हें आप पत्र का पता बता दीजिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, जो एक और खूबसूरत परंपरा है हमारे कार्यक्रम में जुड़ने की, पत्र, तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। तो चलो रिमझिम कार्यक्रम का पहला गीत जो हमारे श्रोताओं को हम सुनवाने जा रहे हैं उसकी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता कौन है?
1: जी हमारे पास बहुत सारे पत्र हैं, तो ये पत्र हमें मिला है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से। और गीत सुनना चाहते हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। अगला पत्र हमें मिला है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा का। और इसी गीत की फरमाइश हम तक भेजी है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक ने। ये पत्र हमें मिला है इस्लामपुरा सनावत से, और गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, रमेश गौड़, मोहम्मद सादाब खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री, राजू वल्टे और मोहम्मद सईद खत्री। ये पत्र मिला है बक्सर बिहार से। पत्र भेजने वाले हैं शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से, वलीउल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से, राज एसडी अंसारी और इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छटिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
0: और ये पत्र हमें भेजा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्परानी, आकाश कुमार ने। जिला झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाईसाई गांव से आप हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर उनके साथ है छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। ये पत्र हमें भेजा है कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरमान इदरीसी ने। लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से आप हैं नारायण भाऊ, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना, गणेश कार्तिक, ब्रोनो, उषा, स्वर्णा, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालजी चौधरी, शाही मार्केट सियोहरा से, सियोहरा जिला बिजनौर से ये पत्र हमें भेज रहे हैं आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी। और आप सबने फरमाइश की है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म टार्जन द वंडर कार के गीत सुनने के लिए, जिसकी

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो आपको सुनवा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म राजकुमार से। आवाज है लता मंगेशकर की और इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है शैलेंद्र ने। और इस गीत को पसंद करने वाले हैं आप सभी जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप। ये गीत सुनना चाहते हैं प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं पटियाली रोड गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, बेबी आरिबा हबीबा। और यही गीत की इसी गीत की फरमाइश अपने मैसेज के माध्यम से हमें भेजी है शेरवानी स्कूल गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आर्या अंसारी।
1: इसी गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे अगले श्रोता हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेरा, कोमल मेरा, किरण मेरा, कपिल मेरा, कुणाल मेरा। ये फरमाइश हमें भेजी है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष और उनके साथ हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोती, महेंद्र मोदी, कुलदीप कवल। और ये मैसेज हमें भेजा है नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज़ मतीन, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन, एम डी यासीन, मूसा करीम, शेख सलीम, शेख चांद फारूक और उनके परिवार के सदस्यों ने।
0: ये मैसेज हमें मिला है फातिमा कॉलोनी महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजियान सीर और साजिद शाहिन का। और साथ ही भेजे हैं गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल, जैनब मुजावर। और सुनना चाहते हैं इसी गीत को जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। मोहल्ला कटरा मंडी धनोरा से ये मैसेज हमें मिला है महफूज हसन, फिरदोस अंसारी और हसन छित्तू का। और आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

0: रिम जिम,
1: हाँ फरीना,
0: देखना मैसेज इतने हैं कि मतलब हमें लग रहा है कि हम अपने 1 घंटे के सफर में कैसे इन मैसेजेस को पढ़ पाएंगे।
1: जी हमारे श्रोता हमसे इतना प्यार करते हैं, उनके लगातार मैसेजेस कार्यक्रम में आ रहे हैं अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए, तो जितना हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी श्रोता हैं उनके जो मैसेजेस हैं उन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे।
0: तो चलो फिर से शुरू करते हैं ये सिलसिला।
1: जी
0: तो ये मैसेज हमें भेजा है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार बड़ी खुशी से हमें ये मैसेज कर रहा है।
1: जी
0: और ये मैसेज हमें भेजा है खेल बाजार पानीपत से, आप हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, उनके साथ ही मैसेज कर रहे हैं शिवाजी कॉलोनी रोहसक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। ये मैसेज भेजा है मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून ने जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से।
1: ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, नदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मीरापुर बेगा पोस्ट मंडावली नजीबाबाद से कासिम पेंटर, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद उवैश, डॉक्टर विजय, रोहतास सैनी, मोहम्मद अकदस और अब्दुल हादी। ये मैसेज हमें मिला है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे का, और कार्यक्रम है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित आपकी पसंद के गीत सुनवाने का। तो रिम झिम कार्यक्रम का अगला गीत हम जो सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को, वो किस फिल्म से लिया है?

0: वो गीत हमने लिया है साजन फिल्म से, आवाज़ है अलका याग्निक की, संगीत नदीम श्रवण का और गीत लिखा है समीर ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे सभी श्रोता मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, राम जी और इनके परिवार के सभी लोगों ने।
1: रिमझिम तुम्हें मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकती हूँ, जरा एक बात तुमने नोटिस की है आज स्क्रीन पर?
0: क्या फरीना?
1: कि आज हमारे कई सारे श्रोताओं ने हमें सिर्फ एक ही बार मैसेज किया है।
0: जी हाँ, मैं देख रही हूँ बहुत सारे श्रोता हमारे एक ही बार मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मैसेजेस एक बार शामिल हो गया और दोबारा हमारे श्रोता उसे भेज देते हैं तो गलती से वो मैसेज दोबारा शामिल हो जाते हैं और हमारे जो और श्रोता हैं उनके मैसेजेस कार्यक्रम में शामिल होने से रह जाते हैं।
1: और हमें हमारे श्रोताओं की ये अदा बहुत पसंद आई और हम चाहेंगे कि हमारे अन्य श्रोताओं भी जो हैं इनसे सीख लेंगे कि कार्यक्रम में मैसेज एक बार करें।
0: जी तो... और कार्यक्रम में जो श्रोता है, अगले श्रोता है वो इसी गीत को सुनना चाहते हैं, वो है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ये अगला मैसेज हमें मिला है रुड़की कैंट से। मैसेज भेजने वाले हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। ये मैसेज है जेल रोड नजीबाबाद से राधिका जाटव, प्रभा रानी जटोरिया और दिल्ली से मैसेज भेज रहे हैं मनमोहन चुग, मीठी चुग और खट्टी चुग, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, राज अंसारी और फातमा नाज अंसारी।
1: ये मैसेज हमें भेजा है भटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जिला अमरोहा नई बस्ती से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, अफ़ान सिद्दीकी और मोहम्मद यासीन अंसारी। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जिला नांदेड़ येताला महाराज से शंकर लाल जयसवाल, गणेश लाल जयसवाल, शुभम प्रसाद अर्णव, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति जयसवाल।
0: पुराना तालाब डुमराव से ये मैसेज हमें मिला है वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी, शबनम बानो और दिल्ली से उनके साथ मैसेज भेज रहे हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। बक्सर से ये मैसेज हमें मिला है राज एस डी अंसारी और फातमा नाज का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गंज डुंडवाला से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी। मजनू का टिल्ला से इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये फरमाइश हमें भेजी है हिंदुस्तान रेडियो मित्र पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने।
1: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं शास्त्री नगर बीच शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल। यही गीत सुनना चाहते हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरान, फारिया और ताहिरा। उनके साथ हैं बुलंदशहर से एमएस अब्बासी और पूरा ही अब्बासी परिवार। यही गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं अलका याग्निक को फिल्म साजन में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो आपको सुनवा रहे हैं वो हमने लिया है साधना सरगम की आवाज में। फिल्म का नाम है जाबाज। इंदिवर ने दिया है इसे, लिखा है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। तो इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान। और इसी गीत के लिए फरमाइश हम तक भेजी है गंज डुंडवारा से कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही ने। ये मैसेज हमें मिला है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालौर राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी का। और साथ ही मैसेज भेज रहे हैं मनभावन नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा, बाई बागरी। अगला मैसेज हमें मिला है कृष्ण नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हीना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि का। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं आप। राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। ये मैसेज हमें मिला है झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। और साथ ही मैसेज भेजने वाले हैं बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत।
1: इस गीत को सुनने के लिए ये फरमाइश हमें लिख भेजी है आप हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से रफत साहब, सईद भाई, राशिद भाई, असद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज। इसी गीत को सुनने की हसरत लिख भेजी है करूला मुरादाबाद से अयुब खान, ईरम गुड़िया, शुएब खान, उनके साथ हैं सिंधोली वीरगंज बरेली से जिशान वारसी। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली कुरवाली से। शहर का नाम इन्होंने नहीं लिखा है। आगे से आप मैसेज भेजें तो अपने शहर का नाम ज़रूर लिख भेजें। इसी गीत को सुनना चाहा है थाना शिवाला कला बिजनौर से रवि पाल राजपूत, रक्षु राजपूत, वशल राजपूत, कुहू राजपूत और उनके परिवार के सदस्यों ने। वरवट बकाल बुंडाना से हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे। आप हैं हमारे श्रोता हैं ये बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अभी, नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीहू और दिया चौरासिया भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेज रहे हैं।
0: ये मैसेज हमें मिला है आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग का सहारनपुर से। ये मैसेज सुनना चाहते हैं और इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। ये मैसेज हमें मिला है झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली और निशा और उनके सभी साथियों का। अगला मैसेज जो हमें मिला है वो सुनना चाहते हैं इसी गीत को गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। साथ ही ये मैसेज हमें मिला है मलियाना सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान।

0: कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आया सावन झुमके से, जिसको आवाज दी है लता मंगेशकर मोहम्मद रफी ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं पांडर कवड़ा जिला यवतमाल से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे। ये मैसेज हमें भेजा है गांव जाखौद राजस्थान से। आप हैं शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक। ये मैसेज हमें भेजा है विलेज एंड पोस्ट राहू नांगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान और अक्षत चौहान ने, और उनके साथ हैं शैलेंद्र। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक, सुरेश और उनके परिवार के सदस्य। ये मैसेज इन्होंने हमें भेजा है काशगंज यूपी से।
1: इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। ये मैसेज मिला है हमें रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान का, भिलाड़ा, राजस्थान।

0: से और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। श्रोताओं ने अपना नाम लिखकर इसमें, हाँ ये श्रोता हमारे हैं हरियाणा से, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के अन्य सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता। ये श्रोता हमारे हैं, हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि वो अपनी पसंद के गीत तो भेज देते हैं लेकिन अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो अपना नाम अपने पूरे पते के साथ हमें भेजें। तो ये अगला मैसेज हमें मिला है, महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं सावनकर, गंगाधर, विजय लक्ष्मी और राजेश, राकेश, ऋषिता। ये मैसेज है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, वाणी और आरबी खेड़ा का पंजाब से।
1: इसी गीत को सुनने की हसरत हमें लिख भेजी है कनवीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से, परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन दामन, अभिज्योत और उनके परिवार के सदस्यों ने इसी गीत को सुनने के लिए हमें ये ख्वाहिश लिख भेजी है। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं। जिनके हमारे श्रोता मतलब अपना गीत तो लिख भेज रहे हैं लेकिन अपना नाम पता नहीं लिख भेज रहे हैं, तो कैसे हम उनका मैसेज शामिल करें? हम तो शामिल करना चाहते हैं
0: जी। तो ये पत्र हमें मिला है नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, हम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय का, और गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल, अवधेश राय और प्रीति राय इस मैसेज को, इस पत्र को हम तक भेज रहे हैं अपने पसंद के गीत सुनने के लिए।
1: तेलंगाना निजामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीम, दानिश और आसिफ शेख, ये मैसेज हमें लिख भेजा है। शमसुल कमर राही, शाइन फातिमा, आदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान खान अंसारी, कलीम अंसारी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं। नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, राहुल शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा और उनके परिवार के सदस्य इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। रजक मोहम्मद, शमीमा बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आप हैं राजस्थान हनुमानगढ़ से, हमें मैसेज भेजा है। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया, अयान बाबू, धनौरी तेलीवाला, उत्तराखंड से हमें मैसेज कर रहे हैं।
0: अगला मैसेज हमें मिला है काटा रोड महाराष्ट्र से मास्टर विठल सोरेशो, सुषमा परिधि और मायरा सुरेशो का। ये पत्र हमें मिला है करगेना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, रवनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव देशमुख और संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वत, कल्पना सानवी और प्रणाली देशमुख। अगला जो हमें पत्र मिला है वो है रमेश चंद्र चौहान, सेक्टर 5, जोधपुर राजस्थान से। ये मैसेज हमें मिला है आकोट से, भेजने वाले हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए और के संजीव डाबेराव। ये मैसेज हमें भेज रहे हैं झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप।
1: और ये मैसेज हमें

0: जा है गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, सवीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान ने। और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गुन्नौर से आदिल कुमार, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली और उनके परिवार के सदस्य। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं। फिर से नाम नहीं लिखकर भेजा है इन्होंने। ये है हमारे श्रोता मैसेज भेजने वाले दिग्दर्शन और कविता गौड़, शोभापुर मेरठ से। और ये अंतिम मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं
1: महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिला नाचानी।
0: तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म आया सावन झूम के फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

श्रुता वक्त की ही अदा कह रही है कि अब मुझे यानी फरीना को कार्यक्रम से विदा ले लेनी चाहिए और आप बने रहिएगा रिमझिम के साथ अगले कार्यक्रमों तक। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.67 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खुदगर्ज फिल्म का ये गीत साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाज में। संगीत था राजेश रोशन का और गीत के बोल लिखे थे इंदीवर और फारूक केसर ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। आवाजें कुमार सानू और साधना सरगम की। फिल्म का नाम है दम लगा के हिंसा।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और एसबी बाला सुब्रमण्यम की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। इस गीत की धुन तैयार की है राम लक्ष्मण ने और गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र रावल ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
3: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, let's start the fun.

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। और हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म यस बॉस में, और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत कुमार सानू और साधना सरगम की युगल आवाजों में। फिल्म है एक लड़का एक लड़की। इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। 11:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से

0: कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
1: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
1: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
0: श्रोताओ, एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: जी
0: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
0: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
1: जी।
0: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
1: जी,
0: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
1: जी।
0: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओ, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
1: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
0: आशा है श्रोताओ कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
1: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
0: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
1: जी।
0: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
1: जी।
0: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
1: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
0: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
1: जी।
0: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
1: जी।
0: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
1: जी।
0: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
1: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
0: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक

0: को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम नदी का सफर।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कलकल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
4: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
5: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
4: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
5: अच्छा,
2: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
3: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
5: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
2: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
4: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।

0: वो खुशी खुशी बहने लगी।
1: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
0: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
2: सखी अब हम सब मिलकर बहेंगी, हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
2: हाँ।
0: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
2: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
0: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
2: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
3: कूद जाओ ना।
2: कूद जाऊं?
3: डरो मत।
2: हाँ?
3: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
2: अच्छा तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
4: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
2: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं, और मैं बीमार हो जाती हूँ।

0: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
1: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
2: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
1: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
2: अच्छा,
1: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
2: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
0: चरैवेति, यही तो जीवन है।
3: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ

0: में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ ऐसे, दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश। इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
1: हेलन आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया।
2: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
0: अरे ये पानी का नल, हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलन, हेलन अपना हाथ मुझे दो। हाँ शाबाश। अच्छा अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे हाँ। अच्छा अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ यूं शुरू हुआ हेलन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
2: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई। यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
0: मिसेस केलर
3: जी,
0: हेलन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
3: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में

0: की रुचि ली थी। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
1: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
0: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
1: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। लीजिए पेश है आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कानून की बात शाम 7:32 पर हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। सुगम संगीत में आनंद लीजिएगा जोगिंदर कौर के गाए कुछ शब्द का शाम 7:45 पर।

शाम 6:45 पर श्रोता सुनेंगे विविधा। इसमें मनीषा वर्मा की वार्ता का विषय रहेगा मानवता के बिना विज्ञान अराजकता मात्र है। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। इसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता, मवेशियों में लंपी रोग, कारण, लक्षण और बचाव। इस विषय पर डॉक्टर रजनीश से बातचीत रहेगी जितेंद्र कुमार की। और कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा

युव वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:15 पर। इसमें क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, लव स्टोरी बूस्टर और साथ ही आप सुनेंगे फिल्म संगीत। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना विषय पर जानकारी दी जाएगी। समय रहेगा शाम 5:00।

संदेश.com व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। लोकधारा के अंतर्गत आप सुनेंगे हीरा सिंह राणा के गाए कुमावनी लोकगीत दिन में 1:45 पर। घर संसार कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 1:15 पर। इसमें श्रोता सुनेंगे लघु नाटिका राखी का असली मतलब। इसमें प्रतिभागी कलाकार हैं नंदिनी माहेश्वरी, मोहित राजपूत, शुमाइला, दीपांशु और तनप्रीत कौर। निर्देशक अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा। साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विश्व फोटोग्राफी दिवस और मानवतावादी दिवस।

ये थी जानकारी कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत वासुदेव देशपांडे का गाया राग वृंदावनी सारंग, विलंबित एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं साबिर हुसैन खान और सारंगी पर हैं लियाकत अली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत वासुदेव देश पांडे का काया राग वृंदावनी सारंग। विलंबित ताल एक और द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत कर रहे थे साबिर हुसैन खान और सारंगी पर थे लियाकत अली। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और उदित नारायण की युगल आवाजों में। इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने। फिल्म का नाम है लगान। श्रोताओं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। हम उस पर अपना अधिकार समझने लगते हैं। उसका किसी और से बात करना हमें अखर

ने लगता है। न जाने ये कैसा डर है, शायद अपने प्रेम के खो जाने का डर हो। लेकिन श्रोताओं, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, हमें सबसे पहले उस पर विश्वास करना होता है, तभी वो संबंध मजबूत होता है। और विश्वास ही रिश्ते की पहली नींव होती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म लगान से आशा भोसले और उदित नारायण की युगल आवाजों में।

श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मृत्युदंड से, जिसे संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। श्रोताओं, श्रृंगार व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद लगा देता है ना? और श्रृंगार पर तो महिलाओं का पहला अधिकार माना जाता है। बिना श्रृंगार के ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा हो, लेकिन अगर कोई साज श्रृंगार कर ले तो फिर नजर हटाने को जी ही नहीं चाहता। और श्रोताओं, क्या पता कोई आपका साथी भी श्रृंगार करके बैठा हो और ये उम्मीद लगा रखी हो कि आप उनकी तारीफ करें, है ना? क्योंकि श्रोताओं, तारीफ करनी भी रिश्तों में जरूरी है। रिश्तों में कमियां नहीं, तारीफें भी जरूरी हैं। तो आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में एक ऐसा ही गीत, फिल्म है मृत्युदंड और आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म है।

पैडमैन। संगीत है अमित त्रिवेदी का और गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने। जब से तेरे साथ प्यार के बंधन में बंधे हैं, जब से तेरे साथ प्यार के बंधन में बंधे हैं, तब से तुम्हें अपना मान लिया है। जैसे लिख दी है तुमने अपनी जिंदगी मेरे नाम, जैसे लिख दी है तुमने अपनी जिंदगी मेरे नाम, वैसे ही मैंने भी सब कुछ तेरे नाम कर दिया है, सब कुछ तेरे नाम कर दिया है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की युगल आवाजों में, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत निर्देशन है हृदयनाथ मंगेशकर का और फिल्म का नाम है धनवान। जब से तेरी आंखों को देखा है होश ही नहीं है हमें, जब से तेरी आंखों को देखा है होश ही नहीं है हमें, दिन रात यही लगता है कि ये समंदर है या फिर जाम है कोई। जब से हम इसमें डूबे हैं बस डूबे ही रह गए हैं।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भीगी पलके से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी। संगीत है जुगल किशोर और तिलक राज का, और इस गीत को लिखा है एमजी हशमत ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें

0: की गई हैं।
1: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन देन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग आधा प्रतिशत गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a growth range of 6-8%. He said this growth story is driven by 4 key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Addressing the Uttar Pradesh-Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said, investment is an important part of the country's growth journey, with India investing around $130 billion US dollars every year.
0: We have been growing at a very sustained pace of 6 to 8% growth band with moderate under control inflation, with very good balance sheet, and making sure that the entire country grows together. This is possible because of the four pillars of our growth story: investment in social, digital and physical infrastructure.
3: The Enforcement Directorate or ED has conducted searches at 10 premises in Rampur and Saharanpur in Uttar Pradesh and Delhi in connection with a money laundering investigation involving the Maulana Muhammad Ali Johar Trust and Muhammad Ali Johar University in Rampur. The ED said the searches were carried out under the Prevention of Money Laundering Act 2002. It added the investigation relates to the alleged diversion of government contract funds through private contractors and their subsequent use, including for creation of assets for the university or the trust. The ED said that the searches were aimed at tracing the alleged proceeds of crime and recovering financial records, documents and digital evidence related to the diversion and utilization of government funds. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has today embarked on an official visit to Singapore with a ministerial delegation to participate in the fourth India-Singapore Ministerial Roundtable. The delegation comprised External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and Union Minister of State for Electronics and IT, Jitin Prasad. Established in 2022, the India-Singapore Ministerial Roundtable is a key high-level economic mechanism between India and Singapore. It provides a platform to review progress and explore new areas of collaboration across six pillars, including advanced manufacturing, connectivity, digitalization, healthcare and medicine, skill development and sustainability. In Jammu and Kashmir, in view of the prevailing adverse weather conditions, Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board has temporarily suspended fresh registration for the Sri Mata Vaishno Devi pilgrimage as a precautionary measure. The pilgrims who have already completed their registration and possess valid RFID cards are being permitted to proceed with the pilgrimage. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met his Singaporean counterpart Vivian Balakrishnan on his arrival in the country for the fourth India-Singapore Ministerial Roundtable being held tomorrow. In a social media post, Dr. Jayashankar informed that he later joined Mr. Balakrishnan in laying the foundation stone of the new Chancery Complex of the High Commission of India in Singapore. The minister expressed confidence that the complex will reflect the new era of India-Singapore comprehensive strategic partnership and further strengthen services for the Indian diaspora. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 315 points to 76,921, while the Nifty shed 97 points to 24,058 when reports last came in. In hockey, Indian men's team will face arch rivals Pakistan in a crucial Pool D encounter of the AFIH World Cup at the Wagenaar Hockey Stadium in Amstelveen, the Netherlands, today. The match will start at 3 p.m. Indian Standard Time. Both teams will battle for a place in the next round. India is currently on 3 points from 2 matches. On the other hand, Indian women's team produced a dominant 6-1 victory against South Africa in the second group stage match of the AFIH World Cup at the Wagenaar Hockey Stadium last evening. In the BWF Badminton World Championships, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krasto have advanced to the pre-quarterfinals of the mixed doubles event at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. And that is the end of this news bulletin.
4: ये लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान सरमायाकारी समिट 2026 में शिरकत की। इस 5 रोजा सरमायाकारी समिट के जरिए उत्तर प्रदेश हुकूमत का मकसद जापानी कंपनियों की कारोबारी दिलचस्पी को बढ़ाना और खातिर खास सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, मुश्तरका प्रोजेक्ट्स और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि भारत और जापान के ताल्लुकात सकाफती और रूहानी एतमाद पर मबनी हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध की शफकत और जिंदगी का निज़ाम-ओ-ज़ब्त भी शामिल है।
5: भारत और जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी, शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड

0: मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।
1: इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव और वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने भी इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। उत्तर प्रदेश जापान सरमायाकारी समिट 2026 से खिताब करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की इकतसादी तरक्की को अब आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क 6-8% की शरह नमो से आगे बढ़ रहा है। जनाब वैष्णव ने कहा कि मुल्क की इकतसादी तरक्की 4 बड़े सुतूनों पर मरकूज है। इनमें समाजी, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी, जामे तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग पर खसूसी जोर शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत हर साल तकरीबन $130 बिलियन की सरमायाकारी को रागिब कर रहा है। रियासत में बुनियादी तालीम के ढांचे को मजबूत बनाने और देही इलाकों के बच्चों को जदीद और मेयारी तालीम फराहम करने के मकसद से मथुरा, प्रतापगढ़ और बलरामपुर में चीफ मिनिस्टर मॉडल कंपोजिट स्कूल की तामीर के लिए कुल 74.26 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। बुनियादी तालीम के वजीर ममलकत आज़ाद चार्ज संदीप सिंह ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में रियासती हुकूमत हर बच्चे को मेयारी तालीम और

0: शानदार कारकर्दगी के लिए अर्जुन अवार्ड मिलेगा। अर्जुन अवार्ड हासिल करने वालों में गाजीपुर जिले से हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल, बागपत से शूटर अखिल श्योरान और मेरठ से एथलीट प्रियंका गोस्वामी शामिल हैं। भारतीय फुटबॉल लीजेंड ईसाया अरुमनायगम को लाइफटाइम अचीवमेंट के अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। रियासती हुकूमत ने जुलाई से स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में काम करने वाले आउटसोर्स अहलकारों के एजाजिया में 5% इजाफा किया है। रियासती ट्रांसपोर्ट के वजीर दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये इजाफा कंप्यूटर ऑपरेटरों, अकाउंटेंट कम टेली ऑपरेटर्स और प्रोग्रामर्स के एजाजिया में किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में काम करने वाले आउटसोर्स अहलकारों के एजाजिया में हर साल 10% इजाफे का इंतजाम है। इसके तहत जनवरी में 5% और जुलाई में 5% इजाफा किया गया है। रियासत के कई ज़िलों में गुज़िश्ता 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को थारी बहन तनप्रीत की प्यार भरी राम राम। मैंने आप सब सुन रही हो अपना प्रिय कार्यक्रम घर संसार, लेकिन मैंने उससे पहले सुने हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: बहनों आपका फिर से स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। बहनों कहे है ना कि कुछ पल बीत जा हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें हमेशा हमारे साथ रहे हैं। एक छोटी सी तस्वीर हमें बरसों पुरानी यादों में ले जाए, कभी मायके की याद, कभी शादी ब्याह की याद, कभी खेत खलिहान की याद, तो कभी बच्चों के बचपन की। बहनों आज 19 अगस्त है और आज के दिन मनाया जा है बहनों विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो चलिए बहनों आज बात करें हैं तस्वीरों की, उन तस्वीरों की बहनों जो हमारे जीवन की छोटी बड़ी खुशियों और यादों को अपने अंदर समेट कर रखे हैं। बहनों पहले के जमाने में क्या होता भी, फोटो खिंचवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका माना जाता भी। गांव में जब कोई फोटोग्राफर आ जाता ना, कोई अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहने था, कोई बच्चों को सजाने में लग जाता और वही फिर फोटो जो है वही तस्वीर जो है वो अपने घर में बहुत ही संभाल कर रखी जाती। लेकिन बहनों आजकल जो है तस्वीरें खींचने के साथ साथ उन्हें हम सोशल मीडिया पर डाल दें, तो बहनों अपनी और अपने परिवार की निजी तस्वीरें साझा करते समय सावधानी बरतें। खासकर बहनों बच्चों की तस्वीरें बिना सोचे समझे सार्वजनिक जगहों पर कभी मत डालें। बहनों इतना हमारी ग्रामीण बहनें भी मोबाइल कैमरे का अच्छा इस्तेमाल कर सकी हैं, उन्हें भी सब कुछ आवे हैं आजकल तो बहनों। तो भी घर के बने उत्पाद जो हैं, हस्तशिल्प है, अचार पापड़ है, सिलाई कढ़ाई या खेती से जुड़ी चीज़ों की अच्छी तस्वीरें खींचकर हम उन्हें बहनों अपने ग्राहकों तक पहुँचा सके हैं, जिससे कि हमारी जो है वो बहनों उससे हमारा रुतबा भी बढ़ेगा और सबको पता चलेगा कि हम जो है हम क्या काम कर रहे हैं और कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं। सब हम सोशल मीडिया पर डालकर उनको हम अपने जो कारोबार है उसको भी बढ़ा सके हैं। और बहनों फोटोग्राफी सिर्फ यादें संजोने का माध्यम ही ना है बल्कि रोजगार का साधन भी बन सके है। और बहनों आज गाँव के युवा शादी ब्याह कार्यक्रम खेती पशुपालन

0: और छोटे व्यवसायों की फोटोग्राफी और वीडियो बनाकर कमाई भी कर सके हैं। और एक बात बहनों की, जब तस्वीर सिर्फ सुंदरता दिखाने की खातिर ना होती, भी हमारे गांव की संस्कृति, वहां के लोकगीत, पारंपरिक पहनावा, पुरानी खेती के तरीके और लोक परंपराओं की तस्वीरों के जरिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन तक भी हम जो है वो पहुंचा सके हैं। तो बहनों, आज फोटोग्राफिक दिवस पर क्यों ना हम अपने पुराने फोटो एल्बम निकालें हैं बहनों, तो और उन्हें देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं और कहें कि देखो कि वो पहले कैसे लगे थे, उनके माता पिता कैसे लगे थे, और बहनों परिवार में कितने बदलाव आए हैं, और पहले हमारा गांव कैसे हुए था, ये सब चीजें उन्हें दिखाओ। तो बहनों, इससे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, तो इससे बहनों बच्चों को अपने परिवार और अपनी जड़ों से जुड़ने का भी मौका मिले है। तो बहनों, आज एक तस्वीर जरूर खींचेगा, लेकिन मैंने एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ मोबाइल में ही नहीं बल्कि अपने जो कि हमारे दिल में उतर जाए। तो बहनों, कभी हम बात करे हैं फोटोग्राफी दिवस के बारे में कर रहे हैं, तो लेकिन मैंने तस्वीरें हमारे जीवन में अनमोल पलों को सहेज कर रखे हैं। और बहनों, जब तस्वीरों की बात हो रही है, तो आज के दिन को रक्षाबंधन के दिन से क्यों ना जोड़ा जाए। तो बहनों, रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार बहन भाई के प्यार और विश्वास का प्रतीक होवे। और अब जब रक्षाबंधन का त्योहार बहनों आने ही वाला है, तो सोचिए बहनों, भाई की कलाई पर सजी राखी है ना, बहन की आंखों में प्यार और दोनों की बचपन की यादें, अगर इन पलों को ही तस्वीर खींच जा तो सिर्फ एक फोटो नहीं बहनों बल्कि पूरे रिश्ते की कहानी बन जा है ना। तो बहनों, भाई बहन का रिश्ता, प्यार, उनका विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के सुख दुख के साथ खड़े रहने से जो रिश्ता है वो और भी मजबूत बने हैं बहनों। इसी रिश्ते की एक प्यारी सी कहानी अब मैं आपके सामने लेकर आई हूं, तो आइए बहनों सुनते हैं एक लघु नाटिका, रक्षाबंधन का असली मतलब, जो हमें बतावेगी कि राखी का असली मतलब का होवे, भी सिर्फ कलाई पर धागा बांधना ना होवे बल्कि रिश्ते की जिम्मेदारी और प्यार को निभाना भी होवे। तो बहनों, ध्यान लगाकर सुनिएगा लघु नाटिका रक्षाबंधन का असली मतलब। बहनों, चंग है, आज का चंग है बात है चौकी, इसके अंतर्गत हम सुनेंगे लघु नाटिका। और बहनों, प्रतिभागी हैं तनप्रीत कौर, नंदिनी महेश्वरी, मोहित राजपूत, शुमाइला तिपांशु, और आलेख है तनप्रीत कौर का, निर्देशक है अंकित सैनिका और प्रस्तुतकर्ता है शोभित शर्मा। तो चलिए बहनों, मिलकर सुने हैं लघु नाटिका रक्षाबंधन का असली मतलब।
1: चौकी चौकी चौकी बात है चौकी चौकी चौकी चौकी।

0: अरे पूजा, बाहर किसका इंतजार कर रही हो तुम? बाहर क्यों बैठी हो अकेले, क्या हुआ?
1: कुछ नहीं नेहा, बस मन थोड़ा सा उदास है मेरा।
0: अरे लेकिन क्यों, आज तो इतना बड़ा त्योहार है भाई बहन का और तुम मुंह लटकाए बैठी हो। देखो मैंने अपने रोहन भैया के लिए बहुत प्यारी राखी बनाई है, देखो तो कैसी लग रही है।
1: अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है ये, इतने सारे मोती लगाए तुमने इसमें, बहुत प्यारी है।
0: तुमने नहीं बनाई रोहित भैया के लिए राखी? हर बार तो बनाते हो, इस बार क्या हुआ?
1: मैं क्यों नहीं बनाऊंगी अपने भैया के लिए, मैंने भी बनाई है राखी।
0: अच्छा दिखाना जरा।
1: एक मिनट, अभी लाई अंदर से, घर में रखी है पूरी थाल सजा के। काश कि मेरे भैया भी आ जाएं, मैं उन्हें राखी बांधूं, तिलक लगाऊं और अपने भैया को अपने हाथ से मिठाई खिलाऊं। अच्छा चल अंदर तो आ, देखो मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। और तुम्हें पता है मम्मी ने मावे के लड्डू बनाए हम सब के लिए, खाओगी? लाऊं?
0: अरे नहीं नहीं अभी नहीं खाऊंगी, जब तक भाई को राखी ना बांध दूं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी।
1: रोहन भैया आ गए क्या?
0: नहीं पूजा अभी तक नहीं आए, आजकल रोहन भैया एनजीओ में काम कर रहे हैं, वह अनाथ बच्चों के साथ राखी मना रहे हैं ताकि बेचारे उन बच्चों को भी परिवार का प्यार मिल सके, और इस बार तो शायद भैया घर आएंगे ही नहीं।
1: अरे नेहा उदास मत होना, तू ये भी तो सोचना कितनी अच्छी बात है कि रोहन भैया दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं, आजकल कौन करता है किसी के लिए। और देखो वो वहाँ रुके हैं एनजीओ के बच्चों के साथ, उनके साथ राखी मना रहे हैं।
0: हाँ पूजा रोहन भैया बहुत अच्छे हैं, पर मेरा मन भी तो करता है कि रक्षाबंधन पर अपने भैया को राखी बांधूं, पर चल कोई बात नहीं, वो जिनका कोई नहीं आज उनके साथ त्योहार मनाकर उनको खुशी दे रहे हैं। मैं भैया से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल पर ही बात कर लूंगी, ऐसे ही त्योहार मना लूं।

0: क्या हुआ, पर ऐसे कौन त्योहार मनाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और हम कर भी तो नहीं सकते। तुम बताओ, रोहित भैया आ रहे हैं?
1: कहाँ नेहा, जब से भैया की सीमा पर नौकरी लगी है वो आज तक किसी भी त्योहार पर आए हैं क्या? वो भी रोहन भैया की तरह सीमा पर ही रक्षाबंधन मनाएंगे।
0: लेकिन पूजा, तेरे लिए कितने गर्व की बात है, तेरे भैया सीमा पर डटे रहते हैं ताकि हम सब अपने देश में सुरक्षित रहें और खुशी खुशी त्योहार मनाएं।
1: हाँ नेहा, गर्व की बात तो तेरे लिए भी है, तेरे भैया भी तो अनाथ बच्चों के साथ त्योहार मना रहे हैं ना।
0: हाँ पूजा, सच में हम दोनों के भाई बहुत अच्छे हैं, नेक दिल हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, पर क्या करूं, रक्षाबंधन पर भैया की बहुत याद आ रही है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे भैया आज आ जाए।
1: ठीक है, फिर तो मैं भी प्रार्थना करूंगी कि भगवान तेरी प्रार्थना सुन ले और रोहन भैया आज आ ही जाए।
0: और साथ में रोहित भैया भी, है ना?
1: हाँ
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: अरे नेहा, बाहर क्या कर रही, किससे बतिया रही है? जल्दी अंदर आ, कितने काम पड़े अभी, पूजा के साथ बातें हो रही। आ जाओ दोनों अंदर, आओ आओ अंदर।
1: आ गए आंटी, आ गए।
0: सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, ले जरा से लड्डू तो खा के देख कैसे बने हैं। ले बेटा पूजा, तू भी खा, देख जरा कैसे बने।
1: आंटी ये तो बहुत स्वादिष्ट है, आपने घर में कितने अच्छे लड्डू बनाया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया।
0: मैं तो बेटा घर में ही बनाऊं सारी मिठाइयां, बाजार की मिठाइयों में मुझे भरोसा ना है, कितनी मिलावट करें वो। त्योहार पर तो और हलवाई जो है ना, और ज्यादा मिलावट करें, नकली मावा इस्तेमाल करें वो।
1: आंटी बात तो आपने बिल्कुल सही की है। आंटी पता है, आपने मेरी मम्मी को भी सिखा देना ये मिठाई बनाना, फिर मुझे भी घर की मिठाई मिल जाया करेगी।
0: अरे बिटिया, तेरी माँ कोई कम होशियार है क्या? और क्या नहीं, मैंने आंटी के हाथ की खीर खाई थी, क्या स्वाद था उसमें, मैंने तो आज तक ऐसी खीर खाई ही नहीं।
1: हाँ बेटा, घर की चीजें तो स्वादिष्ट ही होवे और सेहत को नुकसान भी ना देती। हाँ आंटी ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
0: अरे नेहा, आज तो वो सैनिकों के लिए रक्षाबंधन पर विशेष कार्यक्रम आने वाला था रेडियो पे, जरा लगाइयो तो रेडियो।
2: हाँ हाँ माँ, याद आ गया, मैं अभी लगाती हूँ, रुक जाओ।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हमारे श्रोता सुन रहे हैं सैनिक भाइयों के संदेशों पर आधारित रक्षाबंधन पर विशेष कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं
0: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
0: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
0: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: देखो तो आज तो बहुत मजा आएगा, सैनिक भाई अपने बहनों के लिए रेडियो के माध्यम से संदेश देंगे।
3: हाँ बेटा, वो इतनी दूर सीमा पर जो होवे वे संदेश भेजकर वो अपनी बहनों के प्रति अपना प्रेम दिखावे।
4: हाँ आंटी, मेरे भैया भी नहीं आ सकते, कम से कम एक संदेश भेजकर उनको अपना मैसेज तो दे सकते हैं ना हम।
0: तो श्रोताओं, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार, एक ऐसा दिन जब एक छोटी सी राखी बड़े बड़े रिश्तों को जोड़ देती है। रक्षाबंधन के मौके पर हम बात कर रहे हैं इसके असली महत्व की। रक्षाबंधन का असली मतलब यानी प्यार, जिम्मेदारी और दूसरों की रक्षा का वचन। जी कौन श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
5: हेलो सर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ।
6: तो रोहित कैसे हैं आप?

0: जी सर, मैं अच्छा हूँ।
1: सर, जैसे कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं अपने घर नहीं जा पाया ड्यूटी के चलते, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से अपनी बहन से कुछ कहना चाहता हूँ।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, कहिए आप।
1: पूजा, मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन मेरी प्यारी बहन, मेरी मजबूरी है। मैं रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने नहीं आ पाया, क्योंकि मैं सीमा पर रहकर केवल एक बहन का नहीं, बल्कि उन सभी बहनों की रक्षा का वचन निभा रहा हूँ, और यही मेरा कर्तव्य भी है। पर मैं वादा करता हूँ, मैं बहन छुट्टी लेकर जल्द ही आऊंगा और तुम सबसे मिलूंगा।
3: नहीं भैया, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे तुम पर गर्व है भैया, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी भैया।
4: हाँ पूजा, हम सबको भी रोहित भैया पर बहुत गर्व है। नेहा बेटा, देखियो जरा कौन है दरवाजे पे। देख
5: जी माँ, अभी देखती हूँ।
4: अरे भैया, आप आ गए। अरे भैया, माँ देखो ना, भैया आ गए।
6: हाँ बहन, मैं आ गया। भला मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने कैसे ना आता। पूजा, मैं तेरा भी तो भाई हूँ, नहीं आ पाया तो क्या हुआ, तू मेरी राखी बांधे।
7: लो आ जाओ सर, बांध लो राखी, ले आई मैं थाल और मिठाई भी। सब राखी बांधते हैं।
6: हाँ।

0: चौकी चौकी चौकी बात है चौकी, चौकी चौकी चौकी बात है चौकी।
1: बहनों अभी आप सुन रही थी चंक बात है चौकी के अंतर्गत लघु नाटिका राखी का असली मतलब। बहनों कैसे लगी आपको नाटिका? तो बहनों इसमें प्रतिभागी थे नंदिनी महेश्वरी, मोहित राजपूत, शुमाइला, दीपांशु, तनप्रीत कौर, और बहन लेखन था तनप्रीत कौर का, निर्देशन था अंकित सैनी का, और प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। तो बहनों कैसे लगी आपको नाटिका? भी उम्मीद करे हूँ मेरी बहनों को पसंद आई होगी। तो बहनों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चले हैं आज के मनोरंजन की तरफ। तो हो जाए थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़ी सी मस्ती। तो चलिए बहनों मिलकर सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।

तो बहनों कैसे लगा आपको लोकगीत? भाई मुझे तो बहनों बहुत ही अच्छा लगा। तो बहनों आप सबको जरूर पसंद आया होगा ये गीत, क्यों बहनों अच्छा लगा ना? तो बहनों हमारे सावन के लोकगीत हों ही इतने अच्छे, भी आपसी प्रेम का संदेश तो दे हैं। कहीं तो भाई बहन के प्रेम की बात होवे बहनों, और कहीं सखियों से मिल बैठने की, और कहीं पर मायके और ससुराल के रिश्तों की। तो बहनों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिन की जो हमें इंसानियत, भाईचारे और एक दूसरे के दुख दर्द में साथ खड़े होने का संदेश दे हैं। जी हाँ बहनों, आज है विश्व मानवतावादी दिवस। तो बहनों मानवता का मतलब आखिर क्या होवे? बहनों मानवता का मतलब होवे दूसरे इंसान के दुख को अपना दुख समझना, दूसरे के मतलब जरूरत के समय जब हम उसकी मदद करना, और बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ खड़े होना। तो बहनों कभी जब बाढ़ आ जा, कहीं आग लग जा, बीमारी हो जा, या फिर चाहे कोई भी मुसीबत आ जा, मुश्किल समय में मदद के लिए आगे आना ही तो मानवता होवे ना बहनों। अगर बहनों किसी लाचार किसी बुजुर्ग को देखो तो उसकी मदद कर दो, है ना बहनों? तो किसी जरूरतमंद को खाना खिला देना और किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना भी तो बहनों मदद ही होवे ना, ये भी तो मानवता मानवता ही है बहनों। भी मानवता की शुरुआत बहनों हमें अपने घर से ही होवे है। घर में अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, बच्चों की बातें सुने, पति पत्नी एक दूसरे का साथ देवें, और बहनों परिवार में किसी सदस्य की मदद करना भी तो मानवता ही होवे बहनों। मैंने हमें बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि किसी को भी उसकी गरीबी, उसकी जाति, उसकी भाषा, पहनावे या किसी और कारण से उसे छोटा ना समझें, सबका सम्मान करें, सबकी इज्जत करें। तो बहनों आज मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना है बहनों, और बहनों किसी की परेशानी को देखकर सिर्फ एक वीडियो या फिर बहनों फोटो खींच कर आगे बढ़ जाने की बजाय बहनों अगर संभव हो तो उसकी मदद करें बहनों, कोशिश करें उसकी मदद करने की, और बहनों अफवाहें और जो गलत फहमी है उसको फैलाने से बचें, और बहनों जहां तक हो सके किसी जरूरतमंद की जो है बहनों सहायता करें, यही मानवता है बहनों। तो बहनों इस मानवतावादी दिवस पर हम एक छोटा सा संकल्प लें बहनों, यही बहनों कि अपने आसपास किसी एक जरूरतमंद की हम जो है वो मदद जरूर करेंगे, है ना बहनों? ठीक है। और बहनों अपने बच्चों को भी इंसानियत का पाठ जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बहनों गांव तभी खुशहाल बन सके है जब गांव का हर इंसान जो है एक दूसरे के सुख दुख में उसके साथ खड़ा होवे। बहनों याद रखियो कि इंसान की पहचान उसके व्यवहार से ही होवे है, ना कि उसकी धन दौलत से। तो बहनों आज है मानवतावादी दिवस, तो हमें ये प्रण लेना है कि हमें दूसरों की सहायता करनी है, और बहनों कहीं पे भी हम कोई ऐसा व्यक्ति देखें जिसकी हम मदद कर सकते हैं तो उसकी हमें जरूर मदद करनी है। और बहनों आजकल जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, चारों तरफ सीलन ही सीलन होती है बहनों, घर में भी सीलन हो जाए, दीवारों पर फफूंदी बदबू और मच्छर मक्खियों की समस्या भी बढ़ जाए, और घर को सूखा और साफ रखने के लिए कुछ बहनों उपाय हैं जो मैं हमें तुम्हें बता रही हूँ। तो बहनों देखिए, सबसे पहले तो बहनों छत और दीवारों की सबसे पहले जांच करें, है ना? कहीं से कोई पानी तो नहीं टपक रहा, या फिर दरार तो नहीं हो रही कहीं पे, बारिश शुरू होने से पहले उसकी मरम्मत करवा ले बहनों। और नालियों और जो पाइपें हैं, पानी की जो पाइपें हों बहनों, उनकी सफाई करें, उनको साफ रखें, और ताकि पानी रुककर दीवारों में ना जाए, और बारिश बहुत तेज ना हो तो सुबह शाम खिड़कियां खोलकर हवा आने दें, और इससे बहनों जो है वो नमी भी कम होवेगी और मच्छर मक्खी भी जो है वो कम आवेगी। और बहनों फर्नीचर जो होवे मैंने हमारे घर का, खासकर लकड़ी की अलमारियां हैं या पलंग है या और सोफे दीवार जो सब हैं, उनको थोड़ा सा बहनों दीवार से हटाकर रखें कि जैसे सीलन ना आ सके, सीलन आ भी जाए तो हमारा फर्नीचर तो खराब ना होना बहनों, तो उसको थोड़ा सा आगे करके रखें। और संभव हो तो बहनों उन्हें खुले हवादार स्थान पर सुखा लें, गीले कपड़े हो जाते हैं बहनों आजकल, गीले कपड़े सुखाने में भी इतना टाइम लगे हैं, अभी बाहर बारिश हो रही है और अंदर हम कैसे डालें, तो ऐसे में बहनों संभव हो तो उन्हें खुले हवादार स्थान पर सुखाएं, और फफूंदी दिखे तो बहनों तुरंत उसे साफ कर दें।

और बहनों, जहां तक हो सके फर्श सूखा रखें, बारिश का पानी जूतों या कपड़ों के साथ घर में आए तो उसे तुरंत पोंछ दें। तो बहनों, अनाज, कपड़े और किताबों को सूखी हवादार जगह पर रखें और घर में हवा का आवागमन बनाए रखें बहनों, और गीली चीजें लंबे समय तक बंद कमरों में बिल्कुल भी ना रखें। और बहनों, सबसे जरूरी बात कि सीलन केवल बदबू या दीवार खराब होने की समस्या नहीं है, बल्कि लगातार नमी रहने से फफूंदी जो है वो बढ़ सके है। इसलिए पानी आने का कारण रोकना और घर को हवादार रखना सबसे प्रभावी जो बहनों वो उपाय है। तो चलिए बहनों, एक घड़ी की सुइयां जो है वो मुझे इशारा कर रही हैं कार्यक्रम संपन्न करने का। तो बहनों, आपको आज का हमारा कार्यक्रम कैसे लगा? आप हमें पत्र जरूर लिखिएगा, और पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763। इसी के साथ अपनी बहन तनप्रीत को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। बहनों, राम राम।

अभी हमारी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा। आप इसके अंतर्गत सुनेंगे हीरा सिंह राणा के गाए कुमावनी लोकगीत।

छो जुभन धर्मत हरे सब नर गाल कानंतिन तेर भक्त हरे सब नर गाल कानंतिन तेर भक्त हरे सब हिट थक दू त्योरो थाना मेरी नौली पराण

अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं लोकधारा के अंतर्गत हीरा सिंह राणा के गाए कुमावनी लोकगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं।

0: और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है।

0: समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। BRO के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू

0: कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाओ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेट 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com। संदेश.com सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और श्रोताओं, हम लेकर आ गए हैं आपका मन पसंद कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, आप तैयार हो जाइए अपने मैसेजेस भेजने के लिए और कार्यक्रम में प्यारे प्यारे से गीत सुनने के लिए। लेकिन आपको मैसेजेस क्या करने हैं ये हम कार्यक्रम में बताएंगे। वैसे तो हमारे श्रोताओं को पता ही है कि हम कार्यक्रम में पूछेंगे, जो भी गीत हम कार्यक्रम में प्रसारित करेंगे उससे जुड़े हुए कुछ सवाल तो आपको देने होंगे, उसके सही जवाब और आपका नाम आपके पते के साथ कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। और श्रोताओं, इसके लिए हम आपको अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो बता देते हैं। और आपको कार्यक्रम में भेजना है व्हाट्सएप मैसेज, तो इसके लिए श्रोताओं कार्यक्रम इसके लिए जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो हम आपको बता रहे हैं। नंबर नोट कीजिए, नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9457078288। तो श्रोताओं ने नंबर नोट कर लिया होगा और इंतजार होगा श्रोताओं आपको कार्यक्रम में पूछे जाने वाले सवालों का। जी

हाँ, और हमको भी बेसब्री से इंतजार है अपने श्रोताओं के मैसेजेस का। जी हाँ, जितनी बेकरारी आपको है उतनी ही हमें भी है श्रोताओं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में सुनते हैं ये पहला गीत। तो श्रोताओं, थोड़ा ध्यान से इस गीत को सुनिएगा और दीजिएगा कार्यक्रम में सही जवाब। तो सवाल ये है कि जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत के गायक कलाकार कौन है? जी हाँ, जो गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत के गायक कलाकार कौन है? श्रोताओं, आपको ये सब व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से हमें बताना है और इसके लिए हम आपको नंबर बता चुके हैं। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 9457078288। जो हमारे नए श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी इस नंबर पर मैसेजेस भेज सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार श्रोताओं बने रहना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत और अपने मैसेजेस भेजिए गीत को सुनकर। आपको फिर से सवाल बता देते हैं। कार्यक्रम का पहला सवाल है कि जो गीत आपको सुनवाया जा रहा है कार्यक्रम में, उसके गायक कलाकार कौन है? तो श्रोताओं, झट से दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर मैसेज के माध्यम से, और लेकिन उसके लिए सुनना होगा आपको कार्यक्रम का पहला गीत।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश.com और जो सवाल हमने कार्यक्रम में पूछा था उससे जुड़े हुए काफी सारे श्रोताओं के हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। जी हाँ, हमने पूछा था कि जो गीत हमने कार्यक्रम में सुनवाया था उस गीत के गायक कलाकार कौन हैं, तो बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। ये मैसेज हमें मिला है वीरमगाम गुजरात से और सही जवाब भेजा है अजीत भावसार, प्रमीला भावसार, भावेश सन्नी भावसार। और अगला जो मैसेज हमें मिला है वो है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। इन्होंने भी सही जवाब हम तक भेजा है। और अगला ये मैसेज जो हमें मिला है, हम यही कहेंगे अपने श्रोताओं से कि मैसेजेस वो भेज रहे हैं लेकिन साथ में देखिए जो कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं या कार्यक्रम से जुड़े हुए मैसेजेस हैं वही आप भेजें, क्योंकि जो ये जो कार्यक्रम है ये कोई फरमाइशी कार्यक्रम

कम नहीं है, हम अपने श्रोताओं से बार बार कहेंगे और हम तभी आपके मैसेजेस शामिल करेंगे जब वो कार्यक्रम से जुड़े हुए हों। तो ये मैसेज हमें मिला है, सही जवाब इन्होंने दिया है, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। अगला मैसेज हमें मिला है पंजाब से, जी हाँ, चकला बाजार सामाना पंजाब से ये मैसेज भेज रहे हैं, सही जवाब के साथ पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, हसमुख लाल जिंदल, पप्पू इस्माइल और इनका पूरा परिवार, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने भेजा है। और अगला मैसेज हमें मिला है सही जवाब के साथ ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां, ये मैसेज भेज रहे हैं लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। और ये मैसेज हमें मिला है राहु नंगली से, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान और अक्षत चौहान का, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम बार बार यही कहेंगे अपने श्रोताओं से कि कार्यक्रम से जुड़े हुए मैसेजेस ही वो भेजें। और बिल्कुल सही जवाब है राजकोट से जैमिन जैन और हेतल जैन, कृष्णा जैन का, जी आप लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए श्रोताओं, कार्यक्रम में और भी गीत आपको सुनवाएंगे और उससे जुड़े पूछेंगे आपसे सवाल। और ये जो कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें मिला है वो भेजा है रविपाल राजपूत ने, गांव बेर थाना शिवाला बिजनौर से, सही जवाब इन्होंने भेजा है। तो हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं जो हमने सवाल पूछा था कि इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं, जी हाँ, जो गीत हमने सुनवाया था उसके गायक कलाकार थे आशा भोसले और शमशाद बेगम। तो हमारे श्रोताओं ने अपने मैसेजेस के माध्यम से सही जवाब हम तक भेजे और फिल्म का नाम था, फिल्म थी किस्मत, जी हाँ, इसे संगीत दिया था ओपी नैयर ने और गीत लिखा था SH बिहारी ने। तो अगला जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको गीत सुनना है और बताना है कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, जी हाँ श्रोताओं, आपको बताना है कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। और इसके लिए आपको नंबर फिर से बता देते हैं जो हमारे नए श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं संदेश.com और अपने मैसेजेस भेजने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 9457078288। तो जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं, गीत से जुड़ा सवाल ये है कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। तो जल्दी से गीत सुनकर आप भेजिएगा अपने सही जवाब हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू।

0: कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब देकर मैसेज को भेजा है और बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने नाम और फरमाइश के गीत लिखकर भेज दिए हैं। तो श्रोताओं को ये बता दें, ये कोई फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। जी हाँ श्रोताओं, इसमें जो भी मैसेजेस आपको भेजने हैं वो कार्यक्रम से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी आपका मैसेज शामिल किया जाएगा। तो सही जवाब भेजा है हम तक अजीत भावसार, प्रमीला, भावेश, सन्नी। सन्नी ने वीरमगाम गुजरात से सही जवाब है आपका। और बहुत सारे श्रोताओं ने भेजे हैं सही जवाब। ये मैसेज मिला है ग्राम ये मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद से, ग्राम दूल्हापुर से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरान और नरगिस खातून का। और अगला मैसेज जो मिला है वो है पश्चिम सिंहचूम चाईबासा झारखंड से, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप का। जी हाँ, और हम यही कहेंगे कि सही जवाब लिखकर हमें भेजें। जो भी आपको लगता है कि क्या सही जवाब है कार्यक्रम में, तभी आपका मैसेज शामिल कार्यक्रम में किया जाएगा। श्रोताओं, आपको हम बार बार बता रहे हैं, ग्राम गदरौना से मदनगिरी, विमलगिरी और रमनगिरी, दिव्या नूरपुर से मास्टर पदम सिंह चौहान, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब हमें लिखकर भेजा है। और ये मैसेज है रवि जवालियागढ़ मीरपुर हरिद्वार से, सही जवाब आपने हम तक भेजा है। अगला मैसेज है पंजाब से चकला बाजार समाना से, पंजाब से ये मैसेज है। भेजने वाले हैं संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल और इनका पूरा परिवार। सही जवाब आपने हम तक भेजा है। और ये मैसेज है जम्मू कश्मीर से, भेजने वाले हैं, इन्होंने नाम सही तरह से नहीं लिखा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। इनका बिल्कुल सही उत्तर है चौपन मुदस्सिर, इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर से ये मैसेज हमें भेज रहे हैं, सही मैसेज इन्होंने भेजा है, जो भी हमारे श्रोता हैं। और ये मैसेज मिला है रविपाल राजपूत, रक्षु राजपूत, वंशल राजपूत, कुहू राजपूत, गांव बैर, थाना शिवाला कला, बिजनौर से, सही जवाब आपने भेजा है। और राजकोट से जेमिन जैन, हेतल जैन और कृष्णा जैन का ये मैसेज हमको मिला है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक भेजे हैं श्रोताओं। और अब आपको बता देते हैं कि जो कार्यक्रम में हमने आपसे सवाल पूछा था कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, तो सही जवाब है ऋषि कपूर। और फिल्म का नाम है कर्ज, आवाज है मोहम्मद रफी और साथियों की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ है। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं।

श्रोताओं सही जवाब हमें लिख भेजा है। इस कार्यक्रम में कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर ने और भी सही जवाब आए हैं। राहु नंगली से सही जवाब आचार्य सत्यवीर जी ने हमको भेजा है और चकला बाजार पंजाब से सही जवाब भेज रहे हैं। पप्पू राजा खुश दिल और जिगर जाटव और हर्षिका ये सही जवाब लिखकर हमें भेज रहे हैं ग्राम शालीपुर कोटरा जिला बिजनौर से। अजीत भावसर ने सही जवाब हम तक भेजा है गुजरात से। समीर ने गढ़मीरपुर से सही जवाब हम तक भेजा है। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि सही जवाब है इस फिल्म का कि इस गीत के संगीतकार हैं नदीम श्रवण और फिल्म का नाम है रंग और आवाज़ है अलका याग्निक और कुमार सानू की। तो इसी के साथ कार्यक्रम संदेश.com अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश.com मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। इस सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम अपने देश के नागरिकों की लाभ के लिए जो हमारे देश की सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है, विभिन्न अभियान चलाती है, उन सभी का जिक्र करते हैं, उन सभी की बात करते हैं और उन सभी की जानकारी हम अपने श्रोताओं तक, अपने देश के नागरिकों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के विषय में। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के विषय में। साथियों, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सामाजिक सुरक्षा का महत्व अत्यंत अधिक है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य की ऐसा में मृत्यु अगर हो जाती है तो वो केवल एक भावनात्मक क्षति ही नहीं होती बल्कि परिवार के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट भी उत्पन्न कर देती है। विशेष रूप से गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए जीवन बीमा का प्रीमियम वहन करना कठिन होता है और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कम प्रीमियम पर जीवन बीमा का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की। यह योजना एक सरकारी समर्थित टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसके नामित व्यक्ति को, जिसको उसने नामित कर रखा है यानी नॉमिनेट कर रखा है, बीमा राशि प्रदान की जाती है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह लोगों को आर्थिक जोखिम से बचाने के साथ साथ परिवारों में वित्तीय सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत श्रोताओं 9 मई 2015 में की गई थी। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य देश के अधिक से अधिक लोगों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाना है। यह एक वर्षीय टर्म इंश्योरेंस योजना है जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। योजना में शामिल व्यक्ति को निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है और इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण इसका कम

वार्षिक प्रीमियम है। वर्तमान प्रीमियम संरचना के अनुसार लगभग 436 रुपए प्रतिवर्ष का प्रीमियम निर्धारित किया गया है और यह राशि संबंधित बैंक या डाकघर खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से काटी जा सकती है। योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नामित व्यक्ति को 2,00,000 रुपए की बीमा राशि प्राप्त होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति के पास सहभागी बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाता होना आवश्यक है। इस योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। व्यक्ति को इस योजना में शामिल होने के लिए अपने खाते से ऑटो डेबिट की सहमति देनी आवश्यक है। 50 वर्ष की आयु के बाद नया प्रवेश सामान्यतः नहीं किया जा सकता, लेकिन निर्धारित शर्तों के अंतर्गत पहले से जुड़े व्यक्ति का कवर आगे भी जारी रह सकता है। भारत में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। इनमें मजदूर, छोटे दुकानदार, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक, छोटे व्यवसायी और अन्य निम्न आय वर्ग के लोग शामिल हैं। ऐसे परिवारों के लिए किसी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु आर्थिक संकट का कारण बन सकती है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बहुत बड़ी मददगार साबित होती है। इस योजना का संबंध केवल बीमा से ही नहीं है साथियों, बल्कि यह वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देती है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के विषय में। और अब आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विषय में। यह योजना एक प्रमुख दुर्घटना बीमा योजना है। इसका उद्देश्य बहुत कम प्रीमियम पर आम नागरिकों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी आय सीमित है और जो महंगे बीमा की सुविधा नहीं ले पाते। किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर दिव्यांगता होने पर परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बीमित व्यक्ति और उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रयास करती है। यह योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना और अन्य वित्तीय समावेशन प्रयासों के साथ सामाजिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका कम प्रीमियम और सरल नामांकन है। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। यह योजना केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हो सकती है जो स्वयं बैंक खाताधारी हैं, क्योंकि इस योजना का प्रीमियम बैंक खाते से स्वतः काटा जाता है। ऑटो डेबिट की सुविधा होती है इसमें, इसलिए खाते में आवश्यक राशि होना अनिवार्य है। योजना की सरल प्रक्रिया और कम लागत के कारण यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं दुर्घटना से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, गरीब एवं निम्न आय वर्ग को बीमा से जोड़ना, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और परिवार को संकट के समय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मुख्य रूप से 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के बैंक खाताधारकों के लिए है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला व्यक्ति योजना में प्रवेश कर सकता है और निर्धारित शर्तों के अधीन 70 वर्ष की आयु तक इसका लाभ ले सकता है। श्रोताओं, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस योजना में वार्षिक प्रीमियम केवल और केवल 20 रुपए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों को दुर्घटना के जोखिम के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इससे देश में बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सामान्य नागरिक को वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने में सहायता मिलती है। साथियों, किसी भी सरकारी योजना की सफलता केवल उसके निर्माण पर निर्भर नहीं करती, लोगों को योजना की जानकारी होना और सही तरीके से उसका लाभ लेना भी बहुत आवश्यक है। और साथियों, अब कार्यक्रम के अंत में जिक्र कर लेते हैं अटल पेंशन योजना का।

सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। वृद्धावस्था में नियमित आय का अभाव एक बड़ी सामाजिक समस्या है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनके पास नौकरी के दौरान पेंशन की सुविधा नहीं होती। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। यह योजना मई 2015 में शुरू की गई थी और इसका संचालन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से अंशदान करता है और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे चुनी गई पेंशन राशि के अनुसार मासिक पेंशन प्राप्त होती है। इस प्रकार अटल पेंशन योजना व्यक्ति को भविष्य के लिए आर्थिक रूप से तैयार करने और वृद्धावस्था में एक सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करती है। श्रोताओं, इस जानकारी के साथ ही मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। और अब गुमशुदा के संबंध में कुछ आवश्यक सूचना सुनिए। थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर से प्राप्त सूचना के अनुसार एक महिला जिनका नाम अलका है, उम्र करीब 24 वर्ष है, दिनांक 20 जुलाई 2026 से लापता है। गुमशुदा के संबंध में कोई जानकारी मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें 9627778922। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8627778922। एक और सूचना, थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर से प्राप्त सूचना के अनुसार नंदनी कुशवाहा पुत्री श्री कृष्ण अवतार मोहल्ला भवन कस्बा व थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर से 24 जुलाई 2026 से लापता हैं। किसी को भी गुमशुदा के संबंध में कोई जानकारी मिले तो इस नंबर पर सूचित करने का कष्ट करें 9454403139। नंबर एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं 9454403139। साथियों, एक और सूचना है हमारे पास, थाना धामपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कशिश रानी पुत्री श्री शिव ध्यान सिंह निवासी ग्राम भज्जा वाला थाना धामपुर दिनांक 23 जुलाई 2026 से लापता हैं। गुमशुदा की उम्र लगभग 18 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा है, इन्होंने पीले रंग का ट्राउजर पहन रखा है और पैरों में हवाई चप्पल पहन रखी हैं। इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें 9454403128 9454403128। गुमशुदा के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

और अब श्रोताओं, हम अपने केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के शेष प्रसारित कार्यक्रमों पर। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आज रात 9:30 बजे। कानून की बात, ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 7:32 पर। विविधा कार्यक्रम में 6:45 पर आप सुनेंगे मनीषा वर्मा की वार्ता, जिसका विषय होगा मानवता के बिना विज्ञान अराजकता मात्र है। अब से कुछ ही देर में 5:15 पर युवा

और फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं संध्या 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में। रात 8 बजे होगा कार्यक्रम गीत संध्या और एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8:30 बजे। साथ ही श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे रात 10 बजे। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल रात 9:30 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट्स। हिंदी नाटक स्वयं साक्षी प्रसारित किया जाएगा कल रात 10 बजे। लेखक हैं डॉक्टर विनय और निर्देशक हैं विश्व प्रकाश दीक्षित बटो। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 6:50 पर। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: गुड इवनिंग लिसनर्स,
1: स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युवाणी में।
0: मैं हूँ आपकी सगी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट नंदिनी, और मेरे साथ है यूनिक आवाज वाली एक साथी।
1: जी स्टूडियो में नंदिनी के साथ हाजिर हूँ मैं यूसुफा जैदी, और हाँ मेरी आवाज ही पहचान।
0: बस बस गाकर यकीन कराने की जरूरत नहीं है।
1: अब नंदिनी देखो, ये तो अपना अपना हुनर है।
0: हुनर की सीढ़ी, हुनर के फूल, हुनर की मिट्टी, हुनर के आंगन की वाकई जरूरत है।
1: देखिए ऐप तो हमारे में हर कोई उंगलियों पर गिना जाता है कि आप मोटी हो, मुंह फट हो, बोलती बहुत हो, हाय कितनी दुबली हो, वगैरह वगैरह।
0: और अपने ऐप पर बड़ी सफाई के साथ काम करना वो बहुत बड़ा हुनर होता है, लाइक जनवरी की कड़कती ठंड में सनशाइन के जैसा।
1: अब आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक प्ले है आधे अधूरे, तो वहाँ एक सावित्री का करेक्टर है और एक है महेंद्रनाथ जो कि हस्बैंड वाइफ है।
0: महेंद्रनाथ अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उनकी पत्नी को लगता है कि ये बेकार इंसान है, मुझे किसी दूसरे की जरूरत है जो मुझे सुरक्षा दे, सम्मान दे, कुछ काबिलियत रखता हो, सब कुछ दे सके।
1: फिर वो दूसरे लोगों से मिलती हैं और उनसे भी खुश नहीं हो पाती हैं। बहरहाल वो और जो उनके घर के रिश्ते हैं वो इस चक्कर में भी अधूरे रह जाते हैं, तो वो किसी भी रिश्ते को पूरा नहीं कर पाती।
0: तो अगर सावित्री के पास हुनर होता खुद तो वो अपनी लाइफ को फुलफिल कर पाती, बोर नहीं होती, और बोर होती तो गाना गा लेती, कुछ अच्छा पका लेती,
1: नींबू का अचार बनाती, गर्मी में पापड़ सुखाती, कोल्ड कॉफी बनाती, वाओ।
0: पर वो ये सब करती अगर राइटर चाहता हो, है ना, विमेन बाय मेन।
1: राइटिंग ये भी तो हुनर है। राइटर ने प्ले लिखा, नाम है आधे अधूरे।
0: अब इसके राइटर कौन है? देखिए स्टोरी हमने आपको सुना दी, लेकिन आपको बताना होगा कि इसके राइटर कौन है।
1: तो बेसिकली बूझू तो जाने सेगमेंट के अंतर्गत सवाल है, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है?
0: और पूरा पूरा आपको जवाब देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर जाकर। तब तक हम आपको अपना हुनर दिखाते हैं, और हमारा क्या जो सिंगर है उसका हुनर देखिएगा, और सुनिए पहला गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
3: रोहन, जरूरत से ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हो। तुम्हें होमवर्क दिया था, क्यों नहीं करके आए?
4: मैम लाइट चली गई थी तो अंधेरे में कर नहीं पाए।
3: बस बहाने बनवा लो। लो आ गए तुम्हारे पापा। अब तुम्हारे पापा को ही बैठाती हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए।
4: मैडम जी नमस्ते, कैसी हैं आप?
3: नमस्ते मिश्रा जी, मैं तो ठीक हूँ लेकिन रोहन ठीक नहीं है। मैंने देखी इसको होमवर्क दिया, ये करके नहीं आया।
4: हाँ भाई रोहन, क्या सुनने वाला है ये? पढ़ते वढ़ते नहीं हो तुम?
3: एक काम कीजिए मिश्रा जी, आज आप ही पढ़ा दीजिए इसे। मैंने इसे कहा था कि एक स्टोरी लिख के लाओ विद मॉरल, अब बताइए क्या करूं?
4: हाँ, तो मैडम जी हम सुनाते हैं इसे स्टोरी। देख बच्चे, मैंने उसे कॉल किया, उसने रिसीव नहीं की, उसने मुझे कॉल की, मैंने रिसीव नहीं की। मॉरल, जैसी करनी वैसी भरनी।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
5: वेलकम बैक दोस्तों। खैर, हम बात कर रहे थे ना उस वक्त कुछ टैलेंट की। तो हर किसी शख्स में कुछ ना कुछ हुनर तो जरूर हो।

0: किसी को बड़ा अच्छा सामान बेचना आता है, मतलब कि जुबान से ऐसे शहद मिलाकर चादर कपड़े जूते सेल करते हैं कि मजाल है आप मना कर दो।
1: बट बहुत सारे लोग अपनी टैलेंट पर नाज नहीं करते, उनको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, जो होता है जैसे कि कुछ भी हो जाए हम कतई सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम दुखी ही रहेंगे।
0: मिसाल के तौर पर आज ही का दिन ले लीजिए, आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है।
1: देखा आपने, आपको नहीं पता था ना हम है ना, इसीलिए तो हमने आपको बता दिया। अब हमने आपको बताया है तो ये भी आप सोचते होंगे कि आप हर मौके पर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी तस्वीरें लेते हैं, अपना हुनर रखते हैं।
0: उसको सेलिब्रेट करने का दिन है, तो जी विश यू वेरी हैप्पी फोटोग्राफी डे। आप ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग सी फोटो लेते रहे स्टेटस और अपने स्टोरी पर लगाते रहिए। और मैं थोड़ी अम्मा दादी जैसी तो साउंड नहीं कर रही हूँ।
1: कर तो रही हो पर कोई बात नहीं, चल जाएगा, ये टैलेंट है आपका। खैर, फ्रांस की सरकार ने डेगेरोटाइप फोटोग्राफी को तकनीक कोर्स की पेटेंट करने की घोषणा की थी, और लुई डेगेरो नाम के वैज्ञानिक ने पहली सफल प्रक्रिया को बनाया था, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है।
0: तो इसी बात पे फोटो हो जाए, मतलब कि इमेजिनेशन में आप फोटो क्लिक कीजिए और अगर परमिशन लेकर करनी है फोटो, ठीक है, उसको पोस्ट कीजिए। यही है फोटोग्राफी दिवस मनाने का अच्छा तरीका।
1: तो ये थी हमारी खास बात, और फोटो से याद आया कि अगर वैसे फोटो ना हो किसी की तो दिमाग में इमेजिनेशन में बनाकर चीजों को देखने लगते हैं, जैसे अक्सर चांद को देखा करते हैं। तो ये भी एक तरीके का फोटोग्राफी डे है कि अगर आप कल रात को देख रहे थे तो भी आपको बधाई, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप आज रात देख लीजिए, आज के लिए भी आपको बधाई, और उस बधाई को हम इस गीत के साथ सेलिब्रेट करते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है.
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें. सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं. आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए. अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें.

0: तो दोस्तों आज है वेंसडे और आपको पता है वेंसडे की खासियत होती है यूथ यानी कि युवा। हम जाते हैं हमारे युवाओं के पास, उनको देखते हैं उनका प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपनी पसंद की बात, अपने दिल की बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए बता सकें कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है।
1: तो इसी के लिए हमारा सेगमेंट है यूथ कनेक्ट, जिसके लिए हाजिर है हम अपने स्टूडियो से बाहर और जानने चाहते हैं अपने दोस्तों से कि आज के उनके क्या हैं विचार हमारे सब सेगमेंट को लेकर, जिसके लिए हमारे सब सेगमेंट हैं समय की सैर, हूबहू, गलत है तो सही है, अरे दीवानो मुझे पहचानो।
0: चलो फिर चलें यूसुफा, पहचान के आते हैं हमारे जो साथी हैं।
1: बिल्कुल मैं तो तैयार हूं, अब देखते हैं कि उनमें कितना जोश है।
0: चलिए तो हम चलते हैं और चलते चलते मिल गई हमारी पहली साथी।
1: और हमारा सेगमेंट है समय की सैर। दोस्तों आपको पता ही है कि हम ले जाते हैं अपने साथी को या तो फ्यूचर में या फिर पास्ट में, प्रेजेंट में तो वो हमारे साथ होते हैं ना, इसलिए तो पूछ लेते हैं उनसे सवाल।
0: तो हेलो, पहले अपना नाम बताइए।
2: हाय मेरा नाम अजगा है।
0: ठीक है, आप करती क्या है?
2: हाल ही में मैंने अपनी MSc कंप्लीट की है और मैं CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ।
0: तो इसका हमारा सेगमेंट है समय की सैर, जिसमें हम आपको पास्ट या फ्यूचर में जाने का चांस देते हैं। तो आपको अगर मैं बोलूं कि 10 साल आगे जाने का मौका मिले, तो क्या वो चीज़ है जो आप करना चाहेंगी जो आप नहीं कर पाई हैं, या फिर क्या कोई ऐसी कोई भी चीज़ जो आप अचीव करना चाहती हैं अपने फ्यूचर में, कैसे देखती हैं अपने आप को?
2: 10 साल बाद मैं खुद को देखती हूँ कि मेरी PhD कंप्लीट हो गई है और मैं एक बहुत अच्छे से कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जॉब कर रही हूँ।
0: थोड़ा सा और चलते हैं फ्यूचर में। आप फर्स्ट डे अपनी लाइफ का एज ए प्रोफेसर कैसे इमेजिन करती हैं, कि जैसे टीवी में दिखाते हैं कि सुष्मिता सेन आती हैं केमिस्ट्री क्लास में, या फिर कुछ और प्रैक्टिकल? एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा।
2: ज़्यादा तो मैंने नहीं सोचा है, बट हाँ मैं ये बहुत सोचती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट डे होगा ज्वाइनिंग का तो मैं क्या पहन कर जाऊँगी। ये सबसे बड़ा मसला होता है लड़कियों का, और बस मेरे दिमाग में भी मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मेरी ज्वाइनिंग होगी तो मैं अच्छी सी साड़ी और ऐसे तैयार होकर जाऊँगी, बाल खोल के वगैरह वगैरह।

0: मतलब वही सुष्मिता सेन वाली वाइब। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और एक अच्छी सी प्रोफेसर बन जाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बताइए कि आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज का, हमारे सोशल मीडिया आईडीज का पता है?
1: जी, मैंने आपके YouTube और Instagram के पेजेस को फॉलो किया हुआ है और मैं आपके शोज भी लाइव सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है।
0: थैंक यू सो मच। आपकी बात से हम और ज़्यादा खुश हो गए हैं और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहें। तो थैंक यू सो मच अस्का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा एंड उम्मीद करते हैं कि आपको भी मज़ा आया होगा।
1: मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया आपका।
2: तो नंदिनी, आज का यूथ करंट काफी अतरंगी लग रहा है ना, कुछ सुष्मिता सेन वाली वाइब आ गई है ना। तब हम चलते हैं अपने सबसे पसंदीदा सब सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अरे दीवानों मुझे पहचानो, और जिसमें हमारा मकसद है, हमारा क्वेश्चन ये होता है कि अगर जो भी हमारे दोस्त हमें मिलते हैं, हमारा उनसे यही सवाल होता है कि अगर आपको कोई एक अच्छी आदत बतानी हो तो वो क्या होगी, और एक बुरी आदत बतानी हो अपनी तो वो क्या होगी। तो देखते हैं कि आज हमें हमारे वो कौन से दोस्त मिल जाते हैं। और मेरे पास में है एक खूबसूरत सी साथी, तो जान लेते हैं सबसे पहले इनका नाम। आपका नाम?
3: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुदा।
2: तो हुदा, आपको अपनी कौन सी आदत जो बहुत अच्छी लगती है वो बताएं आप, और उसके बाद जो बिल्कुल भी आपको अपनी आदत अच्छी नहीं लगती है और जिसकी वजह से शायद आपने कभी नुकसान भी उठाया हो, तो वो क्या आदत होगी ज़रा हमें बताएं, और हमारे लिसनर जो हैं वो भी इसको सुन पाएँ।
3: मैं आज आपको अपनी आदतों के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी कौन सी अच्छी आदत है और क्या मेरे अंदर बुरी आदत है।
2: थैंक यू सो मच हुदा, और आपकी जो ये आदत है यकीन बनाए रखने वाली, आप हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद पर यकीन बनाए रखिए और यकीन कीजिए कि हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे।
4: ओके, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा।
0: हमारे साथ हमारी साथी जुड़ गई हैं एक और। हेलो, क्या नाम है आपका?
5: हेलो, मेरा नाम अदीबा है।
0: ओके अदीबा, क्या करती हैं आप?
5: फिलहाल तो मैं स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी से।
0: अगर हम आपसे पूछें कि आपको अगर अपनी लाइफ किसी के साथ एक्सचेंज करनी है, मतलब कोई आपको इंस्पायर करता है, किसी की वार्डरोब अच्छी लगती है, लाइफस्टाइल जो भी अच्छा लगता है, आप अगर उनके साथ एक्सचेंज करना चाहें तो वो कौन होंगे? ये बेसिकली हमारा सेगमेंट है हूबहू, जिसके तहत हम आपको चांस देते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ किसी से स्वैप करनी हो तो वो कौन होगा। तो बेसिकली आपको कौन इंस्पायर करता है, जिसकी लाइफ आप लेना चाहेंगी या जिसकी वार्डरोब या कोई भी एक चीज़ जिसकी बहुत अच्छी लगती है वो आप लेना चाहेंगी, वो कौन होगा और क्यों?
5: ओह नाइस क्वेश्चन। अगर मुझे अपनी लाइफ किसी के साथ एक्सचेंज करनी हो तो आई थिंक नो वन, बिकॉज मुझे ना, आई एम अ वेरी वेल मेंटेन गर्ल, मुझे हर चीज़ परफेक्ट मेंटेन चाहिए होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ ना बैलेंस रहें, तो उस हिसाब से मैंने किसी को देखा नहीं है कि जिसकी दोनों लाइफ बैलेंस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अगर प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस है, परफेक्ट है, तो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही होती है, और अगर पर्सनल लाइफ परफेक्ट चल रही है तो प्रोफेशनल में वो अपना अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ, पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुझे अपने सारे काम खुद से करने पसंद हैं। मैं चाहती हूँ मेरे सारे काम मेंटेन हो, अपनी हर चीज़ जगह पर हो, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मुझे हर चीज़ अपनी जगह पर चाहिए होती है। और अगर प्रोफेशनल की बात करें तो प्रोफेशनल में भी मैं अपना 100% ही देना चाहती हूँ, वहाँ भी कोई कमी नहीं लेनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने किसी को देखा नहीं है, सच बताऊँ तो मेरे अराउंड तो कोई नहीं है।
0: मतलब आप यूनिकनेस में बिलीव करते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि सब चीज़ एक टिपिकल परफेक्शनिस्ट के साथ सारी चीज़ अच्छी हो। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर इसी परफेक्शन पे हम कहें कि हमारे जो साथी हैं इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, तो क्या होगा एक बेसिक प्रो टिप जो सबको फॉलो करनी चाहिए?
5: टिप में तो देखिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड ना करें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी सब लड़कियों से, सबसे, कि अपने दोनों लाइफ को ना बैलेंस करके चलें, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। जितना ज़रूरी आपके लिए आपका काम है, उतने ही ज़रूरी हमारे लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, किसी और को नहीं तो हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को और हमारे हस्बैंड को तो हमारी ज़रूरत होती ही है। तो आप अपने काम के पीछे उन लोगों को नहीं भूल जाया करें, उनको भी उनका वक्त दिया करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मी टाइम,
6: मी टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमें अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी वीकनेस को, सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए और उन पर वर्क करना चाहिए. बस थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू सो मच अदीबा, आपने इतनी खूबसूरत अंदाज में और इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें जो प्रोई हैं, वाह वाह भाई क्या मज़ा ही आ गया. और ये बात तो मेरे ख्याल से सबको नोट कर लेनी चाहिए कि टाइम सबको दो, चाहे प्रोफेशनल हो या फिर आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो उसमें, क्योंकि वक्त ही तो है ना एक हमारे पास जो हम फ्री फंड में किसी को दे सकते हैं, मतलब उसकी कॉस्ट का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हाँ भाई ये इतने लम्हे जो हैं ये इतने करोड़ के हो गए और ये इतना घंटा जो है हमारा ये इतने सिक्कों का हो गया. तो थैंक यू सो मच.
6: थैंक यू सो मच.
7: तो नंदनी हमें मिले हैं बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल और इसी बात पर अब बारी है हमारे हर दिल अजीज सेगमेंट सब सेगमेंट गलत है तो सही है कि जिसके लिए हमारे पास मौजूद है हमारी एक प्यारी सी साथी. क्या है आपका नाम?
8: जानसारी.
7: हिफ्जा, तो कैसी हैं आप?
8: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो?
7: हम भी बहुत अच्छे हैं. तो हिफ्जा हमारा एक सब सेगमेंट है जिसका नाम है गलत है तो सही है, जिसका कॉन्सेप्ट यह है कि हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उसमें आपको गलत आंसर देने हैं. तो उसके लिए रेडी हैं आप?
8: जी.
7: ओके, तो आसमान का रंग क्या होता है?
8: येलो.
7: एक साल में कितने महीने होते हैं?
8: 13.
7: आग गर्म होती है ठंडी?
8: ठंडी.
7: मुर्गी क्या खाती है?
8: अंडा.
7: ओके, चाय किस रंग की होती है?
8: वाइट.
7: 2 × 2 × 0 कितना होता है?
8: 1.
7: हमारे देश की राजधानी क्या है?
8: लखनऊ.
7: दुमक्खी क्या बनाती?
8: पानी.
7: सड़क पर गाड़ी चलती है या पानी में?
8: पानी में.
7: जूता क्यों पहनते हैं?
8: बैठने के लिए.
7: हिफ्जा आपने हमें बहुत मजेदार आंसर दिए हैं जो कि हमारे लिसनर को सुनकर भी काफी मजा आएगा, तो कैसा लगा आपको?
8: अच्छा लगा.
7: थैंक यू हिफ्जा.
0: तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जोशीले युवा जिन्होंने शेयर किए अपने विचार, अपने दिल की बातें और अपनी ख्वाहिशें. हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा
7: और अगर आपको पसंद आया है तो सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम युववाणी यूथ कनेक्ट को करते हैं यहीं पर
0: एंड
7: और सुनिए हमारे प्रोग्राम को आगे. देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में और क्या क्या है नया और खास.
9: नए जमाने की नई तस्वीर. अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए. समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें. ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश. इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स. इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स. और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं. डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश.
10: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे कि धड़कने लगे. है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे हम तड़पने लगे. आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज.
7: तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हुनर की, है ना. तो कुछ लोगों में हुनर होता है कि वो जो होते हैं एक मुलाकात में आप पर वो अपना असर छोड़ जाते हैं कि फिर आपके दिमाग में से उनका कोई भी हिस्सा निकलता नहीं है, चाहे वो उनके बाल हों या उनके नाखून हों, कुछ ना कुछ, चाहे वो अजीबोगरीब चीज़ ही क्यों ना हो. ये बहुत सारे लोगों का ये भी एक हुनर है कि हमें किसी की नेल पेंट अच्छी लग जाएगी तो फिर दिमाग में वही चलता रहेगा कि उनकी नेल पेंट इतनी खूबसूरत थी, है ना. तो वो कभी कभी कोई कोई एक मुलाकात में ही वो सब कुछ हो जाता है. और ऐसे ही एक लव स्टोरी भी है जिसका टाइटल है एक मुलाकात में जिंदगी बन गई. अब उनकी ज़िंदगी किन से मिलके बनी है, कैसे बनी है और आगे क्या होने वाला है, ये तो आपने दो एपिसोड सुने होंगे उसमें पता चला होगा आपको. और आज क्या होने वाला है ये आप हमारा सेगमेंट लव स्टोरी सुनते हैं तो उसमें पता चल जाएगा. आपकी ज़िंदगी में कोई मुलाकात ऐसी हो तो बता दीजिएगा. फ़िलहाल आप ये सेगमेंट सुनिए लव स्टोरी.

0: यूसुफा, लव स्टोरी तो हम सुनाएंगे, लेकिन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा तड़पाते हैं। अब तुमने माहौल बना दिया तो अब हमारी मुलाकात को हम स्पेशल बनाते हैं इस गीत के साथ, उसके बाद लव स्टोरी की तरफ चलेंगे।
1: ओके

दोस्तों, पिछले एपिसोड में कुणाल जानवी को एक अनजान आदमी के साथ देखता है और उनकी बातें सुन लेता है। पूरी रात वो सो नहीं पाया। उसने कई बार जानवी को फोन किया, लेकिन हर बार जानवी का फोन बंद ही मिला। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी, पर बाहर कोई नहीं था। बस एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था कुणाल के लिए। कुणाल ने जल्दी से वो लिफाफा खोला और देखा कि उसके अंदर एक खत था जिसमें जानवी ने लिखा था, अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो आज शाम 5 बजे पुराने पुल पर आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है। शाम 5 बजे कुणाल पुराने पुल पर पहुंच गया, लेकिन जानवी वहां नहीं थी। कुणाल उसका इंतजार करता रहा, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। तभी उसकी नजर एक छोटे गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। कुणाल ने वो बॉक्स खोला जिसमें अंदर एक रिंग थी और एक पेपर जिस पर लिखा था, मुझे माफ कर देना। कुणाल कुछ समझ पाता उससे पहले उसे एक फोन आता है, अगर जानवी को बचाना है तो सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। अचानक जानवी को क्या हुआ? वो पुराने पुल पर क्यों नहीं आई? और आखिर वो कौन सा सच था जो जानवी कुणाल को बताना चाहती थी? जानने के लिए जरूर सुनिएगा अगला एपिसोड।

0: तो जी देखिए, ना नाखूनों पे बात अटकी और ना ही कहीं और। नंदिनी तो बल्कि इस बात पे हमसे नाराज भी हो गई कि भाई तुमने नाखूनों का जिक्र किया, बालों का क्या? क्या किसी की एक मुलाकात उसकी मुस्कान या उसकी आंखों पे, उसके नजरिए के जरिए भी हो सकती है? देखिए, हो तो कुछ भी जाता है। अब एक मुलाकात जो कि मरियम ने जिसको सुनाया है आपको, एक मुलाकात जो जिंदगी भी बन गई, वो तो आपने लव स्टोरी का सेगमेंट सुन लिया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि एपिसोड नंबर 3 में क्या क्या क्या क्या हो चुका है। अब एपिसोड नंबर 4 सुनने के लिए आपको प्रोग्राम कल भी सुनना होगा। और
1: फिलहाल हम इस जो मुलाकात है इसको और सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जिंदगी बन गए हैं, तो दिल के बिना तो जिंदगी नहीं होती। तो इस गीत के साथ हम एंजॉय करते हैं इस लव स्टोरी को।
0: यानी आप कहना चाहती हैं कि नाखून और बाल और मुस्कान से हटके जो दिमाग और दिल अटक गया है, वो दिल पटक गया है।
1: बिल्कुल।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: देशवासियों, हमें झुकना नहीं है, हम शेर के बच्चे हैं। अरे हम कैसे किसी से पीछे रह सकते, सब के सब शेर के बच्चे हैं।
4: हट हट हट, झूठ बोला है बेवकूफ कहीं का। बंद करो, बंद करो इसे।
3: अरे क्या बंद करो, मुझे पता था तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अरे मैं शेर नहीं हूँ, शेर नहीं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चे हैं तुम्हारे।
5: अरे डार्लिंग, ये झूठ बोला है, तुम्हारी कसम मेरे और तुम्हारे बच्चे इसी जंगल में है। ये पता नहीं किसके बच्चे मुझे पे थोप रहा है, मेरा विश्वास तो करो।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
2: तो दोस्तों, हमने आपसे पूछा था
6: सवाल कि आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है, और सही जवाब है मोहन राकेश। सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, रविंद्र दास, मुकेश कश्यप, ईशान त्रिवेदी, फागुराम यादव, राकेश कुमार, अनिल विनोचा, अर्चना चौहान, नदीम बाकी, इरशाद अहमद, मसरूर हसन, नंदन कुमार सिंह, आफ्ताब अंसारी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और हैं हीरा मानी वर्मा, साथ हैं नंद कुमार ठाकुर, बी कमल, चारू नूर अंसारी, जगदीश साकर, धर्मेंद्र छीपा, फिर हैं आर्यन राज, सुरेश गगनेचा, दिग्दर्शन गौर, राहुल पाल, पणजाजी नावकर, मोहम्मद सईद अब्बासी, सुदर्शन शाह, राजेश वर्मा, जाहिद अली, महाराज कीर्तनपुरी, फैसल शेख, सदाशिव थोरात, हिमकेश्वर साहू, शकील अहमद इदरीसी, निसार सलमानी, गजानन गेले, आकाश रस्तोगी, बी आई धाकर, ताज अंसारी, सुभाष कोदारा, प्रवीण चौहान, नवाबुद्दीन, गुरमीत सिंह मीता, विष्णु टेलर, जाकिर मंसूरी, राजकुमार डूडी और हैं बबलेश पवार। तो ये तो थे हमारे सही जवाब देने वाली साथी।
2: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467-63।
6: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह हमारा एक ही आईडी है, ताकि आपको सर्च करने में दिक्कत ना हो, वो है आकाशवाणी नजीबाबाद। आप सब लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और इसी के साथ दीजिए अपनी साथी नंदिनी
2: और यूसुफ अजैदी को कार्यक्रम सम्पन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं, और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में, और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं और अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भाई अंकित कुमार की राम राम। और सुनाओ किसान भाइयों, कैसे हाल चाल है थारे? खैर देखो भैया, हाल चाल जो हमारे किसान भाई के भैया बढ़िया ही होंगे, और भैया जो हमारे किसान भाई की खेती बाड़ी है वो भी भैया ठीक ठाक चल रही होगी। और भैया बात करो मौसम की, तो भैया बारिश अब अच्छी हो रही है भैया, हर जगह जल भराव हो गया, पानी भरा खड़ा है। तो भैया ऐसे में भैया हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि भैया देखो हमारे किसान भाई भैया खेतों में काम करने जाते हैं, और खेतों में जब काम करते हैं तो भैया पानी भरा रहता है, और भैया पानी में कोई हानिकारक जीव छिपा हो जाता छिपा रह सकता तो भैया वो हमें हानि पहुंचा सकता है। तो भैया हमें जब भी अपने खेतों में काम करने जाना है तो भैया वो पैरों में अपनी जुत्ती पहनकर जाना है, और भैया देखो अपने साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना, और भैया उसके साथ साथ भैया अपने पशुओं का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि देखो भैया हमारे किसान भाई हैं वो पशुपालन भी करते हैं, तो भैया बरसात का समय चल रहा है तो भैया बरसात में अपने पशुओं का भी ध्यान रखना है, क्योंकि भैया बरसात में क्या होता है कि हर जगह पानी भरा रहता है, जिसमें भैया मच्छर हो मक्खी हो वो पैदा होते हैं, और फिर भैया वो हमारे पशुओं को हानि पहुँचाते हैं। तो भैया उससे भी अपने पशुओं को बचाना है, और साथ साथ अपने पशुओं को हमें ताज़ा पानी देना है, और भैया खाने के बाद भैया अब जो हमारे पशुओं की चूर हो नांद हो उसकी भी साफ़ सफाई हमें करते रहना है, क्योंकि देखो भैया कभी कभी ऐसा होता है कि गंदगी कारण हमारे जो पशुओं में संक्रमण फैल जाता है, और भैया हर जगह बरसात में गंदगी भी होती है, तो उसके साथ साथ भैया क्योंकि जो संक्रमण है वो बरसात के समय में तेज़ी से फैलता है, तो भैया साफ़ सफाई हमें करते रहना है। और भैया देखो जब संक्रमण फैलता है तो भैया हमारे जो पशुओं में गंभीर बीमारी भी पैदा हो जाती है, जिससे भैया हमारे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान भी होता है। तो भैया आज हम इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं, और भैया जानकारी का विषय है मवेशियों में लंपी रोग कारण लक्षण व निवारण, और भैया इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रजनीश, जो कि भैया कार्यरत है पशु चिकित्सा अधिकारी नगीना में, और आपसे बातचीत करें भैया हमारे भैया जितेंद्र कुमार, तो सुनते हैं उनसे की गई हो बातचीत।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हम खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ पशुपालन करते हैं, और हमारे किसान भाई अपने पशुओं के स्वास्थ्य से लेकर खाने पीने तक, और साथ ही साथ उनको दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध निकालने तक की बड़ी सावधानी पूर्वक सारे काम करते हैं। लेकिन भाई हमारे पशु जो है फिर भी इतनी देखभाल के बाद भी बीमार हो जाते हैं, काफी हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है। तो आज ऐसी ही एक बीमारी जो हमारे देखने में आती है, लंपी रोग। तो मवेशियों में लंपी रोग कारण लक्षण व निवारण, इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर रजनीश, जो कि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं राजकीय पशु चिकित्सालय नगीना जनपद बिजनौर में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद जितेंद्र जी।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हम लंपी रोग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को इसी संदर्भ में जागरूक कीजिए कि लंपी रोग है क्या।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा जितेंद्र जी ने बताया, आज हम लंपी रोग के विषय में बातचीत करेंगे।

0: लंपी रोग जो है ये पशुओं में पाया जाने वाला एक विषाणु जनित रोग है, जिसे हम वायरल डिजीज भी कहते हैं। ये एक वायरस से होती है
1: जी,
0: और ये गाय और भैंस उनमें ये रोग पाया जाता है
1: जी,
0: और इसकी वजह से पूरे शरीर के ऊपर गांठें पड़ जाती हैं और दूसरे भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे तेज बुखार होना, पशु का सुस्त होना, भूख ना लगना, दूध का उत्पादन कम हो जाना, सुस्त रहना, और कुछ केसेस में जब ये रोग बढ़ जाता है तो दूसरे लक्षण भी नजर आते हैं
1: जी जी।
0: जो स्थिति को और ज्यादा कष्टदायक बनाते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी लंपी रोग के संबंध में हमारे किसान भाइयों को दी और किस तरह से लंपी रोग दिखाई देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जैसा कि आपने बताया कि गाय और भैंस में भी ये रोग दिखाई देता है, तो डॉक्टर साहब क्या ये जो गोवंश होता है इससे कुछ ज्यादा प्रभावित होता है या इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है? क्योंकि हम देखते भी हैं गांव में कि हमारी जो गोवंश होता है, जो गाय का वंश होता है, वही इस लंपी रोग के कारण प्रभावित होता है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये जागरूक हमारे किसान भाइयों को कीजिए, किस तरह से वो इसमें सावधानी बरतें।
0: देखिए, लंपी रोग जो है चूंकि गाय और भैंस दोनों में दिखाई देता है,
1: जी,
0: लेकिन भैंस में चूंकि इस वायरस से लड़ने की क्षमता अधिक है, उसका जो अनुवांशिक जो उसकी संरचना है, उसका जो जेनेटिक मेकअप है, वो उसको थोड़ा सा प्रतिरोधक बनाता है।
1: जी,
0: हमारे जितने भी गोवंशीय पशु हैं, चाहे गाय है या बछड़ा है, बैल है, जितने भी गोवंश हैं हमारे, उनमें ये बीमारी ज्यादा देखने में आती है।
1: जी,
0: और ये चूंकि एक वायरस से फैलता है, इसलिए ये कहना कि शरीर में लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, इसके बारे में ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नया वायरस है, जगह जगह फैलता है, अलग अलग रास्तों से ये हमारे गोवंश को प्रभावित करता है, तो बचाव के जो रास्ते हैं हमें वही अपनाते हुए इस बीमारी से अपने पशुओं को बचाना चाहिए।
1: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो जानकारी होगी कि ये वायरस जनित रोग है और वायरस रोग प्रतिरोधक क्षमता पर तो प्रभाव डालता ही डालता है, साथ ही साथ ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, क्योंकि वायरस जब फैलता है धीरे धीरे तो हमारे पशुओं में जो है उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, जैसा हम बात कर रहे हैं लंपी रोग की, तो डॉक्टर साहब लंपी रोग की पहचान क्या है, या सिर्फ शरीर पर मोटी मोटी गांठें ही बन जाना लंपी रोग है?
0: नहीं, देखिए, लंपी रोग जो शुरुआत होती है तो शुरुआत में सबसे पहले लंपी रोग में पशु को तेज बुखार आता है।
1: जी जी।
0: तो जो करीब 103 से 104 104.5 डिग्री तक फारेनहाइट तक हो सकता है। उसके बाद पशु का जो भूख लगने का जो है दशा है वो कम हो जाती है, पशु को भूख कम लगती है।
1: जी जी।
0: पशु का दूध उत्पादन जो है बहुत हद तक घट जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, और बहुत सारे केसेस में उसके शरीर पर छोटी छोटी जो है 2 से 5 सेंटीमीटर मोटी मोटी गांठें जो है वो पड़ जाती हैं।
1: अच्छा।
0: तो केवल यही कह देना कि केवल गांठें पड़ना ही लंपी रोग है ऐसा नहीं है। जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था में शरीर में तेज बुखार आता है।
1: जी जी।
0: द्वितीय जो अवस्था है लंपी रोग की, उसमें गांठें पड़ती हैं, और तीसरी अवस्था में ये गांठें में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, ये पक जाती है और इनमें से मवाद या पस जैसा पदार्थ निकलने लगता है, और अगर इससे भी ग्रेव स्थिति हो जाए तो पशुओं को कि जो भीतरी अंग हैं, जैसे फेफड़े हैं, लीवर हैं, इनके ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाता है, जो बहुत ही घातक और कई बार प्राण घातक भी हो सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को लंपी रोग के संबंध में दी और किस तरह से हमारे किसान भाई अपने पशुओं को लंपी रोग की पहचान करके बचा सकते हैं और होने वाली अपनी क्षति से भी बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लंपी रोग जो है इसकी यदि पहचान हमारे किसान भाई कर भी लें तो क्या क्या सावधानी वो अपने पशुपालन व्यवसाय में करें ताकि वो अपने पशुओं से अच्छा उत्पादन ले सकें और अपने पशुओं को इस रोग को होने से बचा सकें?
0: देखिए, एक वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है, इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जितने भी जैव सुरक्षा के जो नियम हैं,
1: जी जी,
0: वो हमें अपने पशुशाला में अपनाने चाहिए। जैव सुरक्षा के नियम कैसे हैं कि जैसे हम जब गोशाला में भीतर जाएं या पशुशाला में भीतर जाएं तो हम अपने साथ ही किसी रोग को ना लेके जाएं, अपने हाथ हम अच्छे से साबुन से साफ करके रखें।
1: जी जी।
0: हम जो कहीं आसपास अगर कोई बीमारी फैली हुई है तो उन पशुओं को अपने पशुओं के संपर्क में ना आने दें।
1: जी जी।
0: कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे किसी पशु के संपर्क में आई है वो वापस हमारे स्वस्थ पशुओं के संपर्क में ना आए।
1: जी।
0: अगर कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई बीमारी, कहीं पर कोई लक्षण है, तो वहां पर उन पशुओं को हमें अपने पशुओं से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर हम अपने पशु को घर से बाहर लेके जा रहे हैं, जिसमें हाट में ले जाना हो सकता है, बाजार में ले जाना हो सकता है, या खेत पे भी ले जाना हो सकता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे घर में रखे हुए पशु हैं वो उनके सीधे संपर्क में ना आए। इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम उनका जो है चारा पानी दोनों अलग रखें, उनको लगातार उनके संपर्क में ना आने,

0: आसपास मक्खी मच्छर पैदा ना हो
1: जी।
0: पशु की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए हम उन्हें साल में दो बार पेट के कीड़ों की दवाई अवश्य दें, जो
1: अच्छा।
0: हम किसी भी निकटतम पशु चिकित्सालय पे उपलब्ध होती है
1: जी।
0: और सबसे जो मुख्य बात है अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए कि साल में जितने भी टीकाकरण
1: जी
0: मान्य होते हैं, जैसे खुरपका मुंहपका का या गलघोटू का, वो हम अपने पशुओं को अवश्य लगाओ, जिससे हम पशुओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और उनमें दूसरी बीमारियों से भी लड़ने की ताकत बनी रहती है और अच्छा उत्पादन वो हमेशा हमें देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को और जो भी हमारे नौजवान साथी आज आपकी बात सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी का अपने पशुपालन व्यवसाय में या डेयरी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें वो इन जानकारी का लाभ भी उठाएंगे। आपने लंपी रोग की पहचान के संबंध में बताया, लक्षण किस तरह से हमारे पशु में दिखाई देते हैं और किस तरह से आप अपने पशु में पहचान कर और उसी हिसाब से उसका इलाज कर सकते हैं या उपचार कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि लंपी रोग की बात चल रही है तो क्या लंपी रोग वो पशुओं में ही प्रभावित करता है को या कुछ मानव में भी प्रभावित करता है?
0: नहीं, ये जूनोटिक डिजीज जिसे हम कहते हैं जो पशुओं से मानवों में लगती है, उस प्रकार का नहीं है।
1: अच्छा,
0: इसलिए हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हमारे पशु को लंपी रोग हो गया है या लंपी के लक्षण आ गए हैं तो हम उसका दूध इस्तेमाल ना करें। जो हमारा स्टैंडर्ड यानी मानक तरीका है जिसमें हम दूध निकाल के अच्छे से उसे उबाल के इस्तेमाल करते हैं, हमारे भाई इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मनुष्यों में बीमारी नहीं फैलती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि जो कि हमारे किसान भाई भी जागरूक रहेंगे कि भाई ये ऐसा वायरस है जो मनुष्यों की तरफ नहीं चलता है, ये पशु से पशु में ही चलता है, तो हम अपने जो हमारे स्वस्थ पशु हैं उनको जो है रोगी पशु से या संक्रमित पशु से अलग रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि मानव स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, साथ ही साथ एक थोड़ी सी बात और हम यहाँ बीच में कर लेते हैं कि जो हमारे पशुओं के बंधने का स्थान है, पशुशाला है, उसका हमारे किसान भाई किस तरह से प्रबंधन करें यदि ये रोग हमारे किसी पशु को है और अन्य पशु भी हमारे जो है साइड में बंधते हैं?
0: देखिए, जो हमारा पशु इनके साथ में बंधे हुए हैं
1: जी,
0: तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इनसे थोड़ा दूर रहें।
1: अच्छा।
0: और अक्सर ये देखा जाता है कि बरसात में गोबर कीचड़ पानी इकट्ठा पशुशाला के आसपास हो जाता है, तो हमारे किसान भाई उसकी जो है निरंतर सफाई रखें जिससे मक्खी और मच्छर पनपने न पाए।
1: जी,
0: क्योंकि मक्खी और मच्छर अपने आसपास 100-200 मीटर के दायरे में जो है बीमारी को बहुत तेजी से फैलाते हैं। इसके लिए आप चूने का भी छिड़काव कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: समय समय पर आप हल्का सा जहां अगर पानी भरा हुआ है तो केरोसिन या डीजल भी आप डाल सकते हैं जिससे मच्छर का लार्वा खत्म हो जाए। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो पशु अगर संक्रमित है या संक्रमण होने की संभावना जिसमें अधिक है
1: जी,
0: उस पशु को बाकी पशुओं से अलग रखें, उसका चारा उसका पानी बिल्कुल अलग रखें।
1: अच्छा।
0: और यदि संभव हो सकता है तो उन पशुओं के बीच में एक मच्छरदानी को खोल के लंबा कर लें
1: जी,
0: और उस मच्छरदानी से एक तरफ स्वस्थ पशु को रखें और एक तरफ जो है अपने संक्रमित या संभावित संक्रमण जिनमें होने की संभावना है उन पशुओं को रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि भाई जो हमारी पशुशाला है उसका किस तरह से हमारे किसान भाइयों को प्रबंधन करना है, साथ ही साथ यदि हम पशुओं को एक ही जगह बांधते हैं तो भाई उसमें संक्रमण होने की ज्यादा आशंका रहती है, तो आप बीच में एक मच्छरदानी डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया है उसको लंबी करके आप जो है संक्रमित पशु को एक तरफ बांधें और जो हमारे स्वस्थ पशु हैं उनको अलग बांधें। इस तरह से आप यदि अपने पशुपालन व्यवसाय में और पशुशाला की व्यवस्था करेंगे तो आपको अपने पशुओं से अच्छा लाभ मिलेगा और आप होने वाली क्षति से भी इस रोग के कारण बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कारण लक्षण की, अब चलते हैं उपचार पर। तो डॉक्टर साहब, इस रोग के बचाव का कोई टीका है या हमारे किसान भाई अपने पशुओं को किस प्रकार उपचारित करें?
0: देखिए, इसके बचाव के जो टीका है
1: जी,
0: वो सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में बीमारी फैली हुई है वहां के जो जागरूक किसान हैं, जागरूक पशुपालक भाई हैं, वो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय पर संपर्क कर सकते हैं
1: जी, जी।
0: और वहां से आपके रोस्टर के हिसाब से या समय के प्रबंधन के हिसाब से टीम आपके घर आके टीका लगा देती है
1: जी, जी।
0: इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है और अभी तक हम एक गोट पॉक्स वायरस की जो वैक्सीन थी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी पिछले वर्ष ही भारत सरकार ने दो अलग अलग वैक्सीन को मान्यता दी है, जो एक ICR की जो एक संस्था है IVRI उन्होंने और NRC क्वाइन हिसार ने डेवलप की है और दूसरी वैक्सीन जो है वो बायोवेट एक वैक्सीन बनाने वाला निर्माता कंपनी है उन्होंने एक वैक्सीन को लॉन्च किया है।
1: अच्छा।
0: तो ये लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है दोनों और दोनों जो वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं ये बहुत प्रभावी हैं। इनका टीका लगने के बाद में पशु कम से कम एक वर्ष के लिए बीमारी से बचा रहता है। सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है किसान भाइयों के लिए,

0: कोई भी टीका लगाने से पहले उस पशु को कोशिश ये करें कि पेट के कीड़ों की दवा अवश्य दी हो, जिससे प्रतिरोधक क्षमता अच्छी शरीर में बनती है।
1: जी
0: और किसान भाई ये कभी ना समझें कि हमने टीका लगवा लिया है तो आज से हमारे पशु के ऊपर एक ढाल लग गई है।
1: जी
0: बिल्कुल ढाल लग जाती है, लेकिन वो ढाल को बनने में कम से कम 14 से 21 दिन का समय लगता है। उसी प्रकार ये वायरस भी पशु के शरीर में जाने के बाद में 15-20 दिन तक ये नॉर्मल अवस्था में रहता है, डोरमेंट अवस्था में रहता है,
1: जी
0: जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और 14-15 दिन के बाद ही पशु में कुछ कुछ लक्षण आने दिखाई देने शुरू होते हैं।
1: अच्छा
0: अभी मैं आपको बताऊं, इस बार जो लंपी के रोग दिख रहे हैं, इनमें पशुओं में चूंकि लिम्फ नोड, जिन्हें हम गिल्टियां कहते हैं,
1: जी
0: गिल्टी सूज जाती हैं, तो उसकी वजह से पैरों में बहुत ज्यादा सूजन पशुओं में देखने को मिल रही है।
1: अच्छा
0: तो इससे भी हमारे पशुपालक भाई परेशान ना हो, जैसे जैसे रोग खत्म होगा, ये जो सूजन है पैरों की, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
1: जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि जो लंपी के कारण हैं, लक्षण हैं और निवारण के किस तरह से हमारे किसान भाई उपचार कर सकते हैं और किस तरह से टीका आप लगवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और थोड़ी सी हम यहाँ पर करना चाहेंगे आपसे कि गांव-गांव में जो टीका लगाते हैं क्या सरकारी जो राजकीय पशु चिकित्सालय हैं उन्हीं के डॉक्टर आते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो प्राइवेट तौर से अस्पताल के और कहते हैं गांव में कि भाई हम टीका लगा देंगे उसका, लेकिन क्या लंपी रोग का टीका वो लगा सकते हैं?
0: नहीं, देखिए भारत सरकार की तरफ के अलग अलग योजनाओं में, प्रदेश सरकार की तरफ अलग अलग योजनाओं में कुछ पैरावेट और कुछ वैक्सीनेटर जो है
1: जी
0: रखे जाते हैं, तो उनके माध्यम से भी पशु चिकित्सालय जो है अपना टीकाकरण गांव में लगवाता है।
1: अच्छा
0: ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन आप पशुपालक को ये सबसे पहले इस बात को जरूर तस्दीक कर लेना चाहिए कि क्या जो वैक्सीन लगा रहा है, क्या वो पशु चिकित्सालय द्वारा अधिकृत है या
1: जी
0: नहीं
1: जी जी
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो वैक्सीनेटर और जो हमारे पैरावेट है, वो भी ये पशु मैत्री हैं, वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो जो है इस चीज का पहले तस्दीक कर लें, जानकारी ले लें कि हाँ ये जो है सरकारी तौर से या सरकारी तरीके से ही हमें वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे हम बात कर रहे हैं लंपी रोग की, तो लंपी रोग होने पर जो हमारा पशु है उसके दुग्ध उत्पादन पर और उसके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?
0: बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पशु का जो दुग्ध उत्पादन है
1: जी
0: वो काफी हद तक कम हो जाता है,
1: जी
0: बुखार उसे लगातार बना रहता है, और जो उसकी दूसरी भी क्षमताएं हैं, जैसे भूख लगना, उसका सुस्तपन होना, उसके
1: जी
0: शरीर की जो दूसरी क्रिया है, वो भी काफी शिथिल पड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इसके लिए कुछ जो है हमारे पशुपालक भाई अपना घरेलू उपचार भी कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: तो घरेलू उपचार के लिए वो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जो गांठें बाहर पड़ी हुई हैं अगर वो फूट जाती हैं, तो उस पे भी आप हल्दी का मलहम लगा सकते हैं।
1: जी
0: और पशु को जो है 50 ग्राम के आसपास नीम के पत्ते, 10 ग्राम तुलसी के पत्ते भी उस दिन लगातार दे सकते हैं, जिससे पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाए।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, आप जो है घरेलू उपचार भी छोटे मोटे डॉक्टर साहब के बताए अनुसार कर सकते हैं। और वैसे तो आप ज्यादा जानकारी लेने के लिए जो हमारे नजदीकी पशु चिकित्सालय हैं वहां पर डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब लंपी रोग के संबंध में और कोई बात आपको बताने से रह गई हो या कुछ संदेश हमारे किसान भाइयों को जागरूकता की दृष्टि से आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं?
0: लंपी रोग जो है, चूंकि मैंने शुरू में ही बताया कि एक विषाणु जनित रोग है,
1: बिल्कुल सर
0: और इस वक्त जो है हमारा खुरपका मुंहपका का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, अभी भी जो चल रहा है,
1: जी
0: इसी के बीच में इस बीमारी के जो है कुछ केसेस हमारे बिजनौर क्षेत्र में देखने को आए हैं। तो अब जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता है वहां दोनों का टीकाकरण किया जा रहा है।
1: जी
0: दोनों जो खुरपका मुंहपका और लंपी का टीकाकरण जो है एक साथ किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों
1: जी
0: टीके एक साथ लगवाए जा सकते हैं। जो मुख्य बात जो किसानों को देखने की है, जो हमारे पशुपालक भाइयों को देखने की है, वो सबसे पहले अपने पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए दूसरे संक्रमित जो पशु हैं उनके संपर्क में ना आने दें,
1: जी जी
0: खुद भी संपर्क में ना आए, क्योंकि कई बार हम ही बीमारी अपने घर में ले आते हैं,
1: बिल्कुल सर
0: और जो हमारे आसपास के पशुशाला के आसपास का क्षेत्र है वहां मक्खी मच्छर ना पनपने दें। नीम की पत्तियों का धुआं करें, थोड़ा बहुत उसमें कपूर भी हम डाल सकते हैं,
1: अच्छा
0: और जो हमारे लेमन ग्रास, जिसे हम नींबू वाली घास कहते हैं, जिसके कुछ लोग चाय भी पीते हैं,
1: जी
0: उसका भी धुआं कर सकते हैं, उससे भी मक्खी मच्छर काफी तक दूर होते हैं। इन सब बातों का अगर हमारे पशुपालक भाई ध्यान रखेंगे, अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई नियमित तौर पे हर 6 महीने पे देंगे,
1: जी
0: टीकाकरण समय से करवाएंगे, और अपने पशुओं को बाकी संक्रमित पशुओं से अलग रखेंगे, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है जिससे हमारे पशु इस बीमारी से बचे रह सके।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को, हमारे पशुपालक भाइयों को और जो हमारे नौजवान साथी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं और जो

0: जो भी आज आपको कार्यक्रम में सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं लंपी रोग के कारण लक्षण और निवारण के संबंध में अपने पशुओं में लाभ उठाएंगे और अपने पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमें आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: अभी हमारे किसान भाई ने सुनी भेंटवार्ता, जिसका विषय था मवेशियों में लंपी रोग कारण लक्षण व निवारण, और जानकारी दे थे डॉक्टर रजनीश, और आपसे बातचीत कर रहे थे भैया, हमारे भैया जितेंद्र कुमार। देखो डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई कि हम अपने पशुशाला में नियमित रूप से साफ सफाई करते रहना, गोबर को हटाते रहना, और भैया पशुशाला के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी हमें नहीं रखनी है, और भैया अपने पशुओं को ताज़ा और स्वच्छ पानी पिलाना, और भैया समय समय पर जो कीड़ों की दवाई आती है वो भी हमें अपने पशुओं को देना है, और भैया बहुत ज़रूरी बात ये बताई कि हमें समय समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण जो कराना है वो ज़रूरी है। और देखो अगर हमारे किसान भाई इन सब बातों को अपना लेंगे तो भैया उन्हें लाभ ज़रूर मिलेगा, और देखो जब लाभ की बात आती है तो भैया लाभ अगर उससे भी मिलता है अगर हमारे किसान भाई सही समय पर सही कार्य करते हैं, क्योंकि भैया देखो अगस्त माह का दूसरा पखवाड़ा चल रहा है, और अगस्त माह का दूसरा पखवाड़ा भैया जो खरीफ फसलें हैं उनकी देखभाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें भैया इस समय भैया जो खरपतवार है वो नियंत्रण होता है, भैया कीट और रोगों का प्रबंधन हमारे किसान भाई करते हैं, और भैया खेत से जल निकासी की व्यवस्था भी हमारे किसान भाई इस समय करते हैं। अगर भैया देखो धान की बात करें तो हमारे किसान भाई इस समय धान में निराई गुड़ाई कर सकते हैं, अगर भैया खेत में अधिक पानी है तो उसकी निकासी कर सकते हैं, ऐसी भैया मक्का है, भैया मक्का में भैया इस समय जो हमारा पौधा बढ़वार की अवस्था में रहता है, और भैया खेत को भैया हमें जो खरपतवार मुक्त हमारे किसान भाई इस समय कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जब हम अपने खेतों में खरपतवार मुक्त करेंगे तो भैया हमारे जो खेत हैं हमारी जो उत्पादन क्षमता है मक्का की वो बढ़ेगी, और भैया उसके साथ साथ जैसे बाजरा है, ज्वार है, तो भैया इसके समय भी इस समय भैया हमारे जो किसान भाई हैं इसमें भैया निराई गुड़ाई कर सकते हैं, खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, और भैया जब खेत में अगर हमारे जल भराव हो तो भैया खेत से जल की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो समय होता है पौधे की वृद्धि के लिए होता है, अगर हमारा जो पौधा सही से वृद्धि कर रहा है तो जो हमारी फसल का उत्पादन है वो भी अच्छा होगा, और भैया जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होगी। दलहनी फसलों के लिए भैया ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय भैया जैसे अरहर हो, उड़द हो या मूंग जैसी दलहनी फसलें हैं, भैया इस समय भैया अगर जल भर जाता है हमारी फसलों में तो भैया वो उसकी जो जड़ें हैं वो खराब हो जाती हैं, और वो हमारी जो फसलें हैं उसमें रोग पैदा हो जाता है, जिससे भैया हमारा उत्पादन हो गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं, तो उनकी भी देखभाल भैया हमें करनी है। भैया इस समय भैया हमें सब्जी की देखभाल भी बहुत करना जरूरी है, जैसे भिंडी हो, बैंगन हो, मिर्च हो, टमाटर है, जैसे लौकी, कद्दू, करेला, भैया ये सब्जियों में ना वर्षा के कारण जैसे रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है इसमें, तो भैया जैसे भी अगर ऐसा होता है तो भैया हमारे किसान भाई अगर ऐसे कोई लक्षण देखते हैं रोग के या कीटों के तो भैया वो कृषि विज्ञानी की सलाह लेकर भैया उसका उपचार कर सकते हैं, और भैया जो रोगग्रस्त पौधे हैं या पत्तियां उन्हें खेत से बाहर निकाल सकते हैं। तो भैया कुल मिलाकर बात यूँ निकल कर आती है कि जो अगस्त माह का दूसरा महीना होता है तो भैया हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और भैया अगर हमारे किसान भाई इन सब बातों को अपनाएंगे तो भैया उन्हें लाभ मिलेगा, और देखो भैया जब लाभ की बात आई है तो भैया हम भी एक लाभ ले लें, सुन लें कुछ जरूरी संदेश।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देखो भैया संदेश तो हमारे किसान भाई ने सुन लिया, और भैया अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और भैया बात करते हैं कुछ खेती किसानी की। देखो बरसात का समय चल रहा है, और भैया बरसात के समय में भैया हमारे खेतों में पानी भरा हुआ, और भैया देखो फसल भी हमारे खेतों में खड़ी है, चाहे वो भैया गन्ने की हो चाहे वो धान की हो, तो भैया हम अपने खेतों में जल का प्रबंधन सही से करना ज़रूरी है, क्योंकि भैया देखो अगर ज़्यादा पानी हमारे खेतों में होता है तो उसकी निकासी हमें ज़रूर करनी है, क्योंकि भैया अगर ज़्यादा पानी हमारे खेतों में रहेगा तो भैया जो हमारे गन्ने की फसल है या धान की फसल है उन्हें सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की, जो उसकी जड़ें वो ख़राब हो जाएंगी। तो भैया इस समय अगर बात करो तो धान की फसल हमारे खेतों में खड़ी है, गन्ने की फसल हमारे खेतों में खड़ी है, तो भैया धान की फसल में जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। भैया धान ऐसी फसल है जिससे अन्य फसलों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसका अर्थ भैया यो नहीं है कि खेत में हर जगह भैया अधिक मात्रा में पानी भरा रहना, क्योंकि भैया देखो उचित जल प्रबंधन से पौधे की अच्छी वृद्धि होती है, अधिक कल्ले निकलते हैं भैया।

बालियां भी बेहतर निकलती हैं और भैया उत्पादन भी अच्छा होता है, और भैया साथ ही सिंचाई के पानी की बचत भी होती है। जो हमारे किसान भाई भैया रोपाई के बाद अपने खेत में लगभग 203 सेंटीमीटर पानी रखना उपयोगी होता है। इससे भैया क्या होता है कि पौधे की जो जड़ों का विकास वो अच्छे से होता है, और पौधे की जड़ें को भैया पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलती है, और भैया ज़्यादा पानी भरने से क्या होता है कि पौधों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे भैया पौधे की जो बढ़वार और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। तो भैया हमें सीमित मात्रा में ही अपनी धान की फसल में पानी भरे रहना है, और भैया हद से ज़्यादा पानी हम अपनी जो धान की फसल उसमें नहीं भरना। तो भैया इन बातों का हमारे किसान भाई को ध्यान करना। और भैया जैसे रोपाई हो गई हमारे किसान भाई की, लगभग 1 महीना हो गया, तो भैया उसके बाद हम धान को भैया तेज़ी से कल्ले निकलते हैं, तो उस समय भैया अपने खेत में नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर भैया पानी की कमी होने पर भैया कल्ले कम निकलते हैं, तो भैया खेत में लगभग 205 सेंटीमीटर जो पानी है वो पर्याप्त रहता है। लगातार भैया गहरा पानी भरे रहने से पौधे की जो जड़ों पर प्रभाव पड़ता है और भैया फसल हमारी खराब हो जाती है। तो भैया हमें हद से ज़्यादा पानी भी अपने खेत में नहीं भरना। भैया देखो, धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। रोपाई के बाद भैया उचित समय पर अगर पानी का स्तर बनाए रखने से भैया कई खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी वृद्धि कम होती है, उनका नियंत्रण हो जाता है। और भैया जब भी हमारे किसान भाई खरपतवार नाशी का प्रयोग करना, तो भैया उससे पहले हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिक की सलाह जरूर लें, क्योंकि भैया कभी कभी खरपतवार जो होते हैं वो अधिक हो जाते हैं, और उसके नियंत्रण के लिए भैया हमारे किसान भाई रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं। तो भैया जब भी उपयोग करो तो एक बार भैया जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है उनकी सलाह जरूर ले लें, इस बात का भी हमारे किसान भाई ध्यान रखें। देखो भैया, धान में कल्ले निकलना, भैया बालियां निकलना और फूल आना, और भैया दाने भरने की अवस्था में पानी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन अवस्थाओं में भैया खेत में पर्याप्त नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा भैया, अगर हमारे खेत में नमी की कमी होगी तो भैया जो हमारे कल्ले हैं या फूल आते हैं या दाना भरने की स्थिति होती है, तो उसमें जो दाना भरता है वो सही से नहीं भर पाता। तो भैया इन अवस्थाओं में खेत में पर्याप्त नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से भैया फूल आने की अवस्था में। जैसे दाना भरने के समय वो पानी की कमी होने से भैया उपज और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना। और भैया जहाँ जहाँ पानी की कमी हो वहाँ भैया खेत को पानी से भरा रखने के बजाय आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना भी लाभकारी होता है। भैया खेत की सतह पर, भैया खेत की जो सतह होती है उस पर से भैया ऐसा देखना चाहिए कि कुछ समय तक पानी भरा रहे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और भैया जब वो सूख जाए या नमी कम लगो तो उसके अनुसार भैया हमारे किसान भाई पानी दे सकते हैं। इससे क्या होगा भैया, एक तो पानी की बचत होगी, और भैया जड़ों को हवा भी लगेगी, और पौधे की वृद्धि अच्छे से होगी, और भैया अच्छी तरह से हमारी जो फसल का उत्पादन है वो भी बढ़िया रहेगा। तो भैया धान की फसल, और एक बात और भैया, जब धान की फसल हम पक जाती है, पकने के करीब होती है, तो भैया हमें एक बात का ध्यान रखना, हमें भैया 7 से 10 दिन पहले लगभग सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इससे भैया खेत सूखने, जैसे खेत सूख जाता है और फसल की कटाई होती है तो उसमें सुविधा होती है, क्योंकि भैया अगर ज़्यादा पानी भरा रहेगा फसल कटने को तैयार, तो भैया कभी कभी ऐसा होता है कि तेज़ हवा के साथ या बारिश के साथ हमारी फसल नीचे गिर जाती है और हमारी फसल खराब हो जाती है। तो भैया इन समस्याओं से बचने के लिए हमारे किसान भाई को इन बातों का ध्यान रखना है। और देखो भैया, बरसात का समय भी चल रहा है और बारिश भी भैया अच्छी हो रही है, और भैया अधिक बारिश होने से खेत में पानी भर जाता है, तो भैया अतिरिक्त पानी की निकासी की उचित व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। क्योंकि भैया देखो, लंबे समय तक पानी भरे रहने से जड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है, पौधे जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, और भैया रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए भैया हमारे किसान भाई अतिरिक्त पानी की निकासी जरूर कर दें। तो भैया कुल मिलाकर बात यूँ निकल आती है कि हम अपनी धान की फसल में ना तो आवश्यकता से अधिक पानी देना और ना ही भैया पानी की कमी होने देना चाहिए। फसल की अवस्था, मिट्टी के प्रकार और बारिश की स्थिति को ध्यान में रखकर सिंचाई करने से भैया पानी की बचत भी होती है, और भैया हमारी फसल का उत्पादन भी वो भी बढ़ता है, और भैया गुणवत्ता भी अच्छी होती है, तो और भैया लाभ भी हमें मिलता है। देखो भैया, जब लाभ की बात आती है तो भैया लाभ एक और चीज़ से भी मिलता है, वो भैया गीत संगीत से। तो भैया ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं प्यारी सी रागनी।

लगते ही तीर गिरा धरनी पे, खून गाद से जारी। अभी हमारे किसान भाई ने सेठ पाल सिंह आर्य और साथियों की आवाज में भैया ये प्यारी सी रागनी सुनी। और देखो भैया हमारे किसान भाइयों का मनोरंजन भी हो गया होगा और भैया जो थकान है वो भी मिट गई होगी। और देखो भैया अब समय आ गया मौसम का, भैया मौसम की चिट्ठी हमारे हाथ में हो उसे भैया पढ़ ले, जो भैया हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भैया इस चिट्ठी के अनुसार भैया पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भैया हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। तो भैया हमारे किसान भाई मौसम को देखकर अपने कृषि कार्य कर सकते हैं। और देखो अगर बात करो घड़ी की तो भैया घड़ी बिल्कुल भी आपसे बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो भैया चलते चलते अपने किसान भाई को अपना पता जरूर बता दें, क्योंकि हमारे किसान भाई को हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, कार्यक्रम में क्या सुधार चाहते हैं। तो भैया इसके लिए नोट करें हमारा पता, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457072888। तो किसान भाइयों इस पते पर आपकी चिट्ठी पत्रिका रहेगा इंतजार। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया अंकित कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, और आज विविधा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक वार्ता। मानवता के बिना विज्ञान अराजकता मात्र है। वार्ताकार हैं मनीषा वर्मा। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: विज्ञान का उद्देश्य मानव कल्याण है। मानवता के बिना विज्ञान के नैतिक दिशा निर्देश करुणा और उत्तरदायी समाप्त हो जाता है, जिससे परमाणु बम जैसी विनाशकारी खोजें हो सकती हैं और विज्ञान केवल एक शक्ति बन जाता है जिसका उपयोग अनियंत्रित और हानिकारक हो सकता है, जिससे नैतिक और सामाजिक पतन हो सकता है। विज्ञान को मानव मूल्यों से जोड़ने पर ही यह समाज के लिए उपयोगी बनता है, अन्यथा यह दिशाहीन और खतरनाक हो सकता है। जैसा कि परमाणु हथियारों के विकास से स्पष्ट है, विज्ञान को प्राकृतिक संसार को समझने की एक व्यवस्थित और संगठित प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जो अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण पर आधारित होती है। वही मानवता को मानव जाति के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है। यह एक ऐसा शब्द है जो हमें मानव बनाते हैं, जैसे प्रेम और करुणा की क्षमता, रचनात्मकता होना और रोबोट या एलियन ना होना। विज्ञान का उद्देश्य मानवता को ऊपर उठाना है और मानव समाज की समस्याओं का समाधान करना है, परंतु इसका उपयोग इसके विपरीत किया जाए तो क्या होगा? वैज्ञानिक खोजों ने इतिहास की दिशा बदल दी है, परंतु जब ये करुणा, नैतिकता और उत्तरदायित्व से विमुख हो जाती है तो ये अपूर्णीय क्षति भी पहुंचा सकती है, जिसका सबसे स्पष्ट उदाहरण परमाणु हथियारों का आविष्कार है। परमाणु तकनीक, जिससे साधारण ऊर्जा उत्पन्न करने की अपेक्षा की गई थी, का दुरुपयोग करके परमाणु हथियार बनाया गया। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां मानवता से विहीन विज्ञान ने विपत्ति को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग भी इसी प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। हालांकि ये तकनीकें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उद्योग में क्रांति ला सकती है, वहीं इनके दुरुपयोग जैसे कि स्वायत्त हथियारों या फेशियल रिकॉग्निशन आधारित निगरानी प्रणाली में निष्ठा का उल्लंघन, सत्तावादी शासनों का नियंत्रण बढ़ाना और यहाँ तक कि मानव जीवन के लिए खतरा भी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन में उद्गत जनसंख्या की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग के माध्यम से निगरानी और नियंत्रण किया जा रहा है। नैतिक दिशा निर्देशों और निगरानी के बिना AI सशक्तिकरण का नहीं बल्कि दमन का उपकरण बन सकता है। जलवायु परिवर्तन एक और ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान का उपयोग दूरदर्शिता और नैतिक उत्तरदायित्व के बिना किया गया है। औद्योगिक क्रांति आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी, परंतु इसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों के असमन्वय दोहन की प्रवृत्ति की शुरुआत ही। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के नाम पर आर्थिक लाभ के लिए जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रदूषण ने हमारे ग्रह को पारिस्थितिक पतन के कगार पर पहुंचा दिया है। यहाँ भी पर्यावरण और मानवीय सरोकारों से अप्रभावित विज्ञान भयंकर प्रभावित हुआ है। डीप फेक्स और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित भ्रामक सूचनाओं के प्रसार में तेजी आने से यह खतरा और भी स्पष्ट हो जाता है। चुनावों या संकट के मध्य इस प्रकार की हेरा फेरी बड़े पैमाने पर अशांति उत्पन्न कर सकती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर

विश्वास को कमजोर कर सकती है और हिंसा भड़का सकती है। यदि वैज्ञानिक प्रगति को मानवीय दृष्टिकोण से ना जोड़ा जाए तो यह समाज की नींव को ही कमजोर कर सकती है। जहां मानवता रहित विज्ञान खतरनाक है, वहीं इसका विपरीत भी उतना ही समस्याजनक है। मानवता, करुणा, नैतिकता और सद्भावना यदि वैज्ञानिक समझ के बिना हो तो वह क्रिया में दिशाहीन होती है। केवल सद्भावनाएं वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए तब तक अपर्याप्त होती हैं जब तक उनके साथ वैज्ञानिक उपकरणों और तक्षशिला का सहारा न लिया जाए। एंटीबायोटिक पूर्व युग का उदाहरण लें, उस समय तपेदिक और निमोनिया जैसे जीवाणु संक्रमणों से लाखों लोग मारे गए। चिकित्सकों और देखभाल करने वालों के सर्वोत्तम प्रयासों के उपरांत जब पेनिसिलिन की खोज हुई तो उसने स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला दी। ऐसे मामलों में मानवीय मूल्यों को प्रभावी बनाने के लिए विज्ञान का सहयोग आवश्यक था। कोविड 2019 ने इसे स्पष्ट रूप से उजागर किया। हालांकि एक ओर सहानुभूति और एकजुटता इस संकट से निपटने में महत्वपूर्ण थी, वही महामारी पर नियंत्रण केवल कठोर वैज्ञानिक अनुसंधान, टीका विकास, जीनोम अनुक्रमण और सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल के माध्यम से ही संभव हो पाया। इसके विपरीत जहां अंधविश्वास या भ्रामक सूचना विज्ञान पर हावी थी, वहां संक्रमण और मृत्यु दर कहीं अधिक रही। इसका एक उदाहरण खाद्य असुरक्षा है। भूखों को भोजन देने की नैतिक प्रेरणा सदैव से ही रही है, जबकि यह हरित क्रांति उत्तम किस्म के बीजों, उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों जैसे वैज्ञानिक नवाचारों के उपयोग ने ही भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न अधिशेष देश में बदल दिया। केवल मानवता से भूख को समाप्त नहीं किया जा सका, इसके लिए विज्ञान की आवश्यकता थी। जैसे आपदा प्रबंधन में भी वैज्ञानिक उपकरणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सैटेलाइट इमेजिंग, पूर्व चेतावनी प्रणाली और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जैसी तकनीकें प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में सहायक होती हैं। केवल करुणा से न तो सुनामी रोकी जा सकती है, न ही बाढ़ पीड़ितों को बचाया जा सकता है। इसमें विज्ञान की एक निर्णायक भूमिका होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि पठन पाठन की प्रक्रिया केवल भावनात्मक अपील पर आधारित हो और उसमें संज्ञानात्मक विज्ञान का समावेश ना हो तो वह आलोचनात्मक सोच रखने वाले छात्र नहीं बना सकती। तंत्रिका विज्ञान, बाल मनोविज्ञान या डिजिटल पद्धति को समझे बिना स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास संसाधनों की बर्बादी और छात्रों की अरुचि का कारण बनते हैं। इसी प्रकार वैश्विक मानवीय प्रयास जैसे कि गरीबी उन्मूलन या कुपोषण का उन्मूलन को भी तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन की आवश्यकता है। अफ्रीका या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को भोजन देने की मानवीय इच्छा तभी प्रभावशाली बन सकती है जब उसके साथ पोषण विज्ञान, कृषि जैव प्रौद्योगिकी और सुनियोजित लॉजिस्टिक प्रणाली हो। अन्यथा केवल सद्भावनाएं वास्तविक प्रभाव लाने में अपर्याप्त होती। विज्ञान और मानवता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक हैं। विज्ञान साधन प्रदान करता है जबकि मानवता उद्देश्य निर्धारित करती है। इन दोनों का संतुलित एकीकरण समाज को रूपांतरित करता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आंकड़ों और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके अस्पतालों की स्वच्छता में सुधार किया, जिससे क्रीमियन युद्ध के मध्य हजारों सैनिकों की जान बचाई। उनके काम ने आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी, जो आंकड़ों और करुणा का एक सुंदर संयोजन है। आज की वैश्विक चुनौतियाँ जैसे कि जलवायु परिवर्तन, महामारी और सामाजिक असमानता, इनसे निमटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य इसी एकीकरण को दर्शाते हैं, जहाँ तकनीकी प्रगति को मानवीय एजेंडे के अंतर्गत रखा गया है। इसी तरह टेक्नोलॉजी फॉर गुड की अवधारणा यह रेखांकित करती है कि विज्ञान के माध्यम से न्याय, समानता और गर्मियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। विज्ञान और मानवता के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। यह आवश्यक है कि नैतिक साक्षरता को शिक्षा का अभिन्न भाग बनाया जाए, संस्थानों को वैज्ञानिक

0: वैज्ञानिक अनुसंधान में जिम्मेदारी, सहानुभूति और सामाजिक प्रभाव पर विशेष बल देना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पूरे समाज में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और तर्कसंगतता या जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए। विज्ञान स्वयं नैतिक नहीं होता, इसे मानवीय मूल्यों और नैतिकता के आधार पर दिशा दी जाती है।
1: मानवता के बिना विज्ञान अराजकता मात्र है। अभी आपने मनीषा वर्मा की ये वार्ता सुनी और इसके साथ ही विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:55 हुए हैं और अब समय है गीत संगीत का। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में फिल्म धर्मपुत्र से। गीत रचना साहिल लुधियानवी की है और संगीत दिया है दत्ता नायक ने।

श्रोताओं, छाया गीत कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना धर्मपुत्र फिल्म से, और अब दूसरा गीत आइए सुनते हैं धरती फिल्म।

से जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना धूल का फूल फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की जोगाल आवाज़ों में। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

धरती कही पुकार की। इस फिल्म में अभी आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर के युगल आवाज़ों में ये गीत, और इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको अपने केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आज रात 9:30 बजे। कानून की बात, ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 7:32 पर। सुगम संगीत में 7:45 पर सुनिएगा जोगिंदर कौर के स्वर में शब्द। और फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे गीत संध्या कार्यक्रम में रात 8 बजे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8:30 बजे। और श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे रात 10 बजे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल रात 9:30 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट्स। हिंदी नाटक स्वयं साक्षी प्रसारित किया जाएगा कल रात 10 बजे। लेखक हैं डॉक्टर विनय और निर्देशक हैं विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 6:50 पर। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे पशु दूते समय सावधानी विषय पर जानकारी। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर चर्चा का विषय रहेगा पशुशाला प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य। वाणी की स्वच्छता, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:05 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में सुबह 9:25 पर उषा पंत के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। महिला जगत कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर भूली बिसरी यादें क्रम में बहनें सुनेंगी इंदु अग्रवाल से की गई बातचीत। दोपहर 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे भजन दास के स्वर में जौनसारी लोकगीत। युवाणी कार्यक्रम युवा श्रोता सुनेंगे 5:15 पर, जिसमें क्रम होगा नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर। सुगम संगीत में 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे कव्वाली। कलाकार होंगे साकिब कासी और साथी। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या की 7:18 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: सूर्यघर.gov.in पर।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सर 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-7 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ की बैठक, कहा साझा विकास प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है दोनों देशों की साझेदारी। जापान की कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की हुई वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग, परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न पत्र लीक के मामले को रोकने के लिए परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। और झांसी में बेतवा नदी पर बने पारीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता, 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान की प्रमुख कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। श्री योगी ने कहा कि जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, वहीं उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है।
1: जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के साथ प्रदेश के बजट को, जीएसडीपी को और प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में राज्य मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
1: बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है।
0: इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। उन्होंने जापान के उद्योग जगत से भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है कि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार सीधे किसानों तक पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और ये वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
2: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: इस मौके पर जापान की 2 कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। यीडा क्षेत्र में लगने वाली इन परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को नंदन नीलकणी समिति द्वारा संशोधित रूप में लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज भारत दौरे पर आए नाइजीरिया

0: यूनियन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वहां के कृषि और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉ. अलीउ साबी अब्दुल्लाही से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक और जमीनी बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। श्री मौर्य ने बताया कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसके कारण दुनिया के अलग अलग देशों से दुनिया की सरकारें अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज रही हैं।
1: प्रदेश की दृष्टि से हम लोग, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो चाहे खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र हो, हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसी का आकर्षण दुनिया के अलग अलग देशों से वहाँ की सरकारों के द्वारा अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। यह सब कुछ जो होता हुआ हम देख रहे हैं, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार 9 वर्ष से अधिक समय से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया गया, उसका सुपरिणाम।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा आज 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। श्री मिश्रा कल से शुरू हो रही समिति की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर न्यास का लोगो लगाया जाना बाकी है, बाकी सारे कार्य पूरे हो गए हैं।
2: निर्माण अब मंदिर परिसर में पूर्ण हो गया है। पूर्ण स्मृति स्तंभ था उसका अब आज कल में सबसे ऊपर जो लोगो लगता है वो अब लगना बाकी है। रामकथा संग्रहालय उसमें अभी हम लोग समीक्षा करेंगे। सभी गैलरीज की जो स्क्रिप्ट होती है, स्टोरी लाइन होती है, स्टोरी लाइन पूरी हो चुकी है।
0: रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की 529वीं जयंती आज चित्रकूट और उनकी जन्मस्थली राजापुर में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राजापुर सहित चित्रकूट जिले में धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों की धूम रही। राजापुर स्थित तुलसी स्मारक में श्रद्धालुओं ने रामचरितमानस का पाठ किया। वहीं तुलसीदास के जीवन, संघर्ष, भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित विभिन्न लीलाओं का मंचन किया गया। जिले के विभिन्न विद्यालयों में भी तुलसी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने काव्य पाठ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के साहित्यिक योगदान को याद किया। झांसी में बेतवा नदी पर बना 140 वर्ष पुराना पारीक्षा बांध अब वैश्विक विरासत का हिस्सा बन गया है। प्रमुख सचिव सिंचाई और जल संसाधन अनिल गर्ग ने बताया कि पारीक्षा बांध को फ्रांस के मार्सेई में 14 अक्टूबर को होने वाली 26वीं आईसीआईडी इंटरनेशनल कांग्रेस और 77वीं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के दौरान WHIS अवार्ड 2026 दिया जाएगा। इस बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज ने वर्ल्ड हेरिटेज इरीगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मान्यता दे दी है। ये बांध करीब 140 साल से बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर आज जनपद बलिया में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने किया। कार्यक्रम में शहीदों के बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को नमन करते हुए नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। परिवहन मंत्री ने कहा कि 19 अगस्त का दिन पूरे देश के साथ साथ बलिया के लिए विशेष गौरव का दिन है। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ की बैठक। कहा साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है दोनों देशों की साझेदारी। जापान की कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की हुई वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न पत्र लीक के

0: को रोकने के लिए परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। और झांसी में बेतवा नदी पर बने पारिक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से संबंधित जानकारी। और जानकारी देने जा रहे हैं स्पंदन श्रीवास्तव, भेंट करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
2: नमस्कार श्रोताओं, कानून की बात पे आपका स्वागत है। मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर बहुत बुरी दशा में रहते हैं। कभी तो उनको घर से निकाल दिया जाता है, कभी वो सड़कों पर रहते हैं, कभी रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं, कुछ तो जो ओल्ड एज होम है वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत बुरी दशा में रहते हैं। तो इसी संबंध में 2007 में एक कानून बना था, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम। इसमें समय समय पर सुधार होते रहे हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है और हम कैसे इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, अपने श्रोताओं को बता सकते हैं, इस विषय में हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है स्पंदन श्रीवास्तव को। आप एडवोकेट हैं हाईकोर्ट लखनऊ में। स्पंदन, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
2: तो क्या आप समझते हैं हमारे जो श्रोता हैं उन्हें क्या जानना चाहिए इस कानून के बारे में, इस जो वरिष्ठ नागरिक का कानून है इस विषय में?
3: सबसे पहली बात तो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ऐसे कानून की। जब हम अपने आसपास जो देखते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, माता पिता हैं, उन्हें एक समय के बाद देखभाल की ज़रूरत होती है। नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि जितने वरिष्ठ नागरिक हैं उसमें से करीबन 1% ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं, जो कि हो जाता है करीब करीब 15 करोड़। और एक प्रोजेक्शन है कि 2050 तक करीब करीब 32 करोड़ वरिष्ठ नागरिक ऐसे होंगे जिनको ओल्ड एज होम्स में रहने की जरूरत
2: है। तो ऑलमोस्ट आजकल के डबल,
3: क्योंकि हमारा जो समाज में परिवार का स्ट्रक्चर है, पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, लोग एक साथ रहा करते थे, अब एकल परिवार देखने को मिलते हैं। बच्चे किसी और शहर में या किसी और देश में नौकरी कर रहे हैं, अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। और अक्सर तो ये भी देखने को मिलता है पुत्र या पुत्री ने संपत्ति अपने नाम लिखवा ली और फिर माता पिता को कहीं सड़क पर छोड़ा है ताकि उनकी देखभाल ना करना पड़े, उनको समय ना देना पड़े।
2: तो माता पिता कम एज के भी हो सकते हैं?
3: जी, माता पिता कम एज के भी हो सकते हैं अगर वो ऐसी परिस्थिति में है जहाँ वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते
2: जी।
3: तो जो उनकी संतान है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोते पोती नाती नातिन, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता का या दादा दादी नाना नानी का ध्यान रखें, देखभाल करें।
2: मतलब इसमें पुत्र और पुत्री दोनों की जिम्मेदारियां हैं?
3: जी बिल्कुल, पुत्र और पुत्री विवाहित हों या अविवाहित हों, जी उनका बराबर दायित्व है कि वो अपने माता पिता की देखभाल करें। 1956 के हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम में मेंटेनेंस की, भरण पोषण देने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत माता पिता अपने बच्चों से, अपनी संतानों से भरण पोषण मांग सकते हैं। अगर वो नहीं देते तो वो फैमिली कोर्ट के पास जाकर के उसकी मांग भी कर सकते हैं
2: जी।
3: पर इस अधिनियम की एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ हिंदू पे ही अप्लाई होता है, बाकी धर्म के लोगों पर नहीं लागू होता। वहीं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 144 BNSS क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यही चीज धारा 125 में थी

0: जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 144 में है, जो कि किसी भी माता पिता को यह अधिकार देता है कि वो मैजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपनी संतानों से भरण पोषण मांग सकते हैं। पर इन दोनों अधिनियम की समस्या यही थी कि ये सीमित हैं सिर्फ माता पिता के भरण पोषण के लिए, ये वरिष्ठ नागरिक की बात नहीं करते थे। सभी वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण देने के लिए ये कानून 2007 में बनाया गया। अलग अलग राज्यों ने इसे अलग समय पर लागू किया। 2012 में ये उत्तर प्रदेश में लागू होता है, जिसके अंतर्गत माता पिता ही नहीं सभी वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के दायित्व को स्थापित किया जाता है।
1: जहां तक मैं समझता हूँ, वरिष्ठ नागरिक मतलब कि 60 साल की उम्र पूरी करने वाले।
0: जी, वरिष्ठ नागरिक वो उनको कहा जाएगा जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, लेकिन वहीं पर
1: स्त्री हो या पुरुष।
0: जी, स्त्री या पुरुष दोनों ही 60 साल से ऊपर जो है वो वरिष्ठ नागरिक है। परंतु माता पिता की जो बात की गई है अधिनियम में, वो किसी भी उम्र के हों, अगर वो अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं तो वहां पर संतानों का दायित्व पड़ता है।
1: स्पंदन जी, एक बहुत बड़ी बात मुझे लग रही है कि जो माता पिता के पुत्र पुत्री जो पैदा हुए होते हैं, बायोलॉजिकल हैं, इसके अलावा एक और है हमारे यहाँ जो गोद लिए जाते हैं, जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, जो अडॉप्ट किए जाते हैं किसी परिवार से किसी बच्चे को, तो उनके बच्चों का क्या दायित्व बनता है?
0: जी, ये अधिनियम जब देखभाल की बात करता है, भरण पोषण की बात करता है, तो ये फर्क नहीं करता कि बच्चों को गोद लिया गया है या बायोलॉजिकल बच्चे हैं। जब बच्चों को माता पिता ने पाला है तो उनका दायित्व भी बराबर बनता है। वो बायोलॉजिकल बच्चे हों या उन्हें गोद लिया गया हो या फिर सौतेले माँ बाप भी हों, तब भी बच्चों का दायित्व बनता है कि वो उनकी देखभाल करें, उनका भरण पोषण करें।
1: तो इसकी क्या सिस्टम होता, कैसे प्रोसेस करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, कहाँ पर जा सकते हैं ये लोग?
0: जी, अधिनियम इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाता है। पहला मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनता है, वो सब डिविजनल ऑफिसर यानी जो SDM जिसको हम कहते हैं, SDM के अंडर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनता है। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का दायित्व होता है कि वो वरिष्ठ नागरिकों की एप्लीकेशन को सुने, उनको उसका संज्ञान ले और 90 दिन के अंदर उस पर फैसला सुनाए। साथ ही इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि किसी वकील की जरूरत नहीं होगी इस एप्लीकेशन को डालने के लिए। इस एप्लीकेशन जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में डाली जाएगी, ये जो वरिष्ठ नागरिक है या माता पिता है वो सीधे स्वयं जा सकते हैं या फिर उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी उनका प्रतिनिधि जा करके इस एप्लीकेशन को ट्रिब्यूनल में दे सकता है।
1: अच्छा, मतलब कि इस स्थिति में नहीं है, स्वास्थ्य नहीं ठीक है या और कोई दिक्कत है, तो उनको कोई जानने वाला या कोई वेल विशर कर सकता है?
0: जी, उनका कोई भी प्रतिनिधि किसी भी रूप में जा सकता है। इसमें एडवोकेट्स को रोका गया है ताकि किसी तरह का खर्च माता पिता पर
1: ना पड़े।
0: बहुत
1: अच्छी बात है।
0: अगर वरिष्ठ नागरिक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के फैसले से असंतुष्ट होते हैं तो अपील का भी प्रावधान किया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत काम करता है और मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के डिसीजन आने के 60 दिन के अंदर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील भी दायर कर सकते हैं,
1: जो DM के अंडर में।
0: जी
1: जी, आपने बताया कि SDM कोर्ट से अगर असंतुष्ट है तो वो DM के कोर्ट में जा सकता है। अगर वहां से भी असंतुष्टि मिलती है किसी वरिष्ठ नागरिक को, तो वो आगे कहां जा सकता है?
0: अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय से असंतुष्ट है, अधिनियम के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होता है वो आखिरी होता है, पर हाई कोर्ट में इसके लिए रिट डाली जा सकती
1: है। तो स्पंदन जी, हम लोगों ने अपीलेट न्यायालय के बारे में बात कर ली, तो इसमें जो सरकारें हैं हमारी, उनका क्या दायित्व है वरिष्ठ नागरिकों के प्रति?
0: जी, इस अधिनियम में सरकार की तरफ भी कुछ दायित्व दिया गया है वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए, उनके भरण पोषण के लिए। सबसे पहली चीज तो ये अधिनियम कहता है कि राज्य सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ओल्ड एज होम को स्थापित करेगी, और साथ ही सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ नागरिकों को देखा जाता है तकलीफ होती है इलाज कराने में, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल में लाइनों में लगने में, तो राज्य सरकार पे ये दायित्व डालता है अधिनियम कि हर सरकारी अस्पताल में कुछ बेड्स होंगे जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही रिजर्व किए जाएंगे
1: जी।
0: और साथ

0: ही जो लाइनें लगती हैं, देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने में, तो उसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन बनेगी और कोशिश की जाएगी कि उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज
1: मिल सके।
0: मिल सके।
1: इस पंडित जी, अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी अस्पताल में या कहीं पब्लिक प्लेस पे कोई दुविधा होती है या परेशानी होती है, तो उसकी शिकायत कहीं कर सकता है क्या?
0: जी, केंद्र सरकार ने एक एल्डर लाइन करके राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन बनाई है, जिसका नंबर है 1-4-5-6-7, और इस पर कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्या के लिए फ़ोन करके उन्हें बता सकता है, उनसे सुझाव ले सकता है और अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकता है।
1: दायित्व है उसका।
0: जी, और अगर अस्पताल में कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए सीएमओ के पास या हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के पास उसकी कंप्लेंट की जा सकती।
1: तो स्पंदन जी, एक बात और कि जैसे किसी माँ बाप का एक बेटा है, उसकी शादी हुई कि असमय कुछ मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में जो प्रॉपर्टी है माँ बाप की, वो उनकी बहू को जाएगी या नहीं जाएगी, तो और फिर बहू का क्या दायित्व तो होगा?
0: ये अधिनियम जब माता पिता की बात करता है तो उसमें तो सिर्फ बच्चों का दायित्व है, बहू या दामाद पर इसका दायित्व नहीं डाला गया है। पर वहीं पर जहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों की बात करता है, तो वरिष्ठ नागरिक ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कोई अपनी संतान ना हो, तो उसके लिए इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी संपत्ति जिस भी व्यक्ति को जा रही है, जो भी उनका उत्तराधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका भरण पोषण करें। और अगर वो किसी को संपत्ति गिफ्ट दे रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं इस शर्त के साथ कि उनकी देखभाल की जाएगी, और वो व्यक्ति अपने इस कर्तव्य से हटता है, उसको पूरा नहीं करता, उनकी देखभाल नहीं करता, जैसे अक्सर देखने को मिलता है किसी व्यक्ति ने वरिष्ठ नागरिक से संपत्ति अपने नाम करा ली, गिफ्ट करा ली, और फिर उनको सड़क पे छोड़ाया या देखभाल करने से मना कर दिया, तो ये अधिनियम ये प्रावधान देता है कि इस तरह की परिस्थिति में ये माना जाएगा कि उसने दबाव डाल करके उस संपत्ति को अपने नाम कराया है, और उस संपत्ति का जो ट्रांसफर हुआ है, जो संपत्ति उस वरिष्ठ नागरिक से किसी और व्यक्ति को दी गई है जो अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहा है, उसको वापस वरिष्ठ नागरिक को कर दिया जाएगा।
1: या ऐसा भी हो सकता है कि कोई, जैसे कि आजकल समाचारों में सुनने को मिलता है कि बहू जो है उसके पति की मृत्यु हो जाती है या मर्डर हो जाता है, तो क्या इसमें बहू का जो दायित्व तो है वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है या दूसरी शादी कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में क्या संज्ञान लेती है कोर्ट या खुद उसको दावा करना पड़ेगा?
0: जी, इस अधिनियम में दावा भी किया जा सकता है, और ट्रिब्यूनल जो है, जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल एसडीएम के अंडर बनाया गया है, वो खुद भी इसका संज्ञान ले सकता है। और अगर उदाहरणतः जैसे किसी माता पिता ने अपने पुत्र को संपत्ति दी, गिफ्ट की या ट्रांसफ़र करी, और असमय उस संतान की मृत्यु हो जाती है, हाँ, बहू या दामाद को चली जाती है, और वो उन वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने से मना कर देते हैं, तो वो संपत्ति भी वापस उन वरिष्ठ नागरिक को चली जाएगी।
1: बहुत अच्छी बात है। तो स्पंदन जी, विषय इतना बड़ा है कि हम चाहे जितनी बात करें लेकिन हमारी घड़ी हमें इजाज़त नहीं देती कि हम ज़्यादा बातचीत बढ़ाएं, तो हम अपनी जो बातचीत है यहीं समाप्त करते हैं, और आगे कभी भविष्य में हम कभी फिर इस विषय पर बातचीत करेंगे तो आपको फिर आमंत्रित करेंगे आप इस स्टूडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की जानकारी। जानकारी दे रहे थे हाईकोर्ट के एडवोकेट स्पंदन श्रीवास्तव और भेंटकर्ता थे अतिश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जोगिंदर कौर।

श्रोताओं, अभी आपने जोगिंदर कौर के स्वर में ये शब्द सुना और इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या लेकर हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लाए हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। गीत के बोल हैं अनजान के और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसमें किशोर कुमार का साथ दे रही हैं मोहम्मद रफ़ी। फिल्म का नाम है दोस्ताना। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

संध्या आप सुन रही हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म अप्रैल फूल का। गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, छोटे नवाब फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार आर डी बर्मन।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या आप सुन रही हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब हम आपको सुनवा रही हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर का ये गीत। गीत रचना है गुलजार की और संगीत निर्देशन है आरडी परमन का।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं और अब वक्त है एक ही फिल्म से कार्यक्रम का। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिमान के कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाज़ों में।

श्रोताओं, फिल्म अभिमान में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में ये गीत, और इसी फिल्म से आइए सुनते हैं एक और गीत जिसमें लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं मनहर उदास।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म अभिमान के कुछ गीत। आइए सुनते हैं एक और गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाज़ में फिल्म अभिमान से। और इसके साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक

0: विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी

0: से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम

0: आए हैं।
1: न्यू दिल्ली, द चीफ मिनिस्टर हियर, द गवर्नमेंट हियर।
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
0: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states. Also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost effective infrastructure top priority. Says centre will review subcontracting norms. US Ambassador Sergio Gore hails steps taken by centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President

0: porque no puedo que explique ni dije.
1: मल्टी ट्रैकिंग के चार प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहराह 22 को वसत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार और किफायती बुनियादी ढांचा अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मरकज जैली ठेकेदारी से मुतालिक जब्तों का भी जायजा लेगा। अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज और जम्मू कश्मीर

0: गोल में भारत ने पहले टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दी। मानव सुथर ने पहली मर्तबा 10 विकेट हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4 और शाहराहों का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: मुजव्वजा प्रोजेक्ट तकरीबन 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अहम सियाहती मकामात तक रेल राबता बेहतर होगा और अहम अशिया की नकलो हमल मुस्तहकम होगी, जिनमें कोयला, सीमेंट, स्टील, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और अनाज शामिल हैं। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहरा 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मेयार के बुनियादी ढांचे के साथ साथ कम लागत हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की के मायार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज नई दिल्ली में टनल्स एंड ब्रिजेस कॉन्फ्रेंस 2026 के 4th एडिशन से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजारत शाहराहों के कामों की सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए मौजूदा जब्तों का जायजा लेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जरूरतों की सख्ती से तामील हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मयार और बरवक्त तकमील की जिम्मेदारी वाज़ेह तौर पर असल कॉन्ट्रैक्टर से मंसूब रहे। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि वजारत पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर्स का उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जायजा ले रही है और ये अमल तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने वाले कंसल्टेंट्स पर नाफिज करने की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा टेंडर की अहलियत को कारकर्दगी के जायजे से मुंसलिक करने की भी तजवीज है। हिमालयी खितों में तूरे खिसकने, शदीद मौसम, कुदरती आफात और लॉजिस्टिक दुश्वारियों समेत तामीरात को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि हिमालय में जेरे जमीन सुरंगों और पुलों की तामीर का काम काली मिट्टी की चट्टानों वाले इलाकों के मुकाबले ज्यादा चैलेंजेस से भरा है। झारखंड में JPSC JSSC से मुतालिक तलबा का 26 रोजा एहतजाज खत्म हो गया। रियासती हुकूमत की जानिब से भर्ती के मुख्तलिफ इम्तहानात को मनसूख करने के फैसले और मुबैना बेजाब्तगियों में तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद ऐसा हुआ है। ताहम इस फैसले से वो उम्मीदवार नाखुश हैं जिनकी मनसूख हुए इम्तहानात के जरिए पहले ही तकर्री की जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत की जानिब से 22 इम्तिहानात को मंसूख करने के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किए जाने और JPSC सिविल सर्विसेज और JSSC CGL समेत 45 इम्तिहानात में बेसाब्तगियों की तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। तलबा ने तहकीकात के लिए हुकूमत को ये वार्निंग देते हुए 60 दिन का वक्त दिया है कि अगर तहकीकात गैर मुनसिफाना या नाकाफी साबित हुई तो वह अपना एहतजाज फिर शुरू करेंगे। तलबा ने आज शाम रांची में जयपाल

0: हिंगमुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक एक आभार यात्रा भी निकाली। इस दौरान हुकूमत के इस फैसले से 2628 उम्मीदवारों की तकरीरियां मुतासिर हुई हैं और उन्होंने अपनी नौकरियों और मुस्तकबिल के सिलसिले में तशवीश का इजहार करते हुए झारखंड सेक्रेटेरिएट और प्रोजेक्ट भवन के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने मुकर्रा अमल के जरिए इम्तिहान पास किया है और उन्होंने कहा कि अगर बेजाब्तगियां हुई हैं तो कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि मुंतखब और मुकर्रर हुए उम्मीदवारों की तकरीरियां मंसूख की जाएं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: मगरबी बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने मुबैना नफरत आमेज तकरीर के मामले के सिलसिले में अदालत के सामने पेश न होने पर तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महवा मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का हुक्म दिया है। कृष्णा नगर अदालत ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि वारंट जारी करने के सिलसिले में एक रिपोर्ट 28 अगस्त तक दाखिल की जाए। मोइत्रा के खिलाफ मुबैना तौर पर खवातीन की तौहीन और नफरत आमेज तकरीर करने का मामला है। अदालत ने इससे पहले इस मामले में उन्हें समन जारी किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार देते हुए कहा है कि मरकज और खित्ते की हुकूमतों ने सलामती की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। जनाब गोर जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर हैं, जहां उन्होंने श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने वजीर आला के साथ अपनी मुलाकात को मुस्बत करार दिया और कहा कि फरीकैन ने मुस्तकबिल से मुतालिक अहम इकदाम पर तबादला ख्याल किया। जनाब गोर ने कहा कि हालांकि आज कोई रस्मी ऐलान नहीं किया जा सकता, ताहम सफर से मुतालिक एडवाइजरी में कमी लानी चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली और मकामी हुकूमत की कोशिशों की बदौलत सलामती की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक सर्वेंट्स को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ मालूमात फराहम करने और शहरियों के साथ जुड़ने के लिए न करें, बल्कि इसे उनकी शिकायतों को सुनने, समझने और कार्रवाई करने के लिए भी इस्तेमाल करें। सदर जमहूरिया ने जोर देते हुए कहा कि जब मालूमात तेजी से फैलती हैं तो इसे हमेशा मुस्तनद ज़राए के जरिए दुरुस्तगी, मोतबरियत और अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के ऑफिसर ट्रेनीज से मुलाकात के दौरान ये बात कही। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के रोल पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इसने शहरियों के साथ हुकूमत के राबते को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा किया है।
2: सोशल मीडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द वे सिटीजंस रिसीव, शेयर एंड रेस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन। यू शुड यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली टू इन्फॉर्म द एंगेज बट ऑल्सो टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू कंसर्न्स ऑफ द पीपल।
1: सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि मौसर बातचीत और मोतबर मालूमात दरख्शां और जवाबदेह जमहूरियत के अहम सुतून हैं। उन्होंने अफसरान को मशवरा दिया कि वो अपने फैसलों में मुनसिफाना रहें, अपने तर्ज अमल में तहम्मुल बरतें और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखें। सदर जमहूरिया ने वाज़े किया कि लोगों की खिदमत करने की उन्हें तफवीज की गई जिम्मेदारी ईमानदारी, इनकिसारी और फर्ज शनासी का तकाजा करती हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस दोनों खिदमत का मुश्तरका मकसद हुक्मरानी के मियार को बेहतर बनाना और लोगों की खिदमत करना है। ईरानी दिफाई अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खलीज फारिस के जुनूबी साहिल के ममालिक को अमरीकी अफवाज की मदद करने से खबरदार किया है और कहा है कि तेहरान मकामी फौजी अड्डों की सरगर्मियों पर गहरी निगाह रखे हुए है। जनाब अब्दुल्लाही ने कहा कि इन अड्डों पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों की मौजूदगी और तैनाती इन मुल्कों की मालूमात के बगैर नहीं हो सकती। जनाब अब्दुल्लाही का इंतबाह ऐसे वक्त में आया है जब ईरान, वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी तवील कशीदगी के दौरान खित्ते में अमरीकी फौजी नकलो हरकत पर निगरानी जारी रखे हुए है। जनाब अब्दुल्लाही ने यह इंतबाह मुजाकरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन और तेहरान के मुतजाद बयानात के दौरान दिया है। 60 रोजा मुफाहमतनामा किसी वसीतर मुआहदे में तब्दील नहीं हो सका, जिससे सिफारती कोशिशें मजीद पेचीदगी का शिकार हो गई हैं। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है और न ही इस तरह का कोई प्रोग्राम है। जनाब ट्रंप का यह बयान उनके दामाद और नुमाइंदे जैरेड कशनर के उस बयान से मुतजाद है, जिसमें कशनर ने कहा था कि तेहरान के साथ रابطے जारी हैं। इस दौरान

0: Çak abi şey.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
3: नमस्कार। तो बेसिकली जो दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस हो उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीधर मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन

0: यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह हम बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में आए। तो अब उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं जहां पे वहां के लोगों को बच्चों को या यंग जो आप कह रहे हैं कि जेंजी इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं अपना एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% यूपीए ट्रांजैक्शन जो 18-29 साल के बच्चे को, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
1: बिल्कुल अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
2: देखिए, एक अच्छा है कि भी सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी कहें या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगी, पहली बार लोन रहे, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है, और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता ही नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर दोनों ही ह्यूमन बींग है, तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधा मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो अकल का जो हमारा फ्यूचर है बैंक

0: ज्यादा स्ट्रांग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विनी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है। युवा गुमराह हो जाता है और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा तो युवा, चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो। बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इश्यू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए। और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं, उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे ऐप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
3: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पर क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े, एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ 2 दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खुले। और जैसे अश्विनी ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, ताकि हम जिसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसे कैच दीज पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडी वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए, वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो 2 दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है, इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी, वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे

0: दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
1: प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कि कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होना चाहिए ताकि जिस पर्पज के लिए, और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीए के हो जाते हैं कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल्स काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
0: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विन जी आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी न रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहाँ क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भाई हाँ भाई ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए या कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचे और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचे बना दीजिए, तो उससे क्या होगा वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज को अचीव करना चाहते, वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप जैसे डिपॉजिट की बात, मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जनजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं।
0: जी, और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई है, एक थीम थी, उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं? अब आप देखें कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है।
0: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काबू
2: पाएगा। भाई सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
0: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
1: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपकी बात है कि एक तरह

0: हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीए बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं. लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया. तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया. आईबीएम में हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर कि टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट, कि कैसे. तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रेस्ट जैसे आपने देखा कि आजकल काफी. तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, I4C इंटरनेशनल अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है 1930 पे कॉल करके. बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे, जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ तो अब लोगों को ओटीपी समझ गए कि नहीं करना. बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया. तो टाइम टू टाइम हर फोरम में, इवन बैंक्स अपनी मीटिंग में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोलेगी हर तरह का अवेयरनेस लाए. बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में. तो इसलिए काफी बैंक, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली. आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी के 1930 और ये www.cyber, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर नोट कीजिए. और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है, तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और यही कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिलता है.
1: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
2: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है, तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाया तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है. दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो, या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं. कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं. उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें RBI कर रहा है. म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है. उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है. तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजेक्शन है वो मूव होती है. तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए. अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल एम्प्लॉय की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है. कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके. उनको जनरल बैंकर एम्प्लॉय मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते. तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है. और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा ये सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है.
1: नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
0: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हुआ उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही. तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज कि IT और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विन सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा. और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है टेक्नोलॉजी, और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस

0: अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर। और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए, हाई पावर कम्युनिटी के लिए एक ऐसा मटीरियल बनेगा। और जैसे रश्मि सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोरस्टेप बैंकिंग है, तो वहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहाँ पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
0: हाँ देखिए, दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
0: बदलाव देखिए, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्विनी जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, 2 अक्टूबर से कर रहा है, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस जील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
0: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है, या फिक्स्ड डिपॉजिट, रीइन्वेस्टमेंट, बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात कर रहे हैं या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं, तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, अब बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या एफडी के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते हैं अल्टीमेटली, तो यही है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सब

0: बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, पीपीएफ वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1 लाख रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जिन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है उसके बाद, फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो या जिनको उनको लगे कि ये उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है तो मॉडर्न बैंकिंग का एक ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिले?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना ही फायदा होता है, तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीधा मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इम्पोर्टेंस पता चलेगी, तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक्स हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: अश्विन जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, एमएसएमई है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए, तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं और अब पेश है श्रोताओं के मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

न दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं, न पास रहने से जुड़ जाते हैं। न दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं, न पास रहने से ये रिश्ते जुड़ जाते हैं। ये तो एहसास के वो पक्के धागे हैं जो याद करने से और भी मजबूत हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, कुछ ऐसे ही रिश्तों की एहसास को बरकरार रखते हुए

हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, और आज कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं को ममता अग्रवाल का नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ में, फिल्म समझौता सी। साथियों, जिंदगी में न जाने कितनी बार कुछ ऐसा हो जाता है, उन गुजरे हुए अनुभवों के एहसास को, उन हसीन लम्हात को दिल बार बार याद करता है।

जी हाँ, बिल्कुल नहीं भुला पाते हम उन हसीन लम्हों के एहसास को। ये अलग बात है कि कुछ लम्हों की याद दिल के तारों में वो झनकार झनकृत करती हैं जिससे लबों पे मुस्कुराहट बिखर जाती है और कुछ यादें आंखें नम कर जाती हैं। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ यादें हमें रुला कर जाती हैं और कुछ यादें हमें हंसा कर जाती हैं। श्रोताओं, आपकी ज़िंदगी की भी कुछ ऐसी यादें ज़रूर होंगी जो कभी आपको रुला भी देती होंगी, कभी आपकी आंखें नम भी कर देती होंगी और कभी आपके लबों पर वो मुस्कुराहट बिखर जाती होंगी। और उसी मुस्कुराहट को और उसी आपकी आंखों की नमी को आपके SMS से हम साझा करना चाहते हैं अपने और सभी श्रोताओं के साथ कार्यक्रम के माध्यम से। तो साथियों, जो भी आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी यादें हों जिन्हें आप शेयर करना चाहते हों, हमें SMS के माध्यम से भेजिए और हम साझा करेंगे अपने बाकी सभी श्रोताओं के साथ। और आपकी यादों से, आपके अनुभवों से हम बनाना चाहते हैं अपने कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत।

दिल एक मंदिर। श्रोताओं, इस फिल्म में अभी आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जो भी हमारे श्रोता हैं, जो भी हमारे साथी हैं, वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ें अपनी ज़िंदगी की कुछ उन हसीन यादों के साथ जो हम शेयर करें अपने बाकी श्रोताओं के साथ। जी हाँ, तो हमारे बहुत सारे साथी हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ये हमें मैसेज मिला है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन और राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना लिखते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करो, फिर देखो उनके आशीर्वाद से आपकी कैसी तरक्की होती है। क्या बढ़िया बात इन्होंने कही है। वास्तव में अगर हम अपनी ज़िंदगी में हर पल अपने माताजी पिताजी का आशीर्वाद लेकर चलते हैं, हर पल हम उनके आशीर्वाद की याद को साथ लेकर चलते हैं, तो हमें शायद जीवन में कोई कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। ये बिल्कुल सही बात और बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने कही है। ये एक और साथी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ये एक और हमारे साथी जुड़े हैं, शाही मार्केट, सुहारा, जिला बिजनौर से, आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी। हम अपने श्रोताओं से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का केवल नाम शामिल करने की बजाय हम उनके अनुभव भी शामिल करना चाहेंगे, तो वो केवल अपना नाम ही हमें ना भेजें, साथ में हमें अपने कुछ अनुभव, अपने कुछ एहसास जो उनकी याद बन गई है और उनकी ज़िंदगी की ऐसी यादें हैं जो वो कभी भुला नहीं पाते, जो उन्हें बहुत खुशी देती हैं, ऐसी यादों को अगर वो शेयर करेंगे तो शायद हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे थे कार्यक्रम में ज़िंदगी में आने वाली खुशियों और गमों की। तो बिल्कुल सही बात है साथियों कि ज़िंदगी अनमोल है। ज़िंदगी के सफ़र को हम कितना खुशनुमा बना सकते हैं, यह है हमारा नज़रिया, हमारा अंदाज। ज़िंदगी को कितनी खूबसूरती से जीते हैं, यह है हमारा ज़िंदगी जीने का अंदाज, हमारी जीवन जीने की कला। और ये भी सच है साथियों कि ज़िंदगी में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू बनकर आते और जाते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में हर वक्त हमें कुछ ऐसा मिले जिससे हमें खुशियां ही मिलें, या हर वक्त हमें कुछ ऐसा मिले जो हमारे लिए परेशानी ही लेकर आए या हमें परेशान ही करे। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन परेशानियों में भी खुशी को कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि साथियों जब तक हम परेशानियों में भी खुशी को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें अपना जीवन कुछ रुका हुआ सा नज़र आने लगेगा। साथियों, हम परेशानियों को, दुख को, गमों को लेकर बहुत दूर तक नहीं चल सकते, थक जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन अगर हम उन परेशानियों में भी खुशी को ढूंढने की कोशिश करेंगे और खुशियों को लेकर चलेंगे तो निश्चित ही हमें जीवन जीने में एक मज़ा आएगा।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म शोर से मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज में। श्रोताओं, हमें एक और मैसेज मिला है। ग्राम रहू नगली थाना नूरपुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर से आचार्य सत्यदेव सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान लिखते हैं कि एक बार की बात है कि मैंने स्कूल में प्रार्थना के समय सभी बच्चों से कहा कि जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है हम उनकी फीस माफ कर देंगे। तो ऐसे कई सारे बच्चे निकल कर के आए और हमने उनकी फीस माफ कर दी। आज वो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे जॉब करते हैं और उनके फोन भी आते हैं कि अगर आप हमारी मदद ना करते तो शायद आज हम इतनी अच्छी जगह पर ना होते। हमेशा मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये अक्षत चौहान और भूमिका चौहान के साथ जो उनके परिवार वालों ने ये मैसेज किया है और अपनी ये जो एक मदद है इसको साझा किया है, वास्तव में ये जो इनकी याद है ये केवल एक याद नहीं श्रोताओं, हम सबके लिए एक प्रेरणादायक हम कह सकते हैं कि याद है। वास्तव में अगर हम किसी को खुशी देते हैं उसी में हमें भी सच्ची खुशी का एहसास होता है। श्रोताओं, सच्ची खुशी वही है कि हम खुद तो खुश होते हैं लेकिन अगर हम किसी दूसरे को मुस्कुराने का मौका देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सामने वाला भी खुश हो सके, अगर हम उसके लबों पर मुस्कुराहट देख पाते हैं कुछ ऐसा करके, तो वास्तव में हमें सच्ची खुशी का एहसास होता है। श्रोताओं, हम कहते हैं ना कि हमें खुशी नहीं मिलती। साथियों, खुशी कोई मिलने की चीज़ नहीं है, खुशी हम कहीं से खरीद नहीं सकते, खुशी हमें बटोरनी पड़ती है अपने ही अंदर से, अपने एहसासों से, अपने कामों से। हम कुछ ऐसे काम करें, हम दूसरों के साथ कुछ ऐसे अनुभव साझा करें, हम दूसरों के साथ कुछ ऐसी बातें करें कि वास्तव में हमारी बातों से, हमारे कामों से वो भी खुश हो जाएं और तब हम उनकी खुशी को देख करके जो हम वास्तव में एक सच्ची खुशी का एहसास करते हैं वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जैसा कि हमारे साथी ने लिखा है कि आज वो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जॉब पर हैं। श्रोताओं, ये बात सुनकर ही कितना अच्छा एहसास हो रहा है कि अगर उनकी फीस माफ़ कर दी गई तो वो बच्चे पढ़ पाए, काबिल बन पाए और काबिल होने के बाद देखिए जो हमारी मदद थी वो हमेशा उन्होंने याद रखी और फिर वो हमसे जिक्र करते हैं कि हमें इस तरह से सबकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, हम बिल्कुल इनकी बात से बहुत सेटिस्फाई हैं। श्रोताओं, ये भी निश्चित है कि हम खुश तभी हो सकते हैं और दूसरे को भी हम खुशी तभी दे सकते हैं जबकि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अगर हमारी बातों में, हमारे एहसासों में विश्वास ही नहीं होगा तो हम कैसे उस रिश्ते को कायम रख सकते हैं। अपनी सोच में सकारात्मकता का समावेश करके ही हम एक दूसरे के प्रति विश्वास को बनाए रख सकते हैं। साथियों, अगर हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, अपनी सोच में नकारात्मकता का समावेश कर लेते हैं,

कभी भी हम उस रिश्ते की डोर को पक्का नहीं कर सकते, हम उस रिश्ते को बहुत दूर तक नहीं चला सकते। तो निश्चित है कि अगर हम अपने मन में कोई नकारात्मक सोच नहीं आने देते तो उस रिश्ते को हम बहुत दूर तक लिए जा सकते हैं, हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आएगी।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना प्रेम कहानी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। ये हमें एक और हमारे साथी का मैसेज मिला है, शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी जी का। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी है। लिखते हैं कि अपनों को भूलना नहीं चाहिए, माता पिता को याद रखना चाहिए, वह जो कह दे उनकी बातों पर अमल करना चाहिए, अपने से बड़ों

की इज्जत करनी चाहिए और अपने से छोटों को हाथ फेर देना चाहिए, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे कि वो हमेशा इज्जत देते रहें। और अगर कोई दर पर आ जाए, वो भूखा हो, तो उसे खाना खिला देना चाहिए, पैसे से उसकी मदद कर देनी चाहिए। ऊपर वाला देख रहा है और उसका फल ज़रूर मिलेगा। क्या खूब बातें इन्होंने कही हैं साथियों। अगर हम कहें कि इस तरह की जो ये बातें होती हैं, ये हमारे जीवन में अनमोल वचन बनकर सच में हमें प्रेरणा देते हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। वास्तव में सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है कि अपनों को भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। श्रोताओं, कहते हैं ना कि अकेले कोई भी जीवन नहीं बिता सकता, और जो हमारे अपने हैं हमें कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और अब सोचेंगे आप कि हमारे अपने कौन हैं। जी हाँ श्रोताओं, अगर हम हर किसी को अपना समझें तो वास्तव में हर कोई हमें अपना ही लगेगा। हम कभी भी किसी से कोई मनमुटाव ना रखें, किसी के लिए मन में कोई नकारात्मकता ना लाएं, तो निश्चित तौर पर हमें हर कोई अपना ही लगेगा। कहते हैं ना कि अगर हम किसी में कोई कमी देख रहे हैं तो शायद ये हमारी नज़रों का फेर है। अगर हम चाहें तो उस कमी को भी अच्छाई में बदल कर उसका एहसास कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने मैसेज लिखा है, बहुत सुंदर मैसेज लिखा है। एक और साथी हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये एक साथी और हमारे साथ जुड़े हैं, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, जीवन सिंह बुक, समस्त खेड़ा परिवार। ये एक और मैसेज हमें मिला है, भले ही हमारे साथी केवल अपना नाम ही शामिल करा रहे हैं प्रोग्राम में, लेकिन हमें खुशी है कि वो कार्यक्रम तो सुन रहे हैं, अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। ये एक और मैसेज हमें मिला है, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। ये एक मैसेज हमें मिला है, जी हाँ, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। साथियों, हम बात कर रहे थे खुशी की। वास्तव में खुशी ढूंढना ये हमारा अंदाज है, हमारी जीवन जीने की एक कला है कि हम कैसे हर चीज़ में खुशी ढूंढते हैं। चाहे वो प्रकृति को देखकर, अगर हम रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं तो वास्तव में हमारा दिल कितना खुश हो जाता है। अगर हम वो सूरज की किरणों को देखते हैं जो पहाड़ों पर पड़ती हैं और चांदी सी चमकती हैं, तो उस चांदी की चमक को देखकर हमें कितनी खुशी मिलती है। जब हम किसी जानवर को देखते हैं सड़क पर गुजरते हुए, तो उसकी परेशानी को देखकर हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उस जानवर की मदद कर पाते हैं तो वास्तव में हमें कितनी खुशी मिलती है। श्रोताओं, खुशी हर चीज़ में है। किसी दूसरे को खुशी देकर भी खुशी है, वो चाहे किसी का इंतज़ार करके। अगर हम अपने जीवन में साथियों किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी का इंतज़ार करते हैं, अपने महबूब का इंतज़ार करते हैं, और अगर फिर हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हम कितना खुश हो जाते हैं, हमें दिल से कितनी खुशी मिलती है इस चीज़ का एहसास करते हैं। आइए इस गीत से

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में फिल्म बहू बेगम से। साथियों, हम बात कर रहे थे जिंदगी की, खुशी की। जी हाँ श्रोताओं, ये भी सच है कि हम हर चीज़ में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि हम चारों तरफ से बहुत सारी परेशानियों में घिर जाते हैं। और कभी ना कभी हम सब के मन में ये ख्याल जरूर आता है कि जिंदगी है क्या, खासतौर से तब जब हम परेशानियों में घिर जाते हैं, परेशानियों के दौर से गुजर रहे होते हैं और उम्मीद की कोई रोशनी नज़र ना आ रही हो। ऐसे में अक्सर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जिंदगी है क्या, और जवाब बस इतना सा है, एक अजीब सी पहेली है जिंदगी, सबके साथ होते हुए भी अकेली है जिंदगी। कभी तो एक प्यारा सा अरमान है जिंदगी, तो कभी एक दर्द भरा तूफान है जिंदगी। कभी कांटों से भरा रास्ता है जिंदगी, तो कभी फूलों जैसी मासूम है जिंदगी। कभी एक हंसता हुआ लम्हा है जिंदगी, तो कभी गुनाहों से बोझ बन जाती है जिंदगी। जी हाँ साथियों, जिंदगी का हर पहलू है, अलग अलग समय पर वो हमें अलग तरह से

नजर आती है, अपना अलग एहसास हमें देती है। किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती, किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती। मज़ा तो तब है जब पाने की उम्मीद ना हो और फिर भी मोहब्बत हो, और इसी को कहते हैं ज़िंदगी।

फिल्म में अभी आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। एक मैसेज हमें मिला है लक्सर रोड गांव सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से। मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोएब, कहकशा और पूरा परिवार लिखते हैं, हमेशा दूसरों का सहारा बने, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमसे मदद की उम्मीद रखता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। मैं हमेशा गरीबों का ध्यान रखता हूँ और उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें भी देता हूँ। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे के सुख दुख में काम आया करें। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। हम कार्यक्रम में शुरू से यही बात कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनकर उनके लबों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को भी खुशियां दे सकें, तभी हमारी भी जो खुशी है वास्तव में उसका मकसद पूरा होता है। ये एक और मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का ये मैसेज है मारहराट दरवाज़ा एटा से। नबी हसन अब्बासी रसीद वारसी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, ज़ुबेर अली खान, सबिहा अंजुमन, ये मैसेज है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। ये मैसेज मिला है हमें नास पैलेस अजमेर शरीफ से। सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद और अरहम का लिखते हैं, नाराज़गी भी मोहब्बत की बुनियाद होती है, क्या खूब। मुलाकात से भी प्यारी किसी की याद होती है। हमें हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए। पता नहीं जीवन के इस सफ़र में दोबारा कभी मुलाकात हो ना हो। जो खो गया उसके लिए शोक ना करो, जो बचा है उसका मूल्य समझो, क्या बात है। कितनी सच्चाई है इस मैसेज में। वास्तव में नाराज़गी भी मोहब्बत की बुनियाद होती है। कभी कभी मोहब्बत में जब एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं ना, और उसके बाद फिर जब हम मिलते हैं तो वास्तव में उस प्यार का मज़ा ही अलग होता है। बिल्कुल सही कहा कि पता नहीं जीवन के इस सफ़र में कभी मुलाकात हो ना हो, इसलिए जो अभी बचा है उसका मूल्य समझो और उसको खुशी से जियो। कहते हैं ना कि समेट लो इन नाजुक पलों को, समेट लो इन नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे कल हों ना हों, हो भी ये लम्हे तो क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हों ना हों। बिल्कुल सही बात कही है, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज इन्होंने भेजा है। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे ज़िंदगी की। बिल्कुल सही बात है कि ज़िंदगी हमें कभी बहुत ही खुशी का एहसास देती है और कभी हमारे लिए एक पहेली सी बन जाती है। ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर ज़िंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है।

श्रोताओं, ये गीत हमने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम था चोर मचाए शोर। एक और मैसेज हमें मिला है, श्रोताओं जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये है राही नगर गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही का। अच्छे काम करने का कोई वक्त नहीं होता, हम जब चाहें अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे रास्ता चलते रास्ते से पत्थर हटा देना, किसी बुजुर्ग को रोड पार करा देना, परिंदों को छत पर दाना पानी रखना, घर में सभी की खिदमत करना मुझे अच्छा लगता है। इन छोटे छोटे कामों से मुझे दिली खुशी मिलती है और खुशी मिलती है आपको मैसेज भेजकर, और जब शामिल हो जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। क्या बात कही है इन्होंने। तो निश्चित ही हम समझ रहे हैं कि आपको दिली खुशी मिल गई होगी क्योंकि आपका ये मैसेज शामिल हो गया है। और हम तो यही चाहते हैं कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके अनुभवों से, आपके मैसेजेस से हम भी खुश हों और अपने श्रोताओं को भी खुशी दे सकें। और निश्चित रूप से एक दूसरे का साथ ही है जिसके सहारे लंबे लंबे रास्ते आसानी से कट जाते हैं, और ये साथ हमें पूरी शिद्दत से निभाना चाहिए। श्रोताओं, अगर रास्ते में कहीं किसी का साथ छूट भी जाए तो हमें इंतज़ार रहना चाहिए।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम संपन्न करने की। ममता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि

0: संरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. U.S. Ambassador to India Sergio Gore today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important